आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: हमारे जीवन में कई बार

0: जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो रहता नहीं। यही हमारी विवशता है, यही इस दुनिया का हिसाब किताब है। जीवन इसी तरह चलता है। वास्तव में जो व्यक्ति का किया हुआ नहीं है, विधान से स्वतः हो रहा है, वो किसी के लिए अहितकर नहीं होता। विधान से स्वतः क्या हो रहा है, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो देखेंगे उत्पत्ति का विनाश हो रहा है, संयोग का वियोग हो रहा है, जन्म की मृत्यु हो रही है, सृष्टि में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सब कुछ किसी विधान के तहत स्वतः हो रहा है। सृष्टि में अनवरत गति है, स्थायित्व नहीं है। अगर हम इस वैधानिक तथ्य के प्रति सजग होते हैं तो सृष्टि से अतीत के जीवन की खोज और सतत परिवर्तनशील दृश्यों की लुभावनी कलाकृति के कुशल कलाकार में हमारी आस्था शुरू हो जाती है। कोई तो ऐसा होगा जो ये सब कर रहा है, कोई तो ऐसा ज़रूर है जो ये विधान बनाता है और उसे लागू करता है। अव्यक्त जब व्यक्त होता है तो व्यक्त का नयापन बना रहे, ये अविच्छिन्न रहे, इसके लिए परिवर्तन जरूरी है। जो भी हो रहा है वो स्वाभाविक है, हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। हम चाह के भी उनको बदल लें इतनी ज़रूरत हमारी नहीं, लेकिन प्रमादवश हम कभी कभी जगत के सीमित सौंदर्य में फंस कर उसका सुख भोगने लगते हैं और साथ साथ ये सोचते हैं कि हम खुद कुछ न कुछ कर सकते हैं, हम इस विधान को बदल देंगे। तो इसी जगह पर हमें विवश होकर दुख भी भोगना पड़ता है। तब हम कहते हैं कि ये विधान तो अमंगलकारी है। अरे जो विधान मंगलकारी हो वो अमंगलकारी कैसे हो सकता है? भूल हमने की है तो दुख तो हमें होगा ही। जिस विधान से मानव को विवेक मिला है, ये जीवन मिला है, जीवन को जीने की प्रेरणा मिली है, उसी विधान से मानव को विवेक का आदर करें या अनादर करें इसकी आज़ादी भी मिल जाती है। तो जब कोई व्यक्ति आज़ादी का दुरुपयोग करता है तो फिर उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, और जब दुरुपयोग करना बंद कर देता है तो उसका विकास शुरू हो जाता है। यही विधान है। अगर मानव को विधान से आज़ादी नहीं मिली होती तो उसे ये तो आभासी नहीं होता, और तब फिर जो उसे बनाने वाला है उसकी रचना का उद्देश्य पूरा होता क्या? वो भी पूरा नहीं होता। रचयिता ने मानव को क्रिया की शक्ति, विचार की शक्ति और भाव की शक्ति इसीलिए तो दी है कि वो इस जगत में रहकर जगत की सेवा करे और साथ साथ सत्य की खोज भी करता रहे। सृष्टि के सौंदर्य की अनुभूति और सृष्टिकर्ता के माधुर्य के सौंदर्य के रस की अनुभूति करने में ही मानव की समर्थता है और मानव जीवन का सदुपयोग है। हम अपने जीवन का सदुपयोग करें, इससे जो विकास होगा वही विकास हमें विचारवान भी बनाएगा और हमें इस जगत में सत्य की खोज करने लायक भी बनाएगा। तो प्रकृति के विधान को समझते हुए उसे स्वीकारें और स्वयं समर्थ बने कि उस विधान को ठीक से समझ सकें, अपने विचारों को पुष्ट कर सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है पशुओं का टीकाकरण आवश्यक। जानकारी दे रहे हैं शंकर कुमार चौधरी।

0: आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, हम सब पशुधन के राखैत छी तो एकरा होमय वाला संक्रामक बीमारी सब से बचाव पड़त। कारण ई सब जानलेवा बीमारी होइत अछि जे विषाणुजनित होयबाक कारणे एकमात्र टीकाकरण के उपाय से समाधान होइत अछि। आई पालतू दुधारू पशु में होमय वाला टीकाकरण प्रसंग में चर्चा कऽ रहल छी जे बड़ आवश्यक होइत अछि। स्नेही किसान श्रोतागण, कहल गेल अछि जे उपचार से नीक बचाव होइत अछि। तात्पर्य ई जे उचित बेर पर ओ नियमित रूप से पशु में टीकाकरण करौला से पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमताक विकास होइत अछि, जाहि कारणे संक्रामक बीमारी से होमय वाला क्षति से बचल जा सकैत अछि। संगे टीकाकरणक अन्य कतेको लाभ होइत अछि, जेना पशु में होमय वाला महामारी से बचाव होइत अछि, पशु से मनुख में होमय वाला बीमारी से बचाव होइत अछि, पशुपालन में लागत कम लगैत अछि, इत्यादि कतेको प्रकारक लाभ होइत अछि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, दुधारू पशु में जेना गाय ओ महीस में संक्रामक बीमारी जे होइत अछि ओ खुरपका, मुँहपका, गला घोटू, लंगड़ी, त्वचा रोग, लंपी इत्यादि होइत अछि। खुरपका मुँहपका के पहिल टीका 4 महीना पर ओ वर्ष में 2 बेर 6 महीनाक अंतर पर दियाबी। गला घोटू ओ लंगड़ी में प्राथमिक टीका 4 से 6 महीना अथवा बेसी भेला पर लंगड़ीक सेहो अहिना टीका देल जाइत अछि। एकर टीका वर्ष में 21 बेर देल जाइत अछि। लंपी त्वचाक बीमारी में 4 महीना में प्राथमिक टीका देल जाइत अछि। ओ ई टीका वर्ष में 1 बेर पशु के देल जाइत अछि। स्नेही किसान श्रोतागण, टीकाकरण पशु में करयबा काल में किछु ध्यान देवा योग्य गप होइत अछि, जेना टीकाकरण मात्र स्वस्थ पशु करयबाक चाही। टीकाकरण से कम 2 सप्ताह पहिने पशु के कृमिनाशक दवाई पियबाक चाही। टीकाकरण बीमारी होयबा से पहिने पशु के करयबाक चाही। टीकाकरण प्रायः शांत वातावरण में अर्थात भोरुकबा बेर में कराबी। टीकाकरण के बाद पशु जो बीमार भ जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक लोकन से परामर्श लेबाक चाही। हमरा लोकन के इहो ध्यान रहे जे टीकाकरण कुशल पशु चिकित्सक लोकनिक देखरेख में कराबी। टीकाकरण हमरा लोकन भोर में कराबी तब बेसी लाभकारी होइत अछि। एतबे नहि, टीकाकरण में दवाईक मात्रा उचित रहे, अहू पर ध्यान देबाक चाही। एहि प्रकारे आजुक कृषि चर्चा आब सम्पन्न होइत अछि। चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।

मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद

0: से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा

0: देंगे आंख में चोट लगना इस विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्ला। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है।
1: जी,
0: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल।
1: जी,
0: उसमें क्या करें लोग?
1: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है आप या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
0: जी,
1: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए, आंख रगड़िए मत। क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो
0: छिल जाएगा,
1: छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप जिस स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए, उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
0: और फिर डॉक्टर
1: जी फिर डॉक्टर से मिलिए।
0: कुछ लोग लोहे का काम करते
1: जी,
0: हैं
1: व्यवसाय है,
0: बिल्डर है या बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
1: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
0: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई कण आंख में अचानक चला जाता है,
1: आंख में अचानक चला जाता है, तो उसके लिए आपको उसमें आंख में अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंख में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आंख में दर्द नहीं है, आंख को में फोटोफोबिया जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आंख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा। जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आंख से पानी आएगा, आपको आंख में दर्द रहेगा, आंख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा, तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ है तो उसको निकलवाइए और जैसे सलाह दे वो उसी
0: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: अगर वो आँख में चला जाए तो
1: वो एक उसमें दो चीज़ है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है दीवार को उसके आँख में चूना चला गया, दोनों आँख के लिए घातक है, और एसिड से ज्यादा घातक चूना है, चूना को लोग कम घातक समझता है बट अल्कली ज्यादा डैमेज करता है, कारण है कि वो जब अंदर जो आँख के अंदर जाता है तो वो उसमें उसको घुला देता है वो, और उसको घुलाता है और सोपनिफिकेशन कहलाता है वो। तो उसको पहला उपचार क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आँख को धोइए,
0: साफ पानी,
1: एकदम साफ पानी से जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि उसका कहीं पर भी कानून होगा।
0: और डॉक्टर साहब, धोने की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
1: बहुत तेज में आंख में छींटा नहीं मारिए, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में एक तरह से अगर आप ये है अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है आर एल वर उसको IV सेट से आँख के पास लगा देना चाहिए, उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आंख के अंदर जाएगा जितनी गंदगी होगा, तो एस्ट्राइल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
0: लेकिन पूरी सावधानी
1: के साथ। जी जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा ट्यूबवेल का पानी उससे आंख को धोइए। और
0: बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आंख में,
1: जी जी, बच्चे को उससे चीज से नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में,
0: पेंसिल
1: भी हो तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है, तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है
0: दुर्घटना कहकर नहीं आती।
1: हाँ जी जी जी, उसमें
0: अगर दुर्घटना
1: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
0: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है,
1: देखिए जी,
0: और आँख से खून निकला,
1: हाँ आँख में खून निकला, अब विजन ठीक है तो चिंता नहीं लिया। देखिए कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आँख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आँख तो लाल है दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है, दैट इज ए सब कंजक्टाइबल हेमरेज। अगर देखिएगा कि आँख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ है, या तो विट्रस हेमरेज हो गया या मैकुला को डैमेज किया या रेटिनल का डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो
0: जी। आंख में
1: जी
0: चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए, या ज्वलनशील पदार्थ जाए, तीर धनु से लगे, या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से।
1: और इसमें एक चीज हम कहेंगे कि

0: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में है वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगा कर काम करे, और बच्चा को आप नकली चीज से बंद ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
1: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देश गान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देश का। आप सुनिए भजन, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भजन में आज गणेश वंदना से। स्वर है L. नितेश का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का मुख्य स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंडी ने जहाँ ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहाँ दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रामकथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 पर। संगीत का समय होगा दिन के 10:00।

बजकर कार्यक्रम अंगना का समय होगा 10:30 से। उप शास्त्रीय संगीत आप सुना करते हैं दिन के 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होता है 11:30 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 12 बजे। हेलो जिंदगी यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 से। देशभक्त गीत का समय होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:15 से। रोजगार सूचना आप सुना करते हैं 2:10 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 2:30 पर। बजका लोकगीत आप सुनेंगे 2:03।

0: सांधकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 6:10 से। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7 बजे से। फिल्म संगीत का समय होगा 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं 8:15 से। विविधा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। इंग्लिश टॉक का समय होगा 9:45 पर। और एक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक फनकार आप सुनेंगे 10:00। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। यह था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रियसीमायां

0: कर्तव्यपारायण तावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महती अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः, अन्ये षड् जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्तिसदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तनप्रबन्धनव्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 वर्षस्य आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण

0: समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: मणिकांत झा
1: और साथ में मैं हूं कल्याण कुमार झा।
0: कल्याण जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार से।
1: आज का सुविचार हमने हितोपनिषद से लिया है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम्। अर्थात अपना पराया, इस तरह की गणना तो जो तुच्छ सोच के लोग होते हैं वो करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है।
0: हाँ, और वही सिद्धांत पर हमरा लोग चलतो छी। भारत के एक पुराण सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में हमरा लोग रंग बिरंग के सामग्री लगा उपस्थित हुई छी, जैमे रहिए इतिहासक पन्ना में नुकायल अजुका तिथि के विवरण से हो हमरा लोग अपना श्रोता तक पहुँचाबे छियन। तो अजुका तिथि अर्थात 9 जून इतिहासक पन्ना में किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नज़र घुमा ली।
1: 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने 9 जून को ही, और 1999 में दक्षिणी अफ्रीकी कुली ओडेजो उत्तरी दक्षिणी दोनों छोर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। 2006 में म्यूनिक में विश्व कप फुटबॉल का शुभारंभ हुआ। 2008 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तंबाकू मुक्त घोषित हुआ। 2008 में ही फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। जन्म पर एक झलक तो 1912 में वसंत देसाई, जो भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका जन्म हुआ था। 1913 में चौधरी दिगंबर सिंह, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। 1909 में लक्ष्मण प्रसाद दुबे, ये भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1933 में अजीत शंकर चौधरी, जो सुप्रसिद्ध कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक थे। निधन पर नज़र डालें तो 1900 ईस्वी में 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासी नेता और आदिवासियों के लोकनायक थे। 1931 में हरिकिशन सरहदी, स्वतंत्रता सेनानी। 1934 में दिनेश चंद्र मजूमदार, स्वतंत्रता सेनानी। 1990 में असद भोपाली, जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। 1991 में राज खोसला, जो हिंदी फिल्म निर्देशक, निर्माता व पटकथा लेखक थे, उनका निधन हुआ था। 1993 में सत्येन बोस, ये हिंदी चलचित्र निर्देशक थे और प्रसिद्ध फिल्मों में किसी फिल्म की बात करें तो चलती का नाम गाड़ी, ये फिल्म इनका बहुत ही सुपरहिट रहा। और 1994 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, भारतीय योगाचार्य थे, इनका निधन हुआ था। 2011 में मकबूल फिदा हुसैन, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनका निधन हुआ था। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जा रहा है और बिरसा मुंडा का की पुण्यतिथि पर भी विशेष उत्सव मनाया जाता है झारखंड में।
0: तो इछल आजुक दिन के विशेष झलक, जे आई के दिन किया इतिहासक पन्ना में विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नज़र हमरा लोकन घूमेलो। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में बेर भ रहा है एखन मैथिली सुगम संगीत के। आओ सुनी सुंदर सनक ई मैथिली सुगम संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हे तिरुहुत, हे मिथिले ललाम, हे मातृ मम मातृभूमि, शत शत प्रणाम। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना को स्वर दिए थे ममता ठाकुर ने। बहुत ही सुंदर, मातृभूमि के प्रति प्रेरणा जगाने वाला ये मैथिली संगीत। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।
4: नमस्कार। दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में काल्हि दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैसार आयोजित भेल। बैसार में मानवाधिकार, लोकायुक्त, RTPS, न्यायालय में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, ACDC बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत सहित विभिन्न विभाग से संबंधित मामला के विस्तृत समीक्षा कैल गेल। 2 जून का आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न पंचायत और नगर निकाय से कुल 6527 आवेदन प्राप्त भेल छल, जाहि में एखन धरि 4208 के समाधान कैल गेल है, जकर प्रतिशत 65% है। एहि में 124 आवेदन के रिजेक्ट कैल गेल है। एखन पेंडिंग 2195 आवेदन है, जकरा जिलाधिकारी 4 दिन के अंदर शून्य करबाक निर्देश दिलन। जिला में LPG गैस के उपलब्धता आ वितरण व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी अय। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसी के द्वारा गैस आपूर्ति कैल जा रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश देल गेल अछि जे LPG गैस बुकिंग प्राप्त हेबाक बाद संबंधित एजेंसी उपभोक्ता के होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर हुनका घर तक पहुँचेनाई सुनिश्चित करैत। जिलावासी से जिला प्रशासन अपील करिए जे अपन क्रम एवाक इंतजार अवश्य करी, अफवाह पर ध्यान नहीं दी। नियमानुसार सब ग्राहक के ससमय गैस सिलेंडर उपलब्ध करौल जा रहा है। ऐसे संबंधित यदि कोनो शिकायत है तो जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 06272245055 पर अपन शिकायत दर्ज करवा सकै छी। बिहार सरकारक निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के अध्यक्षता में काल्हि एकटा जन सुनवाई आयोजित कैल गेल। परिवादी के संग बैस कऽ बड़ा धैर्य से घंटा तक हुनकर समस्या के सुनल गेल आ समाधान के प्रयास सेहो कैल गेल। एतय तक कि ओ जिलाधिकारी परिवादी के मोबाइल नंबर लेलन आ समाधान के संबंध में हुनका घर बैसल जानकारी देबाक बात सेहो कहलन। एम्हर 10 जून के बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के लऽ कऽ जिला मुख्यालय दरभंगा के 18 केंद्र पर आयोजित हुए वाला परीक्षा के लेल विधि व्यवस्था संधारण के ध्यान में रखैत SDO परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा के अनुमति देलन है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करित कहल गेल है जे बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 10 जून 2026 के 18 परीक्षा केंद्र पर एक पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक आयोजित करायल जायत। कहल गेल है जे इस संबंध में परीक्षा केंद्र के 1 से

0: मीटर के आसपास नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागल रहत। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। NIC दरभंगा से जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमारक अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सब अनुमंडल पदाधिकारी, DCLR, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव के संग कल्हि एकटा विस्तृत समीक्षा बैसार भेल। बैसार में पंचायत में चापाकल के सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी के जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन, पंचायत सरकार भवन निर्माण तथा आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य के विस्तृत समीक्षा कयल गेल। बैसार के मध्य पंचायतवार चापाकल के सर्वेक्षण के प्रगति के समीक्षा सेहो कयल गेल। समीक्षा क्रम में ई पाओल गेल कि पंचायत में सर्वेक्षण कार्य के प्रगति अत्यंत सुस्त चल रहा है। किस पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित संख्या में चापाकल के सर्वेक्षण ठीक ठाक नहीं कयल गेल है। एहि पर जिलाधिकारी अपन नाराजगी व्यक्त करैत सब संबंधित पंचायत सचिव के निर्देश दिलन जे 1 सप्ताह के भीतर 100% चापाकल के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कॉलबैक अछि। ओवर जिला पदाधिकारी कौशल कुमारक आदेशानुसार ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत पांडुलिप सर्वे के अंतर्गत कैल अंदामा मठ के सर्वेक्षण जिला कला एवं संस्कृत पदाधिकारी द्वारा कैल गेल। नालंदा महाविहार सायल सहायक प्राध्यापक नैन्सी तथा सहायक प्राध्यापक लवकुश सेहो एमे शामिल छलाह। सर्वेक्षण के क्रम में अंदामा मठ के 4वीं पीढ़ी के सुशील कुमार सिंह साहेब, 5वीं पाँचम पीढ़ी के मदन कुमार सिंह एवं राम नरेश राय साधु, राजीव कुमार एवं अन्य मठ से आयल कबीर पंथ के साधुगण के उपस्थिति सेहो देखल गेलन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत BP इंटर स्कूल बेगूसराय में एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र अंडर 14 कबड्डी संचालित कयल जा रहा है। एहिमे 30 बच्चा के सिलेक्शन के माध्यम से एकलव्य केंद्र में दाखिला लेल जाइत अछि। एहि केंद्र के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ी के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेल तैयार करब थिक। संयुक्त कृषि भवन शिवहर के सभागार में शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय खरीफ कार्यालय सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के भव्य आयोजन कल्हि कयल गेल। उम्हर सुपौल उप विकास आयुक्त सारा अशरफ के उपस्थिति में शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय शारदीय खरीफ कर्मशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमक सफलतापूर्वक आयोजन सेहो कयल गेल। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अब मौसम पर एक नजर घुमावी उपस्थित छत कल्याण जी।
4: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 6 जून से 10 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार में उमस भरी गर्मी बनी रहने की संभावना है। आज कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाओं के चलने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के

0: बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 65 से 70% तथा शाम में 20 से 25% सापेक्ष आर्द्रता रहने की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। हम छी मणिकांत
0: और साथ में मैं हूँ कल्याण कुमार झा।
4: कल्याण जी देखू, मनुख हैव एकटा बहुत बड़का उपलब्धि थिक।
0: बिल्कुल,
4: सृष्टि में बहुत रास जीव जंतु है, लेकिन विवेक जे छै से मनुष्यता में छै, और तें मनुष्य अपना आप में एकटा अद्भुत प्राणी के रूप में सृष्टि के देन है। तो मनुष्य छी तो मनुष्यता अहाँ में हेबाक चाहिए और मानवता अहाँ में हेबाक चाहिए। मानवता रहब अगर नहीं भेल तो कहल जाए छे जे बिना पशु अहाँ छी जैमे अहाँ के नांगर नहीं है, और लेकिन अगर अहाँ में विवेक नहीं है तो किछु नहीं, वो अहाँ पशु समान छी। तो मानवता अपन अहाँ के जे भगवान के द्वारा देल गेले या प्रकृति प्रदत्त ओकरा से कखनो इम्हर उम्हर नहीं हुई, ओकरा मानवता के अपना से कखनो छोड़ी नहीं। मानवता के जे गुण अहाँ में अ ओकरा राखब बहुत आवश्यक छे।
0: बिल्कुल, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मानव जन्म में मनुष्य के लिए मानवता से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं, और किसी भी धर्म में मानवता को ही मूल समझा गया है, क्योंकि धर्म के मूल में मानवता है। आदिकाल से आज तक मानव जाति अपने धर्म के लिए न जाने क्या क्या नहीं किए, लेकिन सब व्यर्थ ही रहा। मणिकांत जी, धर्म की मूल बात अभी तक ना तो किसी की समझ में आई, और अधिकांशतः हम इस मूल तथ्य को समझने की चेष्टा भी नहीं की कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव के स्वभाव में जब मानवीय गुणों का आविर्भाव होता है तो उससे जन्म लेता है मानवता, और जो मनुष्य मानवता की परिभाषा को भली भांति समझ लेता है और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि मनुष्य धर्म की मूल बिंदु को अपना लिया है।
4: एहन नहीं छे जे लोग मानवता के पालन नहीं करी छे, तो मानवता धर्म मानवता वाला जे धर्म छे तकरा नहीं मानी छे। बहुत लोग एहन छे जे मानवता के मूल मूल्य के बुझे छे और ओहि पर चले छे। बहुत लोग एहनो छे जे अपन
0: इसके विपरीत आचरण
4: विपरीत आचरण करे छे, तो हुनका सबके सेहो हमरा लोकन के चाही जे प्रेरित करी जे अहां मानव छी से बुझी और अपन मानवता के जे धर्म छे तकर अनुसरण करी।
0: बिल्कुल ही, और मानवता क्या है, मानव के संवेदनाओं को समझना ही मानवता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में है, किसी विपत्ति में फंस गया है, दुख में पड़ा हुआ है, क्लेश से पीड़ित है, या निर्धन है, गरीब है, तो इस सब के प्रति हमें दयार्द्र रहना चाहिए और हर संभव उसे मदद करने का प्रयत्न करना चाहिए।
4: परोपकार जो है मानवता के एकटा मूल गुण है, और परोपकार अगर अहाँ करै छी कखनो बेर विपत्ति में अहाँ सहायक भ जाइ छी तो ई अहाँ के मनुष्य योनि में जन्म लेवा के लेल जे छै से ओ अहाँ के सार्थक होइए जीवन। तो अहाँ के हरदम ई मन में भाव रहबाक चाही जे हम ककरो कोनो काज में अगर संग द दिए, ककरो अगर हम काज आबि जइए तो हमरा लेल जे छै से सार्थकता

0: है आ नहीं अगर ककरो अहाँ छिटकी मारा पर लागल छी ककरो टांग घिंचा में लागल छी तो वो फिर मानवता नहीं छे।
1: बिल्कुल वो ठीक मानवता के विपरीत है, पशुता के संज्ञा में जाता है। विवेकानंद जी दूसरों के दुख को अपना ही दुख समझना और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ प्रेम और दया पूर्वक बर्ताव ही मानवता है। आपसी भाईचारा धर्म का मूल आधार माना गया है और यह भाईचारा हमें आपस में जोड़ कर रखता है, क्योंकि समाज में शांति और सौहार्द तभी स्थापित हो सकता है जब हम आपस में भाईचारा का संबंध रखें।
0: ओम अपन जो देश है भारत देश अनेकता में एकता एक विशेषता रहले है, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न संप्रदाय के लोग एठम निवास करी छथि और तकरा बादो सब में जे छै से आपसी सामंजस्य रहै छनि। तो ई बात के जे परंपरा हमरा सभक पूर्वज निभावित एला है हमरो लोकन के चाही जे ई बात के हमरा लोकन निभावित रही और अपना ओता कोनो द्वेष आपसी विद्वेष नै हुए। तो मानवता के तो मूल रूप यह न छे जे अहाँ सामंजस्य पूर्वक रहै छी सबसँ स्नेह सबसँ प्रेम अहाँ रखै छी बटै छी तो तखने अहाँ मानव छी।
1: और परोपकार को ही मूल मंत्र समझते अर्थात दूसरों को उपकार करना ही तो मानवता है। इस पर एक श्लोक हमें ध्यान में आ रहा है मनकांत जी।
0: हाँ हाँ।
1: कि परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंति नद्य परोपकाराय दुहंति गावः परोपकाराय इदम शरीरम।
0: परोपकार के लिए नदी बही है,
1: परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। तो यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। तो
0: प्रकृति में बहुत रास एहन चीज छे जे जकरा अपना ओइसे कोनो मतलब नहीं छे, जना पिपरा गाछ छे तो ऑक्सीजन तो वहां के दई है, ऑक्सीजन सा पीपर गाछ के स्वतः कोनो काज नहीं हुई छे लेकिन वहां के ऑक्सीजन दिया है और वही ऑक्सीजन प्राण वायु से अहाँ जे छी से जीवै छी।
1: और जो चीज हमारे लिए घातक है कार्बन डाइऑक्साइड
0: ओकरा अवशोषित करे
1: उसको अवशोषित करके अपने अंदर पचा लेता है। तो ये है परोपकार और भाईचारा। तो भाईचारा की बात जब आती है तो मुझे एक गीत का बोल याद आ रहा है।
0: अरे वाह वाह,
1: इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
0: आओ सुनी सुंदर सनकी गीत।

0: इंसान से इंसान कहो भाईचारा, यही पैगाम है बड़ा। तो जै चर्चा के हमरा लोग कह रहा छूँ हैं मानवता वाला बात, तो से इंसान से इंसान के अगर भाईचारा रहते तखने मानवता भेले, आ से अगर नहीं भेल तहन फिर मानवता की।
1: और इस गीत में एक पंक्ति भी मैं गौर किया हूँ कि सबके लिए हो सुख का बराबर बराबर बंटवारा, यानी जिस तरह हमें इच्छा होती है कि हम सुखी रहें, हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि हम सुखी रहें, तो जहाँ तक संभव हो हम सुख बांटते चलें, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमारे व्यवहार से कोई सुखी हो तो यही तो मानवता है।
0: अपन व्यवहार में कखनो कटुता नहीं अनबाक चाहिए, और अहाँ के व्यवहार से ककरो चोट पहुँचे, ककरो हानि पहुँचे, ककरो दुख पहुँचे, ई व्यवहार तक कथवप नहीं करवाक चाहिए। और अगर अपना पर में आत्मनियंत्रण अहाँ ई बात के कह लै छी जे अपन व्यवहार अहाँ बढ़िया रखे छी, तो तहन फिर जीवन में कहियो अहाँ के कोनो कष्ट नहीं है, और जीवन अहाँ के जे से बहुत सुख बीतत। और अपन जिंदगी के मोल सेहो बुझबाक चाही जे हमर जिंदगी जे जे जीवन भगवान के द्वारा प्रदत्त हमरा अय, से जतेक दिन के लेल हम आयल छी ओते दिन कोनो एहन काज करी, ओ कीमती जिंदगी के उपयोग कोनो एहन काज में करी जे उपयोगी हुए, नहीं कि निरर्थक काज में, व्यर्थ के काज में अपन जिंदगी के बर्बाद करी। अइ बात पर में हमरा सब के हरदम ध्यान देबाक चाही जे जीवन हमर अनमोल है।
1: बिल्कुल। हाँ। और अनमोल से तात्पर्य कि हम जीवन की कोई कीमत ही नहीं लगा सकते।
0: हाँ।
1: इसको हम बहुकीमती समझ के इसकी कीमत को घटा देते हैं, बहुकीमती नहीं कह सकते हैं, बहुमूल्य नहीं कर सकते, इसको अमूल्य कह सकते हैं, अनमोल कह सकते हैं, यानी इसकी कोई कीमत, इसका कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए आपने बहुत ही खूब कहा कि जब तक जीवन है सबसे पहले तो हम जीवित, हमारी जिंदगी बची रहे, हमारा जीवन बचा रहे, इसके लिए हम कैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने दिनचर्या पर ध्यान दें जिससे कि हम जीवित रहें, और जीवन में हम कैसा काम करें जिससे कि हमारे जीवन से अन्य जो जीवन है, अन्य लोगों का जो जीवन है उसका भी जीवन बचा रहे और वो भी लाभान्वित हो।
0: जीवन देखियो, जीवन जे छे आयु अगर शास्त्र पुराण के माने छी तो निर्धारित छे, सबहक आयु निर्धारित छे के कते दिन जीत से बुझल ककरो नहीं छे, और कहल गेलै है जे विवाह जन्म मरणस्य यदाजस्य भवितति, तो ओ वाला बात
1: सत्य कहा गया है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
0: हाँ। और जे जत जई स्थान पर कखन कत ककर हेतै से पहले से निर्धारित नहीं रहै छै, बुझल नहीं रहै छै, लेकिन ई सत्य छै। लेकिन ओही जीवन के अगर अहाँ नीक जकाँ जीवक के उपाय अपना ढंग से करै छी तो ओ अहाँ के लेल सार्थकता प्रदान करैए, आ नहि ओ अबडेरल जकाँ कहुना जीव रहल छी, काहि काटि रहल छी, तो से नहि हुए। अहाँ के शरीर स्वस्थ रहे तकरा लेल आहार विहार और विचार इस सब पर में जैसे से पूरा ध्यान राखी, और नीक संयमित जीवन अगर अहाँ जीवे छी, नियमित जीवन जीवे छी, तो ओ अहाँ के सुख में अभिवृद्धि करी है।
1: बिल्कुल। शास्त्रों में भी कहा गया है मणिकांत जी कि आत्मा रक्षितो धर्म।
0: हाँ।
1: यानी आत्मा यानी स्वयं की रक्षा करना, यानी अपने जीवन की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। और वास्तव में जब हम जीवित रहेंगे तभी, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर ईश्वर ने जिस हेतु भेजा है उस हेतु को पूरा जब तक नहीं करेंगे तो फिर इस जीवन का कोई मोल या यहाँ पर आने का कोई मोल नहीं रह जाता है। रही बात कि जीवन को बचाए रखने के लिए हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अब अक्सर देखा करते हैं कि कुछ लोग अगर यातायात पर की बात करें, यातायात के क्षेत्र में, तो वाहन चलाने के समय में इस तरह से वाहन चलाते हैं कि जैसे कि उनके लिए जीवन का कोई मोल ही नहीं है।
0: हाँ।

0: से नहीं हेबाक चाही। अपन जिंदगी अपना हाथ में अहाँ के अइ, ओकरा कम से कम नियंत्रित कऽ के जरूर राखी। और वाहन के नियंत्रण में अगर अहाँ चलि जाइ छी, ओवर स्पीड के मतलब बगल जे अहाँ वाहन के नियंत्रण में चलि जाइ छी, तऽ से नहि हेबाक चाही। वाहन पर अहाँ के नियंत्रण हेबाक चाही और तकरा लेल जे गति निर्धारित छै तै गति में चलबाक चाही। और ओना जे अहाँ चलै छी तऽ अपने जान के खतरा अहाँ जे छै से मोल लऽ रहल छी।
1: और इस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं जो तीव्र गति से

0: अहाँ जे अहाँ चलै छी तऽ अपने जान के खतरा अहाँ जे छै से मोल लऽ रहल छी।
1: और इस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं जो तीव्र गति से वाहन चलाता है वो तो जाता ही है, कुछ निर्दोष लोग भी इसके कारण जो है सो चले जाते हैं, तो ये एक के साथ साथ अन्य लोगों की भी क्षति होती है, अन्य लोगों के जीवन का भी अंत हो जाता है। तो ये हम सबसे पहले यदि अपने जीवन के महत्व को समझेंगे तभी हम दूसरे के जीवन को भी महत्व जीवन के महत्व को भी समझ पाएंगे, और यदि हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझते तो फिर इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने जीवन के महत्व को समझें कि जिस तरह हमारे लिए जीवन महत्वपूर्ण है इसी तरह हर व्यक्ति के लिए हर जीव के लिए जीवन महत्वपूर्ण है। कभी कभी अवसादग्रस्त होने पर भी लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त स्वयं से ही कर लेते हैं, तो ये जीवन कीमती है, जीवन अनमोल है, इसके पीछे यही तर्क है कि हम इस जीवन से हार ना माने। जीवन में कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और जो ये भी ध्रुव सत्य है कि जो उत्पन्न होता है उसका अंत भी होता है।
0: एक स्लोगन देखे यहाँ कल्याण जी, संघर्ष ही जीवन है, तो जिंदगी में संघर्ष तो अहाँ के भेटत,
1: बिल्कुल
0: रंग बिरंग के अहाँ के चैलेंज अहाँ के सामने में आयत, लेकिन ओकरा स्वीकार करे के छै और ओकर समाधान करे के छै, ओइसा अहाँ के घबराए के नहीं।
1: हाँ, घबरा करके कभी काल जो हम गलत कदम उठा लेते हैं जैसे कि आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जीवन को बचाए रखना भी हमारा धर्म है, और परिस्थितियों से तो बिल्कुल घबराना ही नहीं चाहिए, उसमें एकदम संयमित होकर के धैर्य धारण करके और उससे निकलने को समस्या से निवारण का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। और इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, कोई ना कोई उपाय निकल ही आता है।
0: किछु ने किछु काज अहाँ करित रहबे, अगर सार्थक काज करित रहबे, सकारात्मक सोच के संग कोनो काज करित रहबे तो आगा बढ़ित रह। कभी लिखने छथि जे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो ई जे वाक्य छै, कोनो कवि जे किछु लिखै छथि से बड़ा ठोक बजा के लिखै छथि, और ओ चीज कहिया लिखल जाइ छै और कते बाद के दिन तक ओ जे छै से ओ चरितार्थ होइत रहै छै,
1: ओ सदा ही चरितार्थ होता रहेगा। मखान जी,
0: बहुत बात एहन
1: छै, जीवन का अर्थ क्या है, इस अर्थ को समझना मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह जीवन जिसके लिए मिला है वह व्यर्थ ही न बीत जाए, इसके लिए कवि ने बहुत ही गहरा जो है सो संवेदना व्यक्त किया है कि यह जीवन जिस लिए हम यहाँ पर आए हैं उसकी सार्थकता को समझें और जीवन को सार्थक बनाए, व्यर्थ न गंवा दे इस जीवन को।
0: हाँ, तैं जिंदगी अनमोल है, आ अपन जिंदगी के ध्यान अहाँ अपने नहीं देवे तो दूसर के कौन चिंता छे ओकर। तैं ई बात पर हम सब फिर चर्चा जारी रखब, लेकिन गीत संगीत के बीच में अगर चर्चा होइ छै तो कने मोन लगै छै, नहीं तो खाली अगर चर्चे होइत रहि जेतै तो अनोन सनक लागत। दस से अनोन विस्नोन नहीं, एकदम चहटगर कार्यक्रम हुआ, तेकरा लेल आओ सुनी सुंदर सनक एकटा और फिल्म संगीत।

0: जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
1: बिल्कुल, जब तक क्रियाशील रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे, जब तक कर्म करते रहेंगे, तो कुछ न कुछ हासिल अवश्य होता रहेगा। बैठे रहने जीवन का नाम ही नहीं है, जो कि इस गीत से स्पष्ट हो गया है कि चलना ही जीवन है। जीवन है तो चलते रहिए, कुछ न कुछ काम करते रहिए, और काम ऐसा कीजिए जिससे कि नाम हो। और अब श्रोताओं को समसामयिक घटनाओं से रूबरू करवा दें। NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी की। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन किए लोकसभा अध्यक्ष ने। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग लगने से 8 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ आज करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का करेंगे शुभारंभ। तो ये था समसामयिक घटनाएं।
0: और समसामयिक घटना के बाद अब हमरा लोकन जे छै से अपन बुढ़िया बिस्तर समेटी के तो कार्यक्रम नमस्कार मिथिला के समय लगभग लग जा रहा है। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला अपने सब दिन प्रातःकाल 7:05 से 7:55 तक आकाशवाणी दरभंगा से सुनी छी। आकाशवाणी दरभंगा के सुनवा के लेल अहाँ अपन मोबाइल के ऐप ओहि में सह सुन सके छी।
1: न्यूज़ ऑन AIR
0: ऐप छै आकाशवाणी के, ओहि पर में ओकरा डाउनलोड करू और सुनू आकाशवाणी दरभंगा। DTH पर सेहो आकाशवाणी दरभंगा अहाँ सुन सके छी। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला खास कर अहाँ के केहन लगैए बुझबाक जान उत्सुकता हमरा सबके हरदम बनल रहैए, जे एहिमे की और सुधार चाहै छी, की नीक बजाय केहन की लगैए, से जानकारी हमरा सबके अगर अपने उपलब्ध कराबी तऽ हमर पता अइ नमस्कार मिथिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड 8460004। एहि परमे पत्र लिखी। पत्र लिखलासँ की हैत तऽ पत्र लिखऽके एकटा चलन जे धीरे धीरे विलुप्त भेल जा रहल है सेहो जीवंत रहत, किया तऽ मोबाइलक युग में पत्र के उपयोगिता जे कने कम भऽ गेलै है, तऽ से नहि, पत्र के उपयोगिता के बनौने राखी। अहाँ पत्र लिखी और हम सब चाहब जे अपन कार्यक्रम के गुणवत्ता में सुधार आनी। तऽ आब जे छै से आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय अति सम्पन्न भऽ रहल है। मणिकांत के
1: और कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार मिथिला।

0: किएक तऽ इजोतक पहिल किरण सङ्ग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृतिमे घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबयवला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एकै क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
2: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच

0: आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि

0: परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति

0: मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a

0: Predictability and fairness to the employment-based immigration system. Executive Director of India's Pura, Sanjeev Joshipura, said all stakeholders connected with H-1B visas will have a sigh of relief after the court order. The H-1B program is one of the most sought-after U.S. work visas that allows American companies to hire skilled global talent. Trump's order proposing a $1 lakh annual fee per H-1B worker left many uncertain about visa reforms and new requirements. Akashwani News, Delhi.
1: In men's cricket, India A will take on Sri Lanka A in the opening match of Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka this morning. The match will begin at 10 a.m. Indian time. Tilak Verma-led men in blue will be up against host Sri Lanka and Afghanistan in the triangular contest. India A will face Afghanistan A at the same venue on Thursday. All the matches will be played in Dambulla, with the final match scheduled on 21st of this month. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Sarabjit. Garib Kalyan at heart of governance, says PM Modi, as NDA marks 12 years, is a front page headline in The Statesman. Crisis deepens for Mamata as her Lok Sabha team breaks. Rebel TMC MPs reach out to BJP, writes the Indian Express. Israel-Iran trade strikes may revive full-scale war in region. Government tells all Indians to leave Iran immediately, writes the Asian Age. India sees surprise current account surplus in January to March. Strong services receipts, higher remittances offset war disruptions, leads the Financial Express. Giving impetus to the digital modernization push in Indian Railways, Waitlist gets a crystal ball, Railways to unveil AI tool to predict ticket confirmations, says the Pioneer. As Delhi battles extreme heat and rising fire incidents, surge in fire incidents linked to overloaded electrical systems, writes the Delhi Tribune. The Statesman on its editorial page writes, for years, India's electric vehicle debate was driven largely by environmental concerns, yet the strongest argument for electrification may be India's enduring vulnerability to imported oils. And finally, consensual premarital relationships, no stain on character, SC orders, man's appointment as COP, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other, but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सहमुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निज़ाम का आगाज़ करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और

0: है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाक़े की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीज़ा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरख्वास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अल-अक़वामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि ज़रई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोग से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की ज़रई अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय,

आयुष बदोनी, अरशद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहां लापरवाही नहीं पहुंचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
2: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए हैं।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की विस्तारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
1: ग्रामीण विकास विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है, इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा यह स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगी। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रबी फसल 2026-27 सत्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
1: सहकारिता विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 26-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः कार्यान्वयन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: इधर कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मापी के शुल्क को 2 गुना कर दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित रैयती भूमि की मापी के लिए प्रति खेसरा न्यूनतम 2,000 रूपये और अधिकतम 8,000 रूपये लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा न्यूनतम 1,000 रूपये और अधिकतम 4,000 रूपये लगेंगे। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया की रूपरेखा विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। गौरतलब है कि प्रदेश के 211 डिग्री महाविद्यालयों में इस वर्ष 1 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में भी नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। विधानसभा में दलों के संख्या बल के अनुसार सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 जून को नाम वापसी के दिन सभी प्रत्याशियों की जीत की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। वर्तमान विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए 25-25 मत की आवश्यकता है। एनडीए के पास 201 मत है जिससे उनके 8 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, जबकि महागठबंधन के पास 36 मत उपलब्ध हैं जिससे 1 सीट पर उसकी जीत निश्चित है। एक अन्य सीट पर

उपचुनाव होना है जिसमें एनडीए की जीत तय है। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। राज्य में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश सीएल के साथ साथ महिलाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश एसएल के आवेदन पर अधिकारी एक दिन में निर्णय लेंगे। अन्य अवकाशों के आवेदन पर 7 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सदर अस्पताल के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डीएनबी की 2 सीटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 2 मेडिकल स्नातक के छात्र यहां दाखिला लेकर विशेषज्ञ चिकित्सक बनने की दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने बताया कि दिसंबर माह से इस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मन खनुजा ने बताया कि वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित सीमा लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। श्री भागवत ने बौद्धिक सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सीवान और गोपालगंज जिले के 118 प्रखंड और पंचायत शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें सेवा से हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी है। इन शिक्षकों में सीवान के 83 और गोपालगंज के 35 शिक्षक शामिल हैं। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इन शिक्षकों के नियोजन को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5

0: लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। अधिकतर स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.7, कैमूर के भभुआ का 42.4, गयाजी का 41.4 और पटना का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
3: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
2: सीतामढ़ी जिले के रेवासी पंचायत के धनुषी टोला में कल देर रात एक पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कटरिया पिकेट के पास पुलिस ने छापेमारी में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 14 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 26 अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली स्थित एचपीसीएल बायोफ्यूएल लिमिटेड इकाई के आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास परिषद की ओर से गन्ना ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। पटना जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में 6 दोषियों को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने पर राजद नेता शिवचंदर ने पार्टी पद से दिया इस्तीफा। दैनिक जागरण नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, इस बार वायुसेना और डाक विभाग पहुंचाएंगे प्रश्न पत्र। दैनिक भास्कर की खास खबर है, सीबीएसई आंसर शीट मांगने वाले हर 10 में 4 छात्र कॉपी जचवा रहे। प्रभात खबर ने खेल की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, तीसरे दिन ही अफगानिस्तान का सरेंडर, पारी और 300 रन से गंवाया मैच। आज अखबार की सुर्खी है, सासा मूसा शुगर मिल फिर से चालू होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी योजना बिहार 2026 प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी, राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लोक भवन ने नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से

0: रोक लगाई। वैश्विक बिहारी समुदाय को निवेश और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की आज होगी शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कहा अगले दो दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण अब से थोड़ी ही देर।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
5: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से।
6: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

0: लफ्ज़ है हम यानी प्रियम्बुल, जिसको हम तमहीद कहते हैं, तो हम से ही शुरू होता। तो उसका मकसद ये है कि हम मीन्स पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उससे मुराद लिया जाता है। और इसीलिए प्रियम्बुल में पहला लफ्ज़ हम डाला गया, मैं नहीं डाला गया। मैं डाला जाता तो वो शायद फिर वो कानून नहीं बन पाता, वो मैं का एक स्टेटमेंट हो सकता।
1: हाँ, फिर ये होता कि मैं, मतलब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर मैं,
0: ये हो जाता
1: इस तरह से बात।
0: और इसीलिए प्रियम्बुल में तमहीद में कहा गया हम भारत के अवाम, हम बिल्कुल, मैं प्रियम्बुल को आपको सुनाता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हम भारत के अवाम, देखिए अब यहाँ हम भारत के अवाम हो गया, ये बिल्कुल प्रियम्बुल है, मैं प्रियम्बुल ही पढ़ता था। हम भारत के अवाम मतानत संजीदगी से अज़्म करते हैं, नहीं पूरा वादा, कि भारत को एक मुक्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे इंसाफ, समाजी माशी और सियासी आज़ादी, ख्याल इजहार, अकीदत, दीन और इबादत, यानी तमाम चीज़ों की वजाहत है इसमें, दीन की, इबादत की, मज़हब की, आज़ादी की, समाजवाद की, सारी चीज़ों की सहूलत इसमें
1: कोई एक रखी को भी गई है, तो नहीं छोड़ा गया।
0: ये हमारा आईन है, इसीलिए हम इसको हम कहते हैं। अब जैसे मसावात, बराबरी का हक, मसावात मीन्स बराबरी का हक, तो सब यहाँ बराबर है हिंदुस्तान में, आईन में बराबर हैं, भले ही सियासी तौर पर कुछ आगे पीछे होता रहता है, लेकिन आईन में बराबर हैं। मसावात, बैतवार हैसियत और मौका, यानी आपकी हैसियत और मौका के लिहाज से सब के सब हमारे यहाँ बराबर हैं, और इन सब से अखुवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद, यानी फ़र्द को भी रखा, फ़र्द की अजमत भी हो और कौम का इत्तेहाद, कौम से मुराद यहाँ पूरा हिंदुस्तानी,
1: हिंदुस्तानी
0: कौम, ये कोई ज़ात और मज़हब के लिहाज से नहीं, हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। तभी जब इत्तेहाद होगा, सालमियत होगी, तभी तयक्कुन होगा, और सालमियत के बाद अपनी आइन साज असेंबली ने इसे इख्तियार किया, यानी माना, वजा किया। ये हमारा प्रियम्बुल है। तो जब हमारा प्रियम्बुल इस तरह से बनाया गया, जब हमारा आइन कानून से बनाया गया जो हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, तो जाहिर है इसमें हम लफ्ज़ आना ही था जो आया। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, दो आदमी को ले लीजिए, एक तो पूरी संविधान सभा जिसमें 299 लोग थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि एग्जामिनर ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये एग्जामिनर की रिपोर्टिंग है, राजेंद्र प्रसाद की कॉपी इवेलुएट नहीं हुई, एग्जामिनर ने ये बात लिखा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो वो आदमी इसका चेयरमैन है। और अब आइए अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि हिंदुस्तान में एक उम्दा सोच और समझ रखने वाला इनसे ज्यादा लोग कोई भी आदमी सामने नहीं है, हो सकता कुछ होंगे तो सामने नहीं थे। सबसे ज़्यादा अक्लमंद माने जाने वाले उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये बड़ी बात थी। तो जाहिर है जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हों और जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, तो वहाँ पर हम लफ्ज़ आना ही था। ये सब के सब इत्तेहाद और अमन के जो पुजारी लोग थे, तो जाहिर ऐसी जगह पर अगर हम नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा, हमसे मुराद हिंदुस्तान।
2: मैं हम का मतलब एक और भी था, चूंकि हमारा समाज इतना मुतनव्व है, डाइवर्सिटीज इसमें इतने हैं, इसमें कई मजाहिब, कई जात पात के लोग रहते हैं, तो वो हर शहरी खुद को शामिल समझे कि आप हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, कि बिला किसी मजहब, जात और नस्ल की तफरीक के सब अपने आप को बराबर समझे। और ये बराबर मसावात का जो हक देता है कानून, ये दरअसल इंट्रोडक्शन है उस दस्तावेज का, जो कानून जो बनाया गया, आईन का इंट्रोडक्शन है, और ये निचोड़ है। इसमें ज्यादातर चीजें बहुत ही मुख्तसर तमहीद में शामिल कर ली गई हैं।
1: मतलब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी प्रियम्बुल की वजह का ही देखा जाए तो हमारे अंदर वो जज्बा भी पैदा होता है कि हम कहीं भी रहते
2: होता है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, वी द पीपल, हम हिंदुस्तानी,
1: हम कहीं भी रहते हैं तो बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है, सबसे पहले जावेद साहब आप बताएं कि जो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा है, तो क्या ये इसकी खूबी है या फिर ये इसकी खामी है?
2: ये दस्तावेज आईन बनाया जा रहा था, तो चूंकि हमारा जो मुल्क है इतना बड़ा मुल्क और इतने तरह के लोग, कि ये इनफरादियत है, और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो तवील ये आईन है,

0: के साथ आज कुछ हालात और हैं, कल को कुछ और हालात होंगे, इसलिए ये ज़रूरी था कि वो उसमें अमेंडमेंट और तरमीमात होती रहें। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो उस वक्त जो बनाया गया उस वक्त की बात है ये, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई वो फिर 61वें अमेंडमेंट में आर्टिकल 326 28 मार्च 1989 को किया गया, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज 21 से 18 की उम्र।
1: ये सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा था कि हमारे आईन में जो एक बहुत अहम चीज है कि वोट का हक हर आवाम को दिया गया है, तो कहते हैं कि ये सबसे पहले जब हमारा आईन बना था तो उस वक्त 21 साल की उम्र के लोगों को ये हक हासिल था, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन फिर इसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। तो प्रोफेसर तौकीर साहब, आप हमें बताएं हमारी आवाम को कि ये हमारी आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए इसमें क्या फायदा मिला?
2: देखिए, इसमें है ये कि 21 साल था और अभी 18 साल जी, तो जिस वक्त ये बना उस वक्त 21 साल रखा गया। अब वो इसलिए रखा गया था कि उस वक्त हिंदुस्तान के लोग आवाम स्पेशली बहुत मैच्योर्ड नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ तालीम की कमी थी। तो जब तालीम कम है तो जाहिर है कि उस आदमी को जिसकी तालीम कम होती है उसको समझने में ज़्यादा देर लगती, तो इसी वजह से मैच्योरिटी कम थी, इसलिए 21 साल रखा गया। अब आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान तो है नहीं जो 1947 का हिंदुस्तान था या 1950 का हिंदुस्तान था, वो नहीं है। हमारा रेशियो बढ़ गया एजुकेशन में, हमारे सोचने और समझने की सलाहियतें और ताकतें भी बदल गई। तो बीच में एक ऐसा वक्त आया कि एक डिमांड भी था हमारे नौजवानों का कि हमें वोट देने का अख्तियार मिलना चाहिए। जब 18 साल का बच्चा और कहीं से बीपीएससी पास करके अगर आ जाए तो वो एसडीओ और बीडीओ तो हो जाएगा, तो एसडीओ हो सकता है लेकिन वोटिंग राइट नहीं रहेगा जो एसडीओ इलेक्शन करा, तो जब वो इलेक्शन करा सकता है तो फिर वोटिंग राइट क्यों नहीं हो। सारी चीजें हमारे यहाँ 18 साल से शुरू होती है, नौकरी में आने के लिए 18 साल,
1: जी,
2: शादी करने के लिए 18 साल,
1: ड्राइविंग लाइसेंस
2: के लिए 18 साल, हर जगह जब 18 साल है तो ये तमाम चीजों पे सोच विचार करने के बाद रखा गया कि ठीक है वोटिंग राइट भी अब 18 साल होगा। और ये बेहतर है, ये बेहतर है कि ताकि नौजवानों को भी अपना अख्तियार हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, तो इसलिए वो ठीक है और मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब।
0: इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि किसी भी मुल्क की जो बुनियाद होती है, जो तरक्की जो होती है, वो उस नौजवानों को पेश नज़र रखते हुए वो मुल्क काम करता है। दुनिया के सारे मुल्क जहाँ नौजवान ज्यादा होते हैं वो मुल्क अपने आप को तरक्की के रेस में बहुत तेज तरक्की करता है। वो
1: है ना कि हमारी जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चों के ऊपर ही है देखा।
0: और दूसरी चीज ये है कि उसमें जब कहा गया कि भाई 21 साल में जब मैच्योर हो जाता तो बच्चे जो है आजकल 18 साल में, ऐसा नहीं है कि जो मैच्योरिटी उसकी कम होती है, उसका लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो होता है ऐसा नहीं है 18 साल में बहुत कम हो 21 साल में बहुत पड़ जाए, तो इसलिए वो हुकूमत बनाने में क्यों उसको 21 साल रखा जाए, 18 साल में क्यों नहीं उसको शामिल किया जाए, ताकि वो भी तो देख रहा है, वो भी सारी चीजें जैसे 21 साल वाला देख रहा है वैसे 18 साल बहुत फर्क नहीं है। लिहाजा और दुनिया के कई ऐसे मुल्कों में जो 18 साल पहले से ये राज था, इसलिए उसको ये सब सारे हालात को पेश नजर रखते हुए ये जो है 18 साल किया गया। हाँ, तो अमेंडमेंट तो अलग चीज है, अमेंडमेंट तरमीम जो है वो 107वां 106वां अभी हुआ था थोड़े दिनों पहले, वो औरतों को खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया था 107वें अमेंडमेंट के तहत, और उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है 107।
1: अच्छा, अभी जैसे अभी आपने कहा दूसरे किसी मुल्क में भी था कि वो 18 साल की उम्र में अपनी आवाम को वोटिंग का हक दे रहे थे, तो यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि हिंदुस्तानी आईन को कहते हैं कि उधार का थैला, बैग्स ऑफ बोरो कहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो जावेद साहब आप बताइए।
0: जी, कोई भी चीज़ जब नई तश्कील होती है तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें ये मुंतखब किया जाता है कि इसमें बेस्ट और सबसे बेस्ट और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कैसे शामिल की जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया जाता है जिसके मुताबिक हर शहरी को जिंदगी गुजारना और उस पर अमल करना था। लिहाजा इन चीजों, इन जरूरियात, इन हालात को देखते हुए देखा गया कि किन मुल्कों के आईन में बेहतरीन चीजें शामिल है, तो उसमें जैसे बरतानिया उसका पार्लियामानी सिस्टम लिया गया, देखा गया कि भाई पार्लियामेंट, यही वजह कि हिंदुस्तान में अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। उसके बाद जुडिशियरी को देखा गया, अदालतें बड़ी अहम रोल अदा करती हैं, ये देखा गया कि अमेरिका में बहुत अच्छा जुडिशियरी है, तो अमेरिका से वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बिल्कुल आजाद हो, किसी के दबाव में कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम न कर रहा हो, ये चीज देखा गया कि अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका से वो चीज जुडिशियल जाए। इसी तरह से जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल,

जब कानून की हुक्मरानी होगी तभी सब कुछ होगा, यानी अदालतें हमारी बिल्कुल आजाद हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदालत हमारा फैसला कर लेता है, रामपुर मौजूद है पहले से। तो ये अदालतें हमारी इतनी आजाद हैं, और दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कहीं भी नहीं, जहां अदालत इतना फ्री हो। बहुत कम जगहों पे है, बहुत है और भी जगहों पे है, तभी हमने लिया। एक और चीज बताता चलूं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिटीजनशिप बिल्कुल सिंगल है, आपको हिंदुस्तान का शहरी रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है, अपने मुल्क से एक तरह से हम अपनी वफादारी, अपना एक कमिटमेंट हम दिखाते हैं।

0: सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप बिल्कुल सिंगल है, आपको हिंदुस्तान का शहरी रहना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है, अपने मुल्क से एक तरह से हम अपनी वफादारी, अपना एक कमिटमेंट हम दिखाते हैं। कम जगहों पे बहुत सारा डबल सिटीजनशिप है, कहीं कहीं तीन तीन जगहों के सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, अपने मुल्क के लिए वफादार है। और जो मुल्क के लिए वफादार नहीं है वो हमारे सिटीजन नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये हमारे आइन की खूबियाँ हैं जो दूसरे जगहों पर हमें तो बहुत कम देखने को मिलता है। और सुपरमेसी ऑफ लॉ है, एक दफे जो फैसला हो गया तो हो गया, लेकिन वहाँ भी गुंजाइश रखी गई कि अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला है और उससे अगर एक पार्टी नाखुश है तो उसे अख्तियार है आगे अपील करने का। अपील करते करते हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और इस बीच में जिसको ग्रीवांस होता है उसे कहीं ना कहीं से उसके मुताबिक एक सही फैसला हो ही जाता है अमूमन, और उससे वो शख्स मुतमईन हो जाता है। यही खूबी है हमारे हिंदुस्तानी आइन की।
1: जावेद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो ढांचा है हमारा, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें जितनी सारी जो लचक है, सख्ती है, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद जो आवाम है वो अपने आप को यहाँ पर हर हिसाब से देखा जाए तो एक बेहतरीन भाईचारे के साथ रहते हैं, हम आहंगी है हमारे दरमियान में, हम एक दूसरे को समझते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो क्या कहीं ये हमारी आइन का भी असर है जो हमारी शख्सियतों के ऊपर दिखता है?
2: आइन बनाया ही इसलिए गया है ताकि हर शहरी अपने आप को समझे कि हमारे जितना हक है दूसरे शहरी का भी उतना ही हक, जिसको हक मसावात कहते हैं। और रही बात सख्ती और लचक की, तो ये दोनों का इम्तिजाज है, आमेजिश है। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत है। जैसे अमेरिका में बहुत सख्त है लेकिन उल्टा बरतानिया में जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकदार है, चूंकि एक तहरीर में नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि हर चीज तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बाकी है तब तक हर शहरी का हक महफूज है। इसलिए इसमें लचक भी होना जरूरी है और सख्ती भी जरूरी है। अगर सख्ती ना हो तो जैसा मैंने अर्ज किया कि बुनियादी ढांचे को भी जब ये हुक्मरान जमात जो है वो आसानी से तब्दील कर सकते, लेकिन चूंकि आवाम यहाँ सुप्रीम है।
1: सही, यही मैं कहने वाली थी कि यहाँ
2: आवाम सुप्रीम है। बगैर आवाम को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, ये मैं नहीं कहता कि 100% आवाम कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके कानून बनाए जाते हैं और मलहूज रखा जाता है। इसलिए इसमें ये दोनों की आमेजिश जरूरी है, सख्ती और लचीला।
1: हम सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे आइन को मुझे लगता है कि पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। इस पर आप दोनों जाते जाते हमारी सामीन को बताएं कि आपकी क्या राय है। सबसे पहले आप बताइए प्रोफेसर ताकिर साहब।
0: देखिए, हिंदुस्तान का जो आइन है हमारा, तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहाँ पर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ हमें जाहिर आइन को सामने रखना है और उसके मुताबिक हमें चलना है, और यही यहाँ की खूबसूरती भी है। और इसी में ये हिंदुस्तान अपने ओरिजिनल ढांचे पे मौजूद भी रहेगा। जिस दिन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हिंदुस्तान वही रजवाड़ों में, वही बादशाही इलाके में, उसी ज़मींदारों में, इसी तरह के लोग, फिर बंटवारा शुरू हो जाएगा। फिर हिंदुस्तान का जो एक ढांचा है शायद मुकम्मल ना रहे। तो इसलिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ द लॉ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ तीन चार चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि जमहूरियत हमारे यहाँ है तो फॉर द पीपल, वी द पीपल हम कहते हैं, बाय द पीपल है, तो ये हमारा डेमोक्रेसी का है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वी द पीपल कहते हैं। तो ये तभी मुमकिन है ना जब सुपरमेसी हमारी बरकरार रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये चलता रहता। और हिंदुस्तानी आइन में जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र कर दिया, अमेंडमेंट की भी गुंजाइश है, तो अमेंडमेंट ज़रूरत के मुताबिक तो हम करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा आइन मौजूद है, अमेंडमेंट करते हैं वक्त और ज़रूरत के लिहाज से। अब आवाम के लिए जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो खुलासा है, मैं तीन चार जुमलों में आपके सामने उसको रख देता हूँ। हिंदुस्तानी आइन समाजी इंसाफ, मसावात और आज़ादी के उसूलों पर मबनी है, जो मुल्क के मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतों को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करता है, और शायद इससे बेहतर खुलासा मुमकिन नहीं है।
1: आप बताएं जावेद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
2: बिल्कुल, जहां तक पढ़ने की बात है तो जाहिर है वो इतना जखीम है कि वो टेक्स्ट पढ़ना सबके लिए
1: मुश्किल है।
2: चूंकि हमें देखना पड़ेगा फिर वो इलिटरेसी और इलिटरेसी, पढ़े लिखे हुए कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, फिर उनकी समझ फहम किस सतह की है, किस लेवल की है।

0: बहरहाल, इससे आगे जाके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ सकते हैं और जो कानून थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, जाहिर है कानून की ज़रूरत हम सबको है, चाहे वो जाहिल हो चाहे वो अनपढ़ पढ़ा लिखा हो, कानून की ज़रूरत पड़ती है और कानून से वास्ता हर लम्हा
1: पड़ता है।
0: उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी है, इसलिए उस पर जो बनाया ही गया है वेलफेयर स्टेट भी एक लफ्ज आता है कि वेलफेयर स्टेट मतलब क्या है, वेलफेयर का कि भलाई, भलाई किसकी, आवाम की, शहरी की भलाई, तो उसी को मद्देनजर रख के आईन बनाया ही गया है। लिहाजा हमने भी ये अज्म किया है कि वी द पीपल तमहीद में कि हम जो कुछ है हम साथ हैं बिल्कुल, तो गोया ये अज्म है के आईन के साथ और आईन की पूरी पासदारी करेंगे। और ये आईन की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि तब था और आज वो ख़त्म हो गई, नहीं, इसकी ज़रूरत तो जब तक ये मुल्क, जब तक ये दुनिया रहेगी उस वक्त तक इसकी पासदारी करना लाजमी है और ये ज़रूरी है सबके लिए। हर चीज़ उसमें शामिल है, उसमें बुनियादी हुकूक भी शामिल हैं, उसमें मसावात बराबरी का हक भी शामिल है, मजहबी आज़ादी का हक भी शामिल है, उनकी खिलाफ वर्जी अगर हुक्मरान जमायत भी करती है, हुकूमत भी करती है, तो एक शहरी को ये अख्तियार है कि वो अदालत से रुजू, और वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो अवॉइड होता है, उसके खिलाफ वर्जी होती है, तो हर शहरी को ये अख्तियार है कि वो बराह रास्त वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसको फैसला नहीं मिलता है, अगर उसको लगता है शहरी को कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, जुडिशियल रिव्यू का भी है हमारे यहाँ, अगर जुडिशियल रिव्यू से भी अगर ना हुआ तो एक रास्ता आखिरी और भी बचता है, वो जो सिविल सोसाइटीज हैं उसके जरिए वो इंटरनेशनल इंसानी हुकूक कमीशन में वो जा सकता है। और कहा जाता है कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो बेशक वो पैसे उसके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन वो जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो उनकी मदद करने को तैयार रहती हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह के बहुत अच्छे काम अंजाम देती हैं और वो इसकी राह निकालती हैं।
2: इस बीच में एक चीज़ और भी है
1: जी।
2: जैसे अदलिया के बाद इंटरनेशनल लॉ है, उसके बीच में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से भी अपनी बात अपील कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर उसको फांसी की सज़ा हो गई तो उसके खिलाफ हम सदर जमहूरिया से अपील कर सकते हैं कि मेरी गलती ने मुझे माफ़ कर दे, और ये उन्हें अख्तियार हासिल है, वो चाहें तो उसे माफ़ कर दे सकती हैं, अगर नहीं चाहेंगी तो नहीं भी माफ़ कर सकती हैं। तो ये भी हमारे आइन की खूबसूरती है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक गुंजाइश है कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का अख्तियार सदर जमहूरिया को हमारे यहाँ है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ वफाकी निज़ाम यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसका मतलब यह है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट, ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बना रहे। जब तक के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जो चाहे करने लगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस, हमारे कानून में आइन में चेक एंड बैलेंस बहुत है। एक तरफ अदलिया चेक एंड बैलेंस करती रहती है, दूसरी तरफ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग है, इसका तो बाकायदा मुजाहरा खासतौर पर इलेक्शन के ज़माने में होता रहता है, बाकायदा मुजाहरा होता है। सेंट्रल में अगर किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की सरकार है, तो दिक्कत बनता है, तरह से सब कुछ होता रहता है। तो वफाकी निज़ाम का एक फ़ायदा ये भी है कि जल्दी हमारे यहाँ कोई आदमी डिक्टेटर नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ हमारे ही कानून में है यानी हिंदुस्तान के आइन में है, ऐसा दूसरी जगह पर बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन हमारे यहाँ है और अमली तौर पर उसका मुजाहरा भी होता है, ये हमारे आइन की
1: सबसे बड़ी खूबसूरती।
0: प्रोफेसर साहब की बात को मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, उसी में शामिल कर देता हूँ, कि चूंकि ये तवील भी है हमारा, तो इसमें एक एक पॉइंट को कोशिश ये की गई है कि वजाहत की जाए इसको, ताकि उसमें इबहाम ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो ये इसलिए वो सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट, एक और लिस्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है, जिसमें दोनों का पावर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर शादियात, डिवोर्स, ये दोनों में इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कुछ ऐसे पावर हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते। लेकिन इसके बावजूद ये अलबत्ता ये ज़रूरी भी था कि थोड़ा झुकाव होता है और ये कहा जाए कि अपर हैंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जैसे अगर बाहर से किसी ने हमला कर दिया हमारे मुल्क पर, या कुछ ऐसे नागुजीर हालात

0: पैदा हो गए, इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए, तो इन हालात में वो स्टेट का पावर पूरे तौर पर सीज हो जाता है और वो मरकज की तरफ वो पावर चला जाता है।
1: फिर वो सेंट्रल और वो
0: जैसे प्रेसिडेंट रूल जो कहते हैं हम, कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट रूल को नाफिज करना पड़ता है, तो ऐसे भी है। तो ये सारी चीजें हालात के पेश नजर रख, अगर ऐसा ना हो तो स्टेट भी डिक्टेटर हो जाएगा।
2: के लिए फेडरल सिस्टम रखा गया,
0: फेडरल सिस्टम
2: एंड बैलेंस होगा, इमरजेंसी का पावर भी है। अब हंगामी हालात में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया सारी चीजें बंद हो गई, आपका फंडामेंटल राइट तक सीज हो जाता है, सारी चीजें हमारी वहीं पे रुक जाती
1: और बहुत सारे फसादात से आवाम जो है।
2: और कंग्रेस लिस्ट में सबसे एक सबसे अहम जो कंग्रेस लिस्ट में वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे दोनों का अख्तियार है, स्टेट का भी है और सेंटर का भी है। अगर ये दोनों के अख्तियार नहीं होते तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चरमरा जाता। जिस स्टेट में जिसकी हुकूमत होती है अपने हिसाब से एजुकेशन शुरू कर देती, तो इसीलिए सेंटर का भी उस पर कमांड रहता है कि कंकर लिस्ट का सबसे अहम पार्ट है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसीलिए मनमानी नहीं चलती, कुछ मिला जुला के चलना पड़ेगा। तो ये हमारे आइन की सब खूबसूरती
1: जी। आज की हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी रही सामीन हजरात, और आपने समझा होगा कि हमारा जो आइन है सही मायने में बहुत खूबसूरत है। यूं ही नहीं बना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलस्तान हमारा, तो इस गुलस्तान को संभाल करके रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। और मैं आज के हमारे खास मेहमान खसूसी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोफेसर तौकीर आलम साहब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, और जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेजबान से गुप्ता को दीजिए इजाजत। सामीन अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ने से कबल एक प्यारी सी गजल से आइए अंजुमन को मुअत्तर करते हैं।

नुस्खे उस कुतुब खाने में मौजूद थे। आपको बताएं सामीन कि 1969 में हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करके इसे कौमी अहमियत का अदारा करार दिया है। जी हाँ, किताबों का यजीम सच्चा दोस्त 3 अगस्त 1908 को इस दुनियाए फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कह गया और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें लाइब्रेरी के अहाते में ही दफन किया गया ताकि खुदाबख्श खां अपनी महबूब किताबों के साए में ही हमेशा की अबदी नींद सो सके। कहते हैं कि जब किताबों से दोस्ती हो जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। बेशक किताबों से ज़िंदगी जब होती है दोस्ती तो वो बदल जाती है, ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी किताबें हमारी किस तरह की दोस्त हैं और हमारी किताबें कैसी हैं। कहते हैं कि अच्छी किताबें बिल्कुल अच्छे दोस्त की तरह होती हैं, आपकी ज़िंदगी को दोनों जहान के हिसाब से बेहतरीन और कामयाब बना देती हैं। लेकिन वहीं अगर हमने किताबों को चुनने में गलती की तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ भी लेके जाती हैं। इसलिए किताबों से दोस्ती ज़रूर कीजिए। आज के वक्त में हम मोबाइल के पास बहुत करीब हो चुके हैं, सुनते हैं देखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि असल मज़ा ज़िंदगी का तब है जब आप किताबों से दोस्ती करते हैं। इसके साथ ही सामीन हज़रात, आज की अंजुमन यह इख्तिताम पज़ीर होती है। अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, रखिए बहुत सारा ख्याल चूँकि मौसम बदल रहा है और इस बढ़ते हुए गर्मी में सभी को रखिए दुआओं में याद, और शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, कल फिर सजेगी अंजुमन। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जीना मरना तेरे संग से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

अकेले हम अकेले तुम। इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत है अनु मलिक का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यू जॉन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, जिसे लिया है हमने फिल्म दिल है की मानता नहीं से। गीत फयाज अनवर का है।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था जतिन ललित का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन और वाचन है विजेता सिन्हा का। प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके एक भी फिर से बज्जी का कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। हम फिर से अपन समय पर उपस्थित हती। देखो अपन देश में गांव के परंपरा के सामाजिक आ सांस्कृतिक जीवन के मूल केंद्र मानल जाइए। हालांकि आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास आ शिक्षा गांव के पारंपरिक तस्वीर के बहुत हद तक बदल देले है। ये बदलाव एगो मिश्रित प्रक्रिया है जे परंपरा के संरक्षण आ आधुनिकता के समन्वय पर आधारित है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण समाज के मुख्य आधार कृषि आ पशुपालन रहल है। मतलब पुरुष वर्ग जहाँ गांव में खेत में खेती करे, पशुपालन करे, वहीं महिला अपन घर में ही रोजगार के नया नया स्रोत सब ढूंढते रहे। यहाँ के लोग के सादा जीवन प्रकृति से नजदीकी आ सामुदायिक एकता से परिपूर्ण होइत है। जजमानी प्रथा मतलब मेहमान के भगवान मान हुनकर स्वागत करनाए के अपन धर्म समझना गांव के लोग के परंपरा में शामिल है। ये जजमानी प्रथा आ मजबूत पारिवारिक बंधन गांव के विशेषता है, जहां सब जाति आ समुदाय के लोग मिलजुल के त्योहार मनावित है। शाम के चौपाल पर बैठना, लोक गीत गाना, मेला आ बुजुर्ग के सम्मान करना, तीज त्योहार पर एक दूसरा के संगे खूब खुशी मनाना, एक दूसरा के सुख दुख में काम आना यहाँ के विशेषता है। आ ये विशेषता से गांव के परंपरा के बल मिलैया। लेकिन आए देखते देखते गांव के समाज के एगो नया तस्वीर सामने

0: आयल है। ई गांव के परंपरा में एगो नया परिवर्तन आयल है। देखो, जहां खेती पहले हल बैल द्वारा कैल जात रहे, वहीं अब खेती करे के लेल आधुनिक ट्रैक्टर आ मशीन के इस्तेमाल कैल जाइए। गांव में उच्च शिक्षा के प्रसार से गांव के लोग के सोच में परिवर्तन आ रहा है। पहले गांव के लोग खेती कर अपन जीवन यापन करत रहथिन, आ कते लोग अपन आजीविका के तलाश में शहर से बाहर जात रहथिन। लेकिन अब उहे लोग अपन गांव में ही तरह तरह के रोजगार ढूंढ के अपन जीवन यापन करत हथिन। गांव के महिला अपन घर पर ही अचार पापड़ बना के, अपन हाथ से बनल सजावट के सामान बना के, घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोल के, सिलाई सेंटर चला के अपन जीवन यापन करत हथिन। देखो, इस तरह से जीवन जिए से गांव के परंपरा के समाज में एगो नया पहचान मिलत है। इस तेजी से बदलत परिवेश में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे के मिल रहा है। पाश्चात्य संस्कृति आ शहर के नकल करे के दौर में गांव अपन मूल पहचान आ लोक संस्कृति से दूर हो रहा है। आए गांव के परंपरा आ बदलित समाज के बीच एगो गहरा संतुलन बनावे के जरूरत है। विकास के प्रक्रिया में अपना सबके आधुनिक सुविधा के अपनावे के चाही, लेकिन अपन प्राचीन संस्कृति, अपन सादगी आ पारिवारिक मूल्य के नहीं भूले के चाही। आधुनिकता आ परंपरा के ई मेल हमर गांव आ देश के एगो मजबूत आ विकास के दिशा में आगे बढ़ा सकत है, विकास के दिशा बना सकत है। देखो, गांव के परंपरा आ बदलित समाज एक सिक्का के दो पहलू है। बदलाव तो प्रकृति के नियम है आ विकास के लेल ई जरूरी भी है, लेकिन हमरा सबके ई ध्यान रखे के चाही कि विकास के दौर में हमर समृद्धि, सांस्कृतिक आ मानवीय मूल्य पीछे नहीं छूट जाए। देखो, सही मायने में प्रगति वही है जहां हम आधुनिकता के सुविधा के अपनाई, लेकिन अपन जड़ आ ग्रामीण संस्कृति के आत्मा के भी जीवंत रखी, ओकरा नहीं भुलाई। देखो, समाज चाहे गांव के रहे चाहे शहर के, समाज के महत्व तो हर जगह बनल है। तो आओ, अब कार्यक्रम में सुनित हती समाज के महत्व के विषय में एगो आदमी के की विचार है।
1: हमार नाम मंटू यादव है। हम ई कहे चाहत हती समाज में बहुत ताकत हुई है, समाजे है जहां हर समस्या के समाधान हो सके। यही लेल समाज में अपन बात के रखना बहुत जरूरी हो जाए। समाज में कई तरह के समस्या सामने आवे है, जकरा हम सामाजिक समस्या कहे छे। उस समस्या के समाधान के लेल सबके मिल बैठ के बात करे के चाहिए, खासकर युवा वर्ग के इमें बढ़ चढ़ के आगे आवे के चाहिए। युवा ही देश के भविष्य है, समाज के भविष्य है। लेकिन हमरा ई नहीं भूले के चाहिए जे बड़ बुजुर्ग हथिन, उनकर अनुभव बहुत है, उनकर अनुभव के लाभ हमेशा लेवे के चाहिए। अगर समाज में कोई तरह के बात हो तो बड़ बुजुर्ग के अवश्य बैठावे के चाहिए, उनकर विचार लेवे के चाहिए, साथ ही उनकर विचार के सम्मान करे के चाहिए। समाज के ताकत बहुत बड़ा ताकत हुई है, जिनका साथ समाज है वो बहुत ताकतवर है। ऐ लेल समाज के विकास के लेल, समाज के निर्माण के लेल, समाज के कोनो तरह के समस्या के लेल सब कोई बैठ के समाज में ही एक निष्पादन करे के चाहिए, ऐसे समाज और मजबूत हुई है। कोनो आदमी के समाज के उपेक्षा नहीं करे के चाहिए, काहे कि यह समाज है बेर बखत पर काम आवे है। जेकरा साथ समाज है ओकरे साथ सब कोई है, तो समाज के सम्मान करी आ सब कोई समाज के साथ मिल के रही।
0: अखनी अपने सब सुनित रही समाज के महत्व के विषय में एक आदमी के विचार। अब आओ कार्यक्रम में आनंद लेत हती राम बालक निराला के पूर्वी गीत के।

अखनी अपने आनंद लेत रही राम बालक निराला के पूर्वी गीत के। अब बात करे थती बेटी के सपना आप परिवार के सहयोग के विषय में, तो देखू हर माता पिता के ई इच्छा रही है कि हुनकर संतान पढ़ लिख के काबिल बने, अपना पैर पर खड़ा रहे, अपन अलग पहचान बनावे। पर जहाँ तक बेटी के सवाल है, तो अब जाके माता पिता के नजरिया बेटी के प्रति बदल गेल है। मतलब अब हुनका ई समझ में आ गेल है कि जेना बेटा के पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ठीक वैसे ही बेटी के शिक्षित करना भी जरूरी है। पर जहाँ तक बेटी के सवाल है, तो अब जाके माता पिता के नजरिया बेटी के प्रति बदल गेल है। मतलब अब हुनका ई समझ में आ गेल है कि जेना बेटा के पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ठीक वैसे ही बेटी के शिक्षित करना भी

जरूरी है। ई समय के मांग है जेकरा हर माता पिता अब समझे हथिन। आप बेटा बेटी के फर्क के मिटा के बेटा के तरह बेटी के भी पढ़ावे हथिन। आई हर माता पिता के ई कोशिश रही कि हुनकर बेटी पढ़ाई कर अपन हर सपना के पूरा करे, ऊंचा शिक्षा पाए, ऊंचा पद पाए, परिवार समाज और देश के नाम रोशन करे। देखो बेटी पढ़ लिख के अपन सपना पूरा करे ई हर माता पिता चाहत हथिन, पर कहीं न कहीं हुनका अभी भी ई डर सतावित रही कि कहीं वो बाहर पढ़े जा

0: देश के काम आवे के सपना अधूरा रह जाइए आ नतीजा ई होइए कि बेटी के मन टूट जाइए। वो अपना आप के असहाय महसूस करे लगैए, मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाइए। त ऐसा नौबत नहीं आवे अइला बेटी के सपना पूरा करे के लिए परिवार के पूरा सहयोग करे के चाही, हुनका सही मार्गदर्शन आ सुरक्षित माहौल देवे के चाही, पुरान विचारधारा के त्याग हुनका पढ़ावे के चाही आ उ जे भी बने चाहे हुनकर रुचि के अनुसार हुनका शिक्षा दिलावे के चाही आ अपन बेटी के साथ एगो मजबूत विश्वास के रिश्ता बनावे के चाही। देखो अगर हम अपन बेटी के उज्ज्वल भविष्य के कामना करत हती तो ओइला पहले अपन बेटी के दोस्त ओकर राजदार बने के पड़त, ताकि उ अपन हर बात अपन हर समस्या खुल के रख सके, ताकि परिवार हुनका सहयोग करे हुनकर मदद कर सके। त अइला भी बेटी के तैयार करे के चाही, मतलब जूरो कराटा जैसन चीज भी हुनका सिखावे के चाही, काहे कि हर समय परिवार के लोग हुनका साथ नहीं हो सकैए। त ऐसे में हुनका अपन सुरक्षा खुद करे के पड़ सकत है। त अइला ऊंचा शिक्षा के साथ साथ अपन बेटी के अपन सुरक्षा के गुर भी सिखावे के चाही। एकरा अलावे विशेष कौशल जैसे खेल कला से जुड़ल प्रशिक्षण दिलवावे के चाही। अगर बेटी के सपना के आड़े पैसा आवे तो ओइला पहले से ही सुकन्या समृद्धि योजना जैसन कई को योजना है जेकरा सरकार चलावे थतीन, तो उ योजना के लाभ उठावे के चाही या शिक्षा लोन के जरिए वित्तीय तैयारी पहले से कर लेवे के चाही। बेटी जब जन्म ले तो ओकर शादी के नहीं बल्कि ओकरा पढ़ावे के कुछ बनावे के लिए चिंता करे के चाही। परिवार के द्वारा कैल गेल इहे चिंता बेटी के आगे बढ़े में मदद करत है। आप बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनित है, अंतरिक्ष के यात्रा से लेके धरती पर खेल कुश्ती दौड़ हर क्षेत्र में अपन सपना के साकार करत है। अपन सपना के साकार करे के संगे संगे वो परिवार समाज आ देश के नाम के भी रोशन करत है। त अपन पुरान रूढ़िवादी विचारधारा के बदलेत अपन बेटी के साथ परिवार के सदैव रहे के चाही, हुनका आगे बढ़े में मदद करे के चाही। अब आओ कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आप बेटी के आगे बढ़ावे ला सुने थती आभा अनुराजिता के ई काव्य पाठ।
1: हमर पहला कविता। गे माय हमहू पढ़े जबौ बाबू से तू कही ना, आ भैया लागी किताब अलै हा हमरोला मंगा दही ना। भैया अगर गिढ़ी हथुन हमहू तो ओकरे नीव, आ तोहर सबके मक्खन भैया हमहू तो भेलियो घीव। केतना निमन लगैत है भैया भर दिना पढ़ैत रहित है, इतने वर्ष हमरा से सब काम करबैत रहित है। भैया तोरे लगे रहथुन हम चल जबौ दूर, आ पढ़ल लिखल रहबौ त वही घरवा के होबौ नूर। भैया जे कलेक्टर बनथुन डॉक्टर नहीं हम बनबौ, हुन भाई बाबू के नाम बढ़ैथुन हम दुनू कुलवा तरबौ। जे कुल के उ बाती हथुन वही कुल के हम बाती, आ हुनका जे सब वंश कहै छै हमहू तो तोहरे थाती। गे माय हमहू पढ़े जबौ बाबू से तू कही ना, आ भैया लागी किताब अलै हा हमरोला मंगा दही ना।
0: अखनी अपने सब सुनित रही आभा अनुराजिता के ई काव्य पाठ। आई हम बात करे थती मिथिला के मधुबनी शहर के, जे अपन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आ विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला के लेल जानल जाइए। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल में ऐतिहासिक राज पैलेस, प्राकृतिक आ सांस्कृतिक केंद्र मिथिला हाट आ उच्चैठ भगवती मंदिर भी शामिल है। यहाँ के राज पैलेस जेकरा नौलखा महल भी कहल जायत है, ई महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित भेल रहे। ई एगो ऐतिहासिक महल आ किला है। जब 1934 में भूकंप आयल रहे त ई महल क्षतिग्रस्त हो गेल रहे, ओकरा बावजूद भी ई महल के भव्यता आ वास्तुकला पर्यटक के अपना तरफ आकर्षित करत है। यहाँ के मिथिला हाट जे कि झंझारपुर के अररिया में स्थित है, ई आधुनिक पर्यटन स्थल मिथिला के संस्कृति कला स्थानीय व्यंजन आ हस्तशिल्प के एगो

शानदार केंद्र है। यहाँ एगो उच्चैठ में भगवती मंदिर है। इ मंदिर माता दुर्गा के समर्पित एगो प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ महाकवि कालिदास के माता के कृपा से विद्या प्राप्त भेल रहे। ऐसे ही यहाँ के उगना महादेव मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। इ मंदिर पंडौल के पास स्थित है। इ मंदिर भगवान शिव के समर्पित है आ एकर गहरा संबंध महान मैथिली कवि विद्यापति के लोक कथा से है। मधुबनी मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित एगो प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है जेकर नाम है कपिलेश्वर स्थान। यहाँ भी लोग घूमे खूब आबित हथिन। यहाँ महाशिवरात्रि आ सावन के महीना में भक्त के भारी भीड़ उमड़ित है। यहाँ आके भगवान शिव के दर्शन कर अपन जीवन के धन्य बनावे थतीन। त ई रहे मिथिला के मधुबनी शहर के कुछ खास स्थल जहाँ पर्यटक घूम सके थतीन, यहाँ के विशेषता के जान सके थतीन। त बात अपन धरोहर में आई हम बात करत रही मिथिला शहर के मधुबनी के। अब बात अपन धरोहर में बस इतने। कार्यक्रम में आनंद ले थती इंदु बाला शर्मा के गायल ई झूमर गीत।

अब कार्यक्रम में समय हो रहा है बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने के। अब शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है बकार, जकर मायने होइया आवाज। जेना कोनो कोनो लोग कहत हतीन, हमरा ऊ आदमी के विकराल रूप देख के डर के मारे बकार नहीं निकलल, मतलब डर के मारे आवाज नहीं निकलल, तब बकार के मायने भेल आवाज। गछली, एकर मायने भेल छोट पेड़ पौधा। जेना लोग कहत हतीन, हमरा सबके पर्यावरण सुरक्षा के लेल गछली मतलब छोट छोट पेड़ पौधा लगावे के चाही, जैसे पर्यावरण के सुरक्षा हो सके, तब गछली के मायने भेल छोट पेड़ पौधा। शब्द सरिता में एगो और शब्द आयल है आकबत। जेना लोग कहत हतीन, बाल बच्चा जब पढ़ लिख के आकबत हो जाइए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लइए, तब माय बाप के बहुत खुशी होइए, तब आकबत के मायने भेल पद प्रतिष्ठा। शब्द सरिता में एगो और शब्द है फरियाल, मतलब निपटाना। जेना लोग कहत हतीन, ओकर घर के उलझन या झगड़ा समाज के द्वारा फरियाल गेल मतलब निपटायल गेल, तब फरियाल के मायने भेल निपटाना। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द आयल है भगवंती, एकर मायने भेल भाग्यशाली स्त्री। जेना लोग कहत हतीन, ओ बहुत भगवंती स्त्री है मतलब भाग्यशाली स्त्री है, ओकरा घर में अयला से घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सबके तरक्की हो रहा है, तब भगवंती के मायने भेल भाग्यशाली स्त्री। ई रहे बज्जिका शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकरे मायने। अब कार्यक्रम अपन समाप्ति पर है। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने सबके कैसन लगैया, अपने अपन विचार अपन सुझाव हमरा एगो चिट्ठी या ईमेल के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। चिट्ठी लिखे के लेल हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। हमर ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हम विजेता सिन्हा एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करित हती।

अभी आप सुन रहे थे बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन और वाचन था विजेता सिन्हा का और प्रस्तुतकर्ता थे मिदेश कुमार मिश्रा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं शोभा गोटू।

इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। आज की गायक कलाकार थी शोभा गोटो। प्रसारण इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। लीजिए अगला कार्यक्रम सुनिए। प्रायोजित कार्यक्रम है NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे

0: विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे।
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
1: हुँ?
0: और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
1: हुँ?
0: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
0: जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
0: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा, यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं।

0: आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संबद्या की बुलाहट क्यों हुई?
1: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
2: आ गए भैया।
1: हाँ।
2: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
1: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: आए, आए।
4: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना

जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ,
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
0: पाए लागू माँ जी।
4: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
0: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
4: मेरी बेटी का कोई संवाद?
0: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
4: हाँ?
0: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
4: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
0: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
4: सो तो है।
0: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
4: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
4: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
4: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली

0: की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैन लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा स...

0: day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब पेश है फिल्म संगीत। इस समय आप आनंद उठाएंगे नए फिल्मी गीतों का। हमारे साथ बने रहिए 12:30 तक इस सफर में, जहां आप सुनेंगे नए नए गाने। तो शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म गदर 2 में विशाल मिश्रा और नीति मोहन को। गीत के बोल सईद कादरी के हैं और संगीत मिथुन का।

बसरूर के संगीत निर्देशन में जावेद अली की ये आवाज़ थी। फिल्म का नाम था भोला। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। इस समय आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का। लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म फाइटर से है, विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ों में।

ड्रीम गर्ल टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रॉस और सुनिधि चौहान को। गीत के बोल रश्मि बैराग के थे और संगीत मीत ब्रॉस का था। आकाशवाणी दरभंगा से आनंद उठा रहे हैं नए फिल्मी गीतों का। लीजिए सुनिए अगला गीत आलम न पूछो बैड बॉय, अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी की आवाजों में।

बैड बॉय। इस फिल्म में अभी आप सुने थे अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी को। लीजिए सुनिए, आखिरी पेशकश है इस कार्यक्रम की। एस्टेबिन की आवाज है, गीत के बोल मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत रोचक कोहली का। फिल्म का नाम है डेढ़ बीघा जमीन। तो लीजिए सुनिए।

डेढ़ बीघा जमीन, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे स्टेविन को। इसी के साथ फिल्म संगीत में अभी यहीं तक। पुनः फिल्मी गीतों का आनंद आप लेना चाहेंगे तो दिन में 1:15 से आप सुनिएगा। फिलहाल अभी आकाशवाणी दरभंगा से समय हो रहा है, आप सुनेंगे रविवार हेलो जिंदगी, जो कार्यक्रम प्रसारित होती है। तो आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं 19 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: इसमें कोई दो मत नहीं कि जिंदगी में मुश्किलों का दौर चलता ही रहता है और हम इन मुश्किलों से उबरने के प्रयास भी करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी भी होती हैं जो अमूमन दबे पांव आती हैं और खबर होने तक इस कदर अपने पांव फैला लेती है कि ता उम्र हमारी जिंदगी को बेहाल और बेदम कर जाती हैं। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी ही बीमारी है जिसे साइलेंट किलर तक कहा जाता है, खामोश मौत देने वाली एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिस पर ध्यान न दिया जाए तो ये हार्ट अटैक और लकवा समेत अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर है क्या, क्या हैं इसके लक्षण, क्या हैं इसके खतरे, क्या हैं इसके उपचार की विधियां और क्या हैं वो सावधानियां जिनको अपनाने से हमारी जिंदगी सुरक्षित रह सकती है, कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओ नमस्कार, संजय की तरफ से उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियां यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस अत्यंत जरूरी विषय पर आप श्रोताओं को जागरूक करने उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं जाने माने हृदय रोग एवं जीवन शैली रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में स्वागत आपका, नमस्कार, कैसे हैं सर?
2: काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ठीक हूँ मैं। सबसे पहले मैं सभी अपने सुनने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। तो अभी आपने अपना जिक्र किया हाई अपने बीपी के बारे में, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारे देश में लगभग 19 से 20 करोड़ लोग हाई बीपी से के शिकार हैं। उसकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मुश्किल से 10% लोगों को, उसमें से 20 करोड़ लोगों में से उनको मालूम है कि हाँ हमें बीपी है। ज़्यादातर लोग इस समस्या के प्रति अनजान है, इसलिए अनजान है कि कभी उन्होंने इसकी जांच नहीं करवाई, नाप नहीं कराई। अक्सर लोगों में भ्रांति है कि जब कोई तकलीफ होगी, माथे में चक्कर आएगा, माथे में भारीपन होगा, तब हम उसकी जांच कराएंगे। तो उसमें और दूसरी समस्या है कि जिस 10% लोगों को मालूम है कि उनको बीपी की समस्या है, दवाई भी खाते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोगों का बीपी कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में, 90% लोगों का बीपी नियंत्रण में नहीं रहता है। दूसरी चीज़ जो अपने जानने योग्य है, लोग जानना चाहते

0: कि मैंने किसको बीपी हाई कहते हैं। पहले लोग 140/90 कहते थे, लेकिन मैं शॉर्ट में अमेरिकन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अनुसार जिस आंकड़े को सारी दुनिया मानती है वो है कि अगर आपका बीपी 130 ऊपर में और नीचे में 80 से ज़्यादा है तो आपको हाई बीपी है, आपको उसका डॉक्टर से मिलकर उपचार करना चाहिए। अगर आपका बीपी 120 और 129 के बीच में ऊपर में और नीचे में 80 है तो आप प्री हाइपर हाइपरटेंसिव है, जिसको आजकल एलिवेटेड हाई बीपी कहते हैं। और अगर 120/80 है तो इसका मतलब आप सामान्य बीपी हैं, आपको कोई अंग्रेजी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है।
1: दवाओं के लिए क्या ज़रूरत होती है, मतलब कब समझें कि हमें दवाओं की ज़रूरत है? लक्षणों को लेकर के भी पूरी चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में।
0: लक्षण हो या नहीं हो, ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है
1: जी,
0: कि कब जांच कराएं हम बीपी, वो लोगों को जानना मैं समझता हूँ आज का काफ़ी बड़ा उद्देश्य है। कि जिनकी उम्र 18 साल है और जिनके परिवार में जिनके माता पिता भाई बहन को किन्हीं को बीपी की शिकायत है तो उनको 18 साल की उम्र से केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। साल में एक बार अपना बीपी की जांच कराएं, कोई भी दिन को निश्चित कर लें, अपना बर्थडे या मैरिज डे पर बीपी देखवाएं कि 130/80 से नीचे उनका बीपी है कि नहीं। अगर उससे अधिक होता है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका इंतज़ाम बात करें। इंतज़ाम का मतलब ये नहीं होता है कि डे वन से आप कोई अंग्रेजी दवा स्टार्ट कर दें। अगर 134/84 किसी का बीपी है तो हम लोग कहते हैं कि अभी आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ स्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन करें। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। भोजन में अगर आप बहुत घी तेल सॉल्ट खाते हैं उसको कंट्रोल करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तंबाकू लेते हैं तो उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करें, और सबसे बड़ी चीज़ सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के मोबाइल भर दिन देखते रहने से सक्रिय जीवन शैली को निष्क्रिय इस मोबाइल ने बना दिया। हर एक घंटे के बाद 5 मिनट 10 मिनट सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए।
1: तो मोटा मोटी डॉक्टर साहब आपने बीपी के बारे में जो गूढ़ बातें थी वो आपने रख दी कार्यक्रम में, और हमारे श्रोता भी अब जुड़ने लगे हैं। हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और जिज्ञासा व्यक्त करें।
2: मैं मोहन पासवान बोल रहा हूँ, गांव बसतपुर से सर।
1: क्या जिज्ञासा है, क्या कोई समस्या है या किसी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं मोहन पासवान जी?
2: उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों स्थिति जानलेवा और अंग को अपाहिज करने वाला है सर। दोनों स्थिति का लक्षण और सावधानियां जानना चाहता हूँ सर।
1: अच्छा,
2: बता दें। दूसरा है सर कि कोई भी व्यक्ति खुद और अपने परिवार को उच्च या निम्न रक्तचाप से बचना और बचाना चाहते हैं तो और भी कई प्रश्न है सर, ज्यादा नहीं रखना चाहते।
0: ये मैं आपको बताऊं कि सामान्य व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति ये जानने की कोशिश करे कि मेरा बीपी कितना है, जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर पहले से उनको बीपी नहीं है तो 18 साल की उम्र में अगर उनके फैमिली में किसी को बीपी है तो जांच अवश्य कराएं साल में एक बार। और अगर उनकी उम्र 30 ईयर्स है, 30 साल है
1: जी, हाँ,
0: तो लक्षण नहीं भी कोई हो तो रूटीन चेकअप में कम से कम साल में एक बार या दो बार अपना बीपी दिखलवाएं कि 130/80 से ऊपर उनका बीपी जा रहा है। 120/80 है तो ठीक है, 130/80 या उससे ऊपर है तो उनको हाई बीपी है। उसके बाद आपको डॉक्टर बतलाएंगे कि आपको दवा खाने की दरकार है या लाइफ स्टाइल में कोई आपकी कमी है तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे वेट को घटाना, खाने पीने में नियंत्रण करना, सिगरेट नहीं पीना और सक्रिय जिंदगी बिताना। कभी कभी जिनको हाई अपना बीपी होता है उनको भी निम्न रक्तचाप हो जाता है, तो ये उस समय लगेगा पता जबकि रेगुलर उनका बीपी चेकअप हो। अगर कोई बीपी का पेशेंट या कोई ऐसा पेशेंट जिसको चक्कर आता हो या बहुत कमजोरी होता हो या वो होश में नहीं हो, जैसे हार्ट अटैक के बाद किसी के हाथ पांव ठंडे हो गए,

0: अगर उसकी बीपी की जांच आपने की जाए तो कभी कभी बीपी रिकॉर्ड ही नहीं होता, जिसको शॉक बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: बीपी अपना 0/0 आता है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, जान खतरे में है। और बीपी 90/70 से कम हो जाए उसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, कम बीपी। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी है कि हर 90/70 बीपी खतरनाक नहीं होता है। अगर उस समय पेशेंट को कोई तकलीफ है, चक्कर की, कमजोरी की, या होश में नहीं है, तब तो वो खतरे वाली बात है। जैसे किसी को डायरिया वॉमिटिंग होने के बाद भी बीपी काफ़ी हो जाता है कम, धूप में जाने के बाद अगर सॉल्ट का पानी का बहुत नुकसान हो जाते बीपी कम हो जाता है, हार्ट अटैक होने के बाद बीपी अपना कम होता है। लेकिन उसका इलाज करना है कि नहीं करना है, ये डॉक्टरों की बुद्धि विवेक पर है। अगर वो समझते हैं कि खतरनाक है तो उसका इलाज करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये शिकायत होती है कि हमारी बीपी कम है, लेकिन उनमें कुछ भी तकलीफ होना थे, वो लोग 100/70 भी आया तो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, बीपी कम है। तो कभी कभी हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में कुछ मरीज को जिनका 80/60 बीपी है, लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंथ में एक बार बीपी का अपना चेक कराएंगे, और कभी कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आएंगे, उसका उपाय करेंगे।
1: एक श्रोता बने हुए हैं ऑनलाइन पर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी प्रणाम, अपना नाम बताएं।
2: मैं दरभंगा से बोल रही हूँ सुनीता देवी।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सवाल पूछा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यही कारण है कि बीपी का इलाज करना चाहिए। अगर आपको आज बीपी है, कोई भी तकलीफ भी नहीं है, तो भी डॉक्टरों से मिलके उसका उपचार करें, लाइफ स्टाइल या दवा लेकर के, क्यों कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक, लकवा, किडनी की बीमारी, भूलने की बीमारी होने की संभावना है। अगर आप दवा लेके परहेज से जीवन शैली में परिवर्तन करके बीपी को कंट्रोल में रखते हैं 120/80, तो समझिए कि लगभग 90-95% आपको हार्ट अटैक, लकवा से रक्षा हो जाएगी।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं अशोक बोल रहा हूँ सर, स्टेशन रोड दरभंगा से।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार सर, से ये डॉक्टर साहब से एक सवाल था। ऐसा है कि जो आइडियल पैरामीटर है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं पिछले 30 साल से, मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई है, वेट भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
3: और मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल ही 120-80 रहा करता था।
1: जी।
3: विगत 1-2 साल से वो हमेशा एक पैरामीटर 119, 118, 80 से 78, 77 हो रहा है। सर से ये सवाल पूछना था, और अब मैं अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, मैं 60 साल पहुंच चुका हूं। दूसरा सवाल, पहले तो हम लोग ये मरकरी वाले से जांच करवा लेते थे, अभी घर में ही हम ये एक रखे हैं, वो कितना सही है और हम लोग को उस पर कितना विश्वास करना है, ये चीज मैं सर से पूछना चाहूँगा।
1: ठीक है अशोक जी, आपके दोनों सवाल आ गए हैं। अच्छा एक बात और बता दीजिए अशोक जी, क्या आप बीपी की दवा ले रहे हैं तब ये फिगर है?
3: नहीं, नहीं, कभी नहीं।
0: आपको बीपी,
3: आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कभी प्रॉब्लम नहीं।
0: खैर ये ठीक है, आपको बीपी की शिकायत नहीं है, अगर इतना फिगर जा रहा था भाग्यशाली है, आपको अभी तक बीपी नहीं हुआ है।
1: और दूसरा सवाल इनका ये है सर कि डिजिटल से वो आप अभी अब चेक कर रहे हैं तो कभी 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो रहा है?
0: वो होगा डिजिटल में थोड़ा 1-2 पॉइंट आता है कम, तो मान के चलिए कि ठीक है। आजकल 90% जगह वही इस्तेमाल होता है डिजिटल, स्पिग्मो मैनोमीटर की संख्या कम है, 2-4 mm आप जिस रेंज में हैं, अगर आपका बीपी 120-124 भी जाता है तो उसमें कोई हरत नहीं, आप मान के चलें कि आपका बीपी नॉर्मल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है टेक्निक कि आपका बीपी सही ढंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आप आपके फैमिली में किसी एक जन को या 2 जन को है, तो बेहतर होगा कि एक अच्छे कंपनी का बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद के अपने घर में रख लें, किसी भी डॉक्टर से 5 मिनट लगता है सीखने में, सीख ले कैसे बीपी नापते हैं। नंबर 2, अगर आपको दवा लिखी जाती है तो दवा का डोज कम करना, दवा को बंद करना, ये इसका अधिकार आपके डॉक्टर को है, ये अधिकार उनको दे दें, अपने मन से नहीं करें। इसमें गलतियां क्या होती है कि एक बार किसी आदमी का बीपी नियंत्रण में हो गया 120/80, तो उसमें से काफ़ी लोग दवा

0: खाना छोड़ देते हैं, ये उम्मीद होती है कि हमारा बीपी ठीक हो गया। मैं यहाँ पर बता दूं कि आज तक बीपी न किसी का ठीक हुआ, आगे की बात मुझको नहीं मालूम है।
1: एक श्रोता जुड़ गए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: मैं बोल रहा हूँ।
1: हाँ रघुनंदन सिंह जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: जिज्ञासा यही है कि पहले बहुत लो रहता था, 60/90, लेकिन इधर 2-4 महीना से इतना भाग जाता है जो

0: कल्याण या रहन सहन में क्या करे जो ये अपने आप थोड़ा जगह पकड़ ले जो चाहिए।
1: आपकी उम्र डॉक्टर साहब को बता दीजिए।
0: हमारा उम्र है 78 बरस।
2: देखिए ये आपका बीपी की मात्रा बहुत अधिक है, 200/100 है, ये बहुत ही खतरनाक इसको कहते हैं बीपी। इसमें पहला काम होना चाहिए कि अपने अपने डॉक्टर से आजकल में अवश्य मिले और इसके लिए कुछ जांच करने के बाद आपको मेडिसिन लिखेंगे। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद तब आपको इसमें क्या क्या खाने पीने में परहेज होना चाहिए ये बताएंगे। ऐसे मैंने पहले भी मैं आप कह चुका हूँ, अभी बता दूँ, इसमें जो परहेज है कि आपकी जो उम्र है जितना बीपी है आप कोई भारी काम नहीं करेंगे, हल्का फुल्का काम अपना करेंगे जब तक बीपी आपका नियंत्रण में नहीं होता है। और खाने पीने में नमकीन चीज़ या ज़्यादा नमक वाली चीज़ जैसे पापड़ अचार चाट चटनी या मार्केट में जो अपने भुजिया पैकेट में मिलती है प्रोसेस्ड फूड पैकेट वाली, उस सब चीज़ को नहीं खाना है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी भोजन जिसमें नमक तेल घी कम पड़ा हो वो आपके लिए हेल्दी फूड है। अपने भोजन में थोड़ा फल को जरूर शामिल करें, जो देहाती फल है जो गांव में होता है, ताज़े फल हरी साग सब्जियां। और अगर किसी किस्म का मानसिक अपना तनाव है उसको कम करें और सक्रिय जीवन शैली घर के अंदर या घर के आसपास में थोड़ा बहुत टहलने की अपना कोशिश करें। तंबाकू की आदत हो, खैनी सिगरेट बीड़ी गुटखा को तो उसको छोड़ दें। रेगुलर दवाई खाएं और रेगुलर अपना चेकअप करा के बीपी को 130/120/80 के आसपास में रखें। जब तक आप जीवित हैं तब तक अपना दवाई खाते रहें, परहेज करते रहें, तो आपको शायद लकवा हार्ट अटैक से आपकी रक्षा हो जाएगी।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, हम पंचोम से सर बोल रहे हैं।
1: जी नाम बता दें अपना।
0: जी अनिल चौधरी नाम है। तो हमको सर 25-30 साल से डायबिटीज हुई है, हमारा उम्र 66 वर्ष सर उम्र है, हमारा बीपी सर रहता है 130/60/65/60, शुगर हम नियंत्रण में रखते हैं सर।
1: अच्छा ठीक है सर, आपका अगर शुगर नियंत्रण में आप जो बता रहे हैं बीपी, नहीं ठीक है बीपी भी ठीक है, तो आप इसी दोनों को नियंत्रण रखें, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, सब कुछ ठीक रहेगा।
0: दवा नहीं बीपी का सर खाते हैं।
2: जो बीपी आप बताए हैं उसमें दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो डायबिटीज की परहेज करते हैं उसी को परहेज करते रहिए। बीपी की जांच हर 15 दिन पर अपने डॉक्टर से कराते रहे, जब बीपी आपका 130/80 से ऊपर जाएगा तब दवा खाने की जरूरत है, अभी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है।
1: लेकिन ये हमें लगता है कि इन्हें लगता है कि 80 होना चाहिए, नीचे वाला 60-65 रह रहा है।
2: ना ना तो वो ओल्ड एज में जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है 40 साल के बाद जी बीपी का ऊपर वाला फिगर ऊपर जाता है और नीचे में जो डायस्टोलिक 80 होता है वो घटना शुरू हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा उम्र होने पर डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाला है 60-50, 60-70 ऐसा हो जाता है, तो उसके कम होने से आपको कोई खतरे की बात नहीं है।
1: इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हम ग्राम धमसन से राजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ सर।
1: जी जी नमस्कार राजेंद्र ठाकुर जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: प्रणाम प्रणाम।
3: हम जो है सो बीपी का दवा रोज खाते हैं, थोड़ा कब्ज रहता है सर, कब्ज के चलते परेशान रहते हैं हमेशा, गैस बन जाता है, बीपी कभी 130/85 कभी 130/90।
2: आपको दूसरी समस्या है अपना कब्जियत की, उसके लिए पानी 3-4 लीटर डेली पिए, हरी साग सब्जियों की मात्रा को कुछ ज़्यादा कर दें, सलाद कुछ ज़्यादा खाएं, फल को कुछ ज़्यादा खाना है और सबगोल की भूसी 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम खाइए और सवेरे शाम टहलिए, आपका अपना कब्जियत ठीक हो जाएगा।
1: एक श्रोता और जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: जी सर, हमारे नाम पासवान झंडापुर लंगड़ा चौक से सर बोल रहे हैं। जिज्ञासा सर यही, हमको तो बीपी है, हम तो सर 2 दिन से बीपी की शिकायती है।
1: अच्छा,
4: लगभग 5 साल से है, तो हम एमलोपैथ सर खा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से यही हम जानना चाह रहे हैं, उससे भी बराबर हमको गैस सर बन जाता है।
1: अच्छा, ये जो आप दवा खा रहे हैं हरे राम पासवान जी, क्या
4: जी

0: उससे आपकी जो बीपी है वो नियंत्रित है, वो नॉर्मल है?
1: जी सर, हाँ हाँ हाँ, एकदम नियंत्रित रहता है सर।
2: गैस की समस्या को जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो अल्ट्रासाउंड की जांच कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, और गैस किस कारण से बनता है जब तक उसका वो कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका दवा बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आप एंजाइम की कुछ टिकिया यूनियन एंजाइम टाइप की दवा खा कर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक जाँच नहीं होगा एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड तब तक गैस की क्या सही वजह है ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, जब हाइपर टेंशन की बात चल रही है डॉक्टर साहब, और वहाँ अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हाइपर एसिडिटी की भी बात हो गई, तो क्या हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हाइपर टेंशन की समस्या हो सकती है?
2: नहीं, हाइपर एसिडिटी, लेकिन हाइपर एसिडिटी के कारण नहीं, उसमें ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी और हाइपर टेंशन के रूट कॉज में कुछ लोगों को एक ही होता है कारण, दैट इज स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर आप मानसिक तनाव, खास करके एक्यूट स्ट्रेस, अचानक आपको कोई स्ट्रेस का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उसमें हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है और बीपी भी हाई हो सकती है कुछ क्षणों के लिए। अच्छा। और जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो आप स्वतः हो जाएगा कम, इसीलिए वो स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस के बारे में मैं एक दो शब्द बता दूं कि स्ट्रेस से जो लोग इच्छुक हैं कि स्ट्रेस कम हो, वो अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करें, डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर खाना, मार्केट की चीज़ नहीं खाना, रेस्टोरेंट की चीज़ नहीं खाना, सॉल्ट रिच खाना नहीं खाएं, और इसके अलावा वो अपने सांसों पर नियंत्रण रखें। एक योग में सिखलाया जाता है प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, अगर इसकी आदत डालते हैं खास करके स्ट्रेस के टाइम में, तो सांस को धीरे धीरे करके लेंगे तो सांसों को धीरे करने से स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से, और आपके जीवन में कुछ भक्ति की कमी है तो भक्ति से जुड़े तो उससे भी स्ट्रेस की
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार,
1: हम ज्यादा सर साहब बोल रहे हैं, सिमरिया भिंडी। बीपी तो बीपी हमारा 130/70-80 रहता है, और कुछ चलते हैं तो लड़खड़ाता है। जैसे
0: उम्र कितनी है आपकी?
1: 76 वर्ष है।
0: अच्छा, ये समस्या कब से है?
1: इस समस्या लड़खड़ाना तो हिसाब से
2: इनका बीपी ठीक है, बीपी से जो चलने में दिक्कत हो रही है उसको कोई संबंध नहीं। अगर चलने में इनका लड़खड़ा जाते हैं तो हम समझते हैं कि एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, उसकी अलग जांच होती है कि मांसपेशी की कमजोरी है, जॉइंट में है आप गड़बड़ी, या नर्व की कमजोरी है। जब तक इसको नहीं आदमी जानेगा, और वो जानने के बाद उसकी कुछ अपना दवाई होती है, कुछ एक्सरसाइज होता है, तब जाके वो जाते ठीक हो। जब तक वो चीज़ का जाँच नहीं होता है तब तक मैं इनको एक राय दूंगा कि चलते समय, खास करके घर से बाहर चलते समय, एक छड़ी का इस्तेमाल करें तो उससे इनको अपना बैलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा।
0: डॉक्टर साहब, क्या गर्भावस्था के दौरान या कुछ दवाओं के सेवन के दौरान बीपी अनियमित रूप से हो सकती है, बढ़ी हुई या घटी हुई?
2: हाँ,
0: ऐसा कुछ है?
2: तो जो महिलाएं गर्भावस्था की ओर से गुजरती हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उनका शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है।
0: अच्छा,
2: उसका विपरीत असर उस पर होता है, बीपी का बढ़ना, पैर का फूल जाना, चेहरे का फूल जाना, लेकिन उसको तब ऐसी स्थिति में दवाओं से कंट्रोल उनको अपना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो पहले मानसिक रोग में इस्तेमाल होती थी, जिसको बोलते थे माओ इनहिबिटर्स, उस अपना ग्रुप की दवा खाने से बीपी बहुत भागता, तो वो आजकल दवाई इस्तेमाल नहीं होती है।
0: एक और श्रोता जुड़े हैं। जी नमस्कार।
3: नमस्कार सर, मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ। डायबिटीज वाला आदमी अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी रहता, शरीर सुस्त रहता है, इतना भी खाता पीता, फ्रूट भी खाता है, इतना शरीर में पाते।
2: आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति अपने डायबिटीज के पेशेंट हैं, उपचार उनका हो रहा है, उसके बाद भी अगर शरीर सूखता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो दवा ले रहे हैं वो असर उन पर नहीं कर रहा है, और यही वक्त है जबकि एक ही दवा से उनकी वो सूखी हुई शरीर वापस आ सकती है, उस दवाई का नाम है इंसुलिन।
4: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: जी मैं रामनगर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 75 साल है,

0: जी
1: ये बीपी भी है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन अभी गैस और वो मुंह का सूखना बहुत ज्यादा होता है जब तक पानी नहीं पीते।
2: आप ये बताएं, रात में सोते हैं तो नाक आपकी आवाज करती है,
0: खराटा
2: खराटा लेने की आदत है?
1: नहीं, खराटे की
2: अगर खराटा लेने की आदत नहीं है तो मुंह सूखने का कारण गैस का कुछ कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं, जिन डॉक्टर से आप दिखला रहे हैं उनसे कहिए कि ये दवा खाने के बाद से हमको ये
1: तो खा रहे हैं सर,
2: दवा जो लिखे हैं कि ये दवा हाँ। खा रहे हैं, मेरे ये समस्या उस समस्या के उपाय करेंगे। नंबर टू, बीपी की दवाई खाना ही आपका काम नहीं है, एक और काम है आपकी जिम्मेदारी होती है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है फ्रिक्वेंट जाँच। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो ऐसे तो नियम कहता है कि डेली अपना जांच कराएं, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट अपना है तो डेली जांच करें, नहीं इंस्ट्रूमेंट है तो कम से कम वीक में एक बार जिस दिन छुट्टी हो आपको बीपी की जांच अपना कराएं। और बीपी की जांच अपना कराते समय ये बात देखें कि आपके आपकी पोस्चर क्या है, कुर्सी पर बैठ के आराम से 5 मिनट जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, ऐसा नहीं कहीं धूप से चल के आए और बीपी नाप करा लिया, जब आप बिल्कुल शारीरिक रूप से मेंटली रूप से रिलैक्स हो कुर्सी पर बैठ करके अपना जांच कराएं। और ओल्ड एज में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको अगर कोई तरह का चक्कर उकर या कमजोरी होती हो तो 2 पोस्चर में बीपी को जांच कराएं, एक बैठ करके और 3 मिनट खड़ा होने के बाद। अगर 3 मिनट खड़ा होने के बाद बीपी ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है, इसका मतलब है ऑर्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन है, उनको बीपी की दवाओं का डोज हम लोगों को अपना घटाना पड़ेगा।
0: डॉक्टर साहब, नमक एक सवाल है।
2: हाँ,
0: नमक के इस्तेमाल को लेकर कई बार सलाह दी जाती है कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए?
2: नमक के बारे में देखिए, रिकमेंडेशन है कि 2500 मिलीग्राम पर डे आप खा सकते हैं। 2500 मिलीग्राम का मतलब होता है चाय वाली चम्मच से आधा चम्मच पर डे सुबह से रात तक। लेकिन दिक्कत के क्या है कि नमक को हम लोग नाप तोल के अपने खाने में नहीं डालते हैं
0: स्वाद के मुताबिक,
2: और भारतीय व्यंजन भारतीय लोग हम लोग ज़्यादा नमकीन खाने के आदत है। आपने देखा होगा गांव में घरों में कि जब लोग खाना खाते हैं तो अपने से बोलते हैं कि थोड़ा अचार खाने को दे दो यार।
0: अच्छा।
2: भोज भात में जाएं तो चाट पर लोग सबसे ज़्यादा छोड़, हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, इस जो हमारा नेचर है उसको घटाना होगा। कुछ भारतीय लोगों में एक अच्छी बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक एक परंपरा है एतवार करने के लिए, एतवार के दिन सॉल्ट नहीं खाएंगे।
0: अच्छा।
2: मंगल के रोज नहीं खाएंगे, किसी खास दिन फेस्टिवल के दिन नमक नहीं खाएंगे, ये हमारे अपने
0: परंपरा से आई हुई थी,
2: अब पूर्वज के दिमाग में था। हाँ। तो उनकी नमक की मात्रा को घटाने के लिए कि अगर आप रेस्टोरेंट का खाना,
0: हाँ,
2: भोज भात का खाना, मार्केट का खाना, पैकेट का खाना, भुजिया उजिया,
0: हाँ,
2: अगर खाना अपना आप बंद कर दें इतना ही काफी है आपके नमक को कम कर।
0: सेंधा नमक के बारे में,
2: सेंधा नमक इज अ वंडरफुल चेंज, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सेंधा नमक और कॉमन सॉल्ट में फर्क है, ये जो उजला वाला सॉल्ट है,
0: हाँ,
2: इसको इसमें सोडियम की मात्रा जाती है, वो हमारे बीपी के लिए खतरनाक है। लेकिन सेंधा नमक में सोडियम की जगह होता है पोटासियम, पोटासियम की मात्रा अधिक होने से बीपी कंट्रोल करता, हमारे लिए फायदेमंद भी है और बीपी को घटाने में भी संधा नमक मदद करता है।
0: हेलो जिंदगी में आज का विषय था उच्च रक्तचाप, लक्षण और सावधानियां। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: जिंदगी कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
4: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविवार 19 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

0: स्टूडियो की घड़ी में एक बजने ही वाला है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए।

0: हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 1:10 पर अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 1:15 से आप सुनिएगा दिन के 2 बजे तक फिल्म संगीत।

2 बजकर दिन के 2 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 2 बजकर 5 मिनट पर इलाकाई खबरें।

में 2:10 पर आप सुनिएगा रोजगार सूचना और 2:15 पर दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। दिन के 2:30 आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का और अपराह्न 3:00 हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ बज्जिका लोकगीत। तो ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत 5:00 युववाणी कार्यक्रम के साथ, 6:25 पर मैथिली संवाद।

शाम 6:30 बजे कार्यक्रम गाम घर और 7 बजे खेती गृहस्थी। रात 8:15 पर मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार। समाचार संध्या रात 8:45 पर और न्यूज 8:09 रात 9 बजे। उर्दू में खबरें रात 9:15 पर और विविधा सर्वभाषा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। समय याद रखें विविधा, ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे रात 9:30 बजे।

और रात 10 बजे सुनिएगा एक ही फनकार के गाए कुछ गीत। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। आकाशवाणी दरभंगा से लीजिए अब अगला कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

दूर नहीं। और इसमें आप सुन रहे थे गीता दत्त, शैलेंद्र और आशा भोसले को। देशभक्ति गीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15:08 हो चुके हैं। पेश है फिल्म संगीत और हमारे साथ बने रहिए दिन के 2 बजे तक। तो लीजिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों से। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत बद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

समीर के लिखे गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम था साजन, आवाज अलका याज्ञिक की थी। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत एसपी बालासुब्रह्मण्यम की आवाज में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जोकर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा और आनंद उठा रहे हैं फिल्म संगीत का। जो गीत अभी हम आप तक पहुंचा रहे थे, फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याज्ञिक की थी। लीजिए सुनिए SH बिहारी के लिखे ये गीत हैं। संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

अभी जो गीत आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था शब्बीर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। SH बिहारी के लिखे ये गीत थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए सुनिए फिल्म क्रिमिनल में कुमार सानू, अलका याज्ञनिक और

आखिरी पेशकश है फिल्म भूल भुलैया से। गीत रचना समीर के हैं, संगीत रचना प्रीतम का। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार की। फिल्म का नाम है भूल भुलैया।

0: श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से, उसके बाद आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। पिछले एक वर्ष में विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र और नागरिकों की सेवा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राज्य में नए डिग्री महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बिहार लोक भवन से जारी आदेश में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश तय होने तक प्रखंडों में स्थापित होने वाले डिग्री कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों के चयन अथवा नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि सावन कुमार पटना स्थित आरके राय अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गयाजी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौंड बालू टोल स्थित चालान सेंटर पर अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने 2 कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के 3रे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेखपुरा उपभोक्ता संरक्षण फोरम के जज रमन कुमार ने इंडियन बैंक शेखपुरा के शाखा प्रबंधक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। मेडिकल क्लेम नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर फोरम ने यह आदेश सुनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित

आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना भर्ती 2026 आवेदन आरंभ करने की तिथि 29 मई से है आरंभ और अंतिम तिथि है 18 जून 2026। कुल पदों की संख्या है 60। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट की आयु सीमा 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 पदों की संख्या 12,256। आवेदन की तिथि आरंभ है 21 मई 2026 से ही, अंतिम तिथि 22 जून 2026। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा के बारे में। कुल पदों की संख्या 11,127। आवेदन 15 मई 2026 से ही शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम 30 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक और सूचना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू ऑफिसर आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट सीए के लिए कुल 543 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। पदों की संख्या है 543। आवेदन 1 जून 2026 से आरंभ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। इसके लिए आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए और आरओ एआरओ के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुआ।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा।

0: का ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के

0: करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और 296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र में। और अभी से आनंद उठाइए फिल्म संगीत का अपराहन 3 बजे तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज महान गीतकार असद भोपाली जी का पुण्यतिथि है, तो उन्हें पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हीं के द्वारा लिखे गए गीत हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म पारसमणि के इस गीत के साथ।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओं, आज हम आप तक पहुंचा रहे थे गीतकार असद भोपाली के लिखे गीत को फिल्म संगीत में। आज की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन एक बार फिर से। जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे फिल्में थी पारस मनी, एक सपेरा एक लुटेरा, एक नारी दो रूप, छैला बाबू, ठाकुर जनरल सिंह और दादा। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर की।

प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में बज्जिका लोकगीतों का।

0: लीजिए सुनिए आकाशवाणी दरभंगा से, अब आज मंगलवार है, बज्जिका लोक गीतों का कार्यक्रम। पहले हम आपको सुनवाते हैं जगन्नाथ राय का गाया हुआ ये बज्जिका गीत।
1: छेली अब ललिता विशाखा यहो राम ललिता।

ब्रजेश कुमार सुमन का गाया ये बाजी का लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए अगला गीत कृष्ण कुमार श्याम के स्वर में।

सुनैना कुमारी के गाए इस बजिका झूमर के साथ ही बजिका लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में तीन बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा।

0: हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए। अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
1: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
0: बहुत जरूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
0: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों

0: को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का हमारे तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
0: बहुत
1: करिए।
0: सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ
1: चल रहा है
0: उधर काम चल रहा है उनका,
1: बिल्कुल।
0: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
1: और साथ ही
0: सबकी जिम्मेदारी
1: अगर
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूट पानी पिए और पानी बाकी
0: हाँ,
1: फेंक दिया,
0: आधा ग्लास
1: क्योंकि
0: पानी पीते
1: बिल्कुल
0: हैं और आधा
1: जो
0: फेंक देते
1: पीने
0: हैं।
1: लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा है
0: क्या
1: ना?
0: बात
1: तो
0: है,
1: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते
1: अंतराल
0: हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती।
1: नहीं करते,
0: जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर होता है। बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: भाई क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई
1: हाँ
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि
1: हाँ
0: जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला,
1: बिल्कुल
0: दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों
1: गुठलियों
0: के
1: के दाम,
0: दाम।
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए
0: जी
1: और खाली उसी ने नहीं ली, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो
1: और हमारे
0: सच
1: श्रोता
0: कहावत
1: क्या
0: है,
1: कहते
0: लेकिन
1: हैं?
0: बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव
1: हाँ
0: रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तेन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो
1: सच
0: गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: में
0: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
0: हाँ,
1: कई तरीकों से
0: एक
1: कहा
0: पंथ
1: जाता
0: दो
1: है।
0: काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी, तो सच में एकदम सही बैठा कि
0: जी,
1: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
1: जी
0: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं आपको तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलतियां छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: जब बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टालमटोल करने के लिए, या असफलता को सही

0: आने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, जब तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं इस विषय पर, एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास

0: पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
0: बिल्कुल अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं।
1: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
0: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
1: जी,
0: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
1: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है, बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बाद में अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं, इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी तो सुन लें गाना,
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा,
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है, मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगू या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं, अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
2: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज्ड, विच लिटरली चेंज्ड माय

0: लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म, तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कहने?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर, तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा, तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी, बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खास तौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूं, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे,

0: अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा.
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए.
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशन बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी.
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली.
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए.
0: बिल्कुल, क्यों नहीं.

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा

0: कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
0: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपरहिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा विधि जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं, तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं, तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है मुझे कोई इतना

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर, तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाए सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बेबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहने,
1: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए, अगर कोई गलत ऐसे लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वॉज अ वेरी

0: quiet person, but he was not a talkative person. Magar very nice, very decent, aur bahut acha tha unke saath.
1: Unke saath koi yaadgar sansmaran aapka koi si film ka?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर के, आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे. देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ. ठीक है. एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे बहिदा मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए. नहीं, एक तो फॉग है. मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है. तो बोले मैं चश्मा लगा था. तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया. तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडसे को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है. मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है. फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था. ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता. मैंने कहा तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है. और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा. अच्छा, आहिस्ता चलाइए. और कोई और रास्ता ही नहीं था. ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे. तो वहां यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को. तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए. तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था.
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं. कोई गाना याद करिए आप.
0: खोया खोया चांद.

0: गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गोल्डी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैसे जी उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा।
1: Exactly.
0: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही है,
0: कमल के लिए भी मिला।
1: बिल्कुल।
0: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कसम का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के,

0: कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी।
0: हाँ।
1: सुनील दत्त साहब के साथ में।
0: हाँ जी।
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया। उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाते रहे ना।
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ। और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उर्फ और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया है और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से, तो मैंने कहा सुनील साहब

भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में

भागते हैं तो तब तक वो ऊंट तो निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं कुछ लोकगीत। साथ ही साथ आपसे कुछ चर्चाएं भी हम करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ये सुनिए लोकगीत विभा सिन्हा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे विवाह झा के स्वर में ये लोकगीत, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और देखिए ना दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही हम आपसे चर्चा के दौरान बोले थे कि आज का हमारा चर्चा का विषय होगा डिजिटल अभिलेखागार और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल अभिलेखागार अर्थात केवल किसी भी चीज़ को हम डिजिटल रूप में यदि संरक्षित करके रखते हैं, डिजिटलाइज करके रखते हैं, तो वास्तव में वह एक चिरस्थायी लंबे समय तक रहता है या रहेगा। वैसे प्राचीन काल में जो पांडुलिपियाँ थी, कुछ ही दिन पूर्व दैनिक पत्र में निकला था कि वह 400, 500 या 700 साल पुराने जो चांदी और सोने के स्याही से बनाया गया वह पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है। तो भला उस जमाने जो आज से 400, 500 साल पहले का हो या 700 साल पहले का था, और आज भी वह उसी रूप में है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारी जो धरोहर है वह संरक्षित है। लेकिन आधुनिक तकनीकी जो डिजिटलाइज है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मूल्यवान वस्तुओं को या मूल्यवान अभिलेखों को, लेख को हो या फिर और भी कई प्रकार के, या जैसे हमारे कोई कागजात होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाले होते हैं, तो उसे हम क्या कर, उसे हम चाहें तो डिजिटलाइज करके अर्थात उसे रख सकते हैं। जैसे कि पहले होता था क्या कि लोग उसकी छाया प्रति अपने पास रखते थे, अब यदि हम डिजिटलाइज के रूप में उसे रखते हैं तो कभी भी कहीं भी और किसी भी क्षण हम उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। डिजिटल अभिलेखागार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समय की मार, प्राकृतिक आपदाओं और भौतिक क्षति से बचाने का आधुनिक और प्रभावी माध्यम है। प्राचीन काल में ही हम क्यों इस बात को कहें, आज भी होता क्या है जब बारिश की मौसम होती है और अत्यधिक बारिश होती है तो प्राकृतिक आपदाएं अर्थात बाढ़ आना या बिजली का गिरना या इस प्रकार की और भी जो घटनाएं घटती हैं, या फिर कहीं आग लग जाती है गर्मियों के मौसम में या ठंड के मौसम में भी, तो फिर लोग अपने प्राण को बचाने के लिए घर द्वार छोड़ करके भाग निकल जाते हैं और आग को बुझाने का प्रयास भी करते हैं। तो भला इस प्रकार की जो विचारधारा लोगों में होती है या इस प्रकार की जो लोगों में सोच होती है, या कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बस घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और घर जल गया या फिर जो कुछ भी क्षतियां हुई उन्हें उस तत्क्षण वह उस तरफ नहीं देख पाते हैं, नहीं देख

लेकिन जो कागजात हों, मूल्यवान जो वस्तुएं होती हैं, या फिर घर में कपड़े इत्यादि इत्यादि जो विभिन्न वस्तुएं हैं, वह भी जल करके राख हो जाती है। क्योंकि उस आग में लोगों को यह हिम्मत नहीं होती कि वह घर के अंदर जा करके उन सारे सामान को लेकर के बाहर निकले और उन्हें सुरक्षित रख सके। तो घबराने की इसमें कहीं से कोई आवश्यकता नहीं होती। और हम इस प्रकार की विचारधारा या इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, वह निश्चित रूप से हमारा एक सराहनीय प्रयास है। और जो विज्ञान के भौतिकवादी युग हैं, जो यह जो भौतिकवादी युग है, उस युग में हम आजकल तो बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। जैसे पहले हम चंद्रमा पे जाना कभी कल्पना लोक की बात हुआ करती थी, लेकिन आज हमने वह साबित कर दिया है। तो इत्यादि अर्थात जो जो विज्ञान का विकास होता चला गया है, हम भी उत्तरोत्तर अपने आप को उस रूप में ढालते जा रहे हैं। अब देखिए ना लोग यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी सफर करते हैं, जाते हैं और समय बिता करके वहाँ से खेल जानकारियाँ प्राप्त लेकर के या जानकारियाँ हासिल करके वह हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अर्थात कहने की आवश्यकता नहीं कि यह जो डिजिटल अभिलेखागार है, उसका संरक्षण करना हम सबों का दायित्व है। केवल हमारा ही दायित्व है, केवल आपका दायित्व है, या कोई किसी घर किसी व्यक्ति विशेष का यह दायित्व है, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई चीज परंपरा में है, अर्थात कल को था तो आज हमने उपयोग किया है। जैसे वृक्ष की बात यदि कर लें, तो वृक्ष यदि हम रोपते हैं तो शायद हम उस वृक्ष का फल नहीं चख पाते हैं, यह भी होता है, या चख भी लेते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वह उस वृक्ष का फल चखता है, या फिर उससे जो उसके लकड़ियों से जो वस्तु बनाए जाते हैं, उसके फूल जो उपयोगी हैं इत्यादि इत्यादि, तो उसका वह उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। तो भला इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं या ऐसी जो हमारी सोच है, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आगे आने वाली जो हमारी परंपराएं हैं उसके लिए, या आगे आने वाले जो हमारे वंशावली हैं, तो वह उससे उपयोगार्थ उनके लिए वह होगा। अस्तु दोस्तों, पुनः कार्यक्रम में हम आपसे आगे फिर बातचीत करेंगे इस विषय पर। तब तक आपको हम सुनवाते हैं विभा झा के स्वर में ये लोकगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब सुनिए उर्मिला देवी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरुण देव झा के स्वर में ये लोकगीत, और इसी गीत के साथ आज के युवानी कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

अभी आप युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं कनेक्ट फिल्म का यह गीत, बेनी दयाल एवं हानिया नफीसा की आवाज़ में। बोल हैं आकांक्षा से ठीक है, और संगीत निर्देशन पृथ्वी चंद्र शेखर का है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के,

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए छतरी वाली फिल्म का यह गीत अखिल सचदेवा एवं शार्ली सेतिया की आवाज में। बोल अखिल सचदेवा के हैं और संगीत निर्देशन भी अखिल सचदेवा के हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म फेथ का यह गीत हमसिखा लेयर की आवाज़ में, संगीत निर्देशन विवेक कथा और बोल थे मनदीप। इसी गीत के साथ दोस्तों आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा

0: प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का वक्त होगा रात्रि शाम 7:52 पर तथा रात्रि 10:30 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम। 9:45 पर आप सुनेंगे इंग्लिश टॉक और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एक फनकार कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे और 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर एजाज आलम। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। श्रोताओं क्षमा करेंगे, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर। रामचरितमानस कान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। 9:10 पर आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे कल बांसुरी वादन दिन के 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर, तथा 12:00 का समय होगा फिल्म संगीत का। 12:30 पर आप सुनेंगे नारी संसार कार्यक्रम। देशभक्ति गीत दिन में 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और पुनः 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 3:00। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। 6:10 पर शाम विद्यापति गीत प्रसारित किए जाएंगे और 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर। खेती गृहस्थी शाम 7:00 प्रसारित किए जाएंगे और 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होगा रात्रि 8:15 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विद्यापति गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत। अब सुनिए काशीनाथ झा किरण के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे काशीनाथ झा किरण के स्वर में ये विद्यापति गीत। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं गौतम मिश्र के स्वर में एक और विद्यापति गीत।

0: अभी आप गौतम मिश्र के स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: वाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक नेतृत्व वाला केंद्रक एनडीए सरकारक 12 वर्ष पूरा भऽ गेल। श्री मोदी अजुके दिन वर्ष 2024 मे लगातार तेसर बेर भारतक प्रधानमंत्री पदक शपथ लेने छलाह। एहि अवसर पर प्रधानमंत्री कहलनि जे सरकार पछिला 12 वर्ष मे देशक युवा महिला आ किसान सभ के सशक्त बनौने अछि। सोशल मीडिया पोस्ट मे श्री मोदी कहलनि जे पछिला 12 वर्ष मे सबका साथ सबका विकासक सिद्धांत सँ प्रेरित निरंतर प्रयासक माध्यम सँ देश एकटा मजबूत आ आत्मनिर्भर भारत बनबाक दिस अग्रसर भेल अछि। गृहमंत्री अमित शाह कहलनि अछि जे प्रधानमंत्री मोदीक नेतृत्व मे पछिला 12 वर्ष मे भारत गरीबक कल्याण आ अभूतपूर्व विकास दुनू के एक संग साकार होइत देखलक अछि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहलनि जे प्रधानमंत्री मोदीक दूरदर्शी नेतृत्व पछिला 12 वर्ष मे सेवा भावनाक माध्यम सँ शासन के नव रूप देलक अछि। प्रदेश में आब नव उद्योगक स्थापना लेल आवश्यक स्वीकृति मात्र 30 दिनक भीतर प्रदान कयल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ई जनतब देलनि। ओ कहलनि जे निवेशक सभ के नीक सुविधा उपलब्ध करेबाक आ प्रक्रिया के सरल बनेबाक लेल सिंगल विंडो प्रणालीक दिस सँ बढ़ैत राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय के एकल नोडल एजेंसीक रूप में अधिकृत कयल गेल अछि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि अछि जे प्रदेश में कोचिंग संस्था सभ के कानूनक सीमा में लावल जायत। नव दिल्ली में पत्रकार सभ सँ गपशप में ओ कहलनि जे एहि लेल सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कऽ रहल अछि जे अगला 3 मासक भीतर लागू भऽ जायत। ओ कहलनि जे राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था लेल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सँ भेंट कयलनि अछि आ श्री प्रधान हुनका हर संभव मदद देबाक भरोसा देलनि अछि। राज्य सरकार 21 जून के होबय वाला नीट यूजी पुनर्परीक्षा के कदाचार मुक्त आ सुरक्षित वातावरण में आयोजित करबाक लेल व्यापक तैयारी कयलक अछि। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आ पुलिस महानिदेशक विनय कुमारक संयुक्त समीक्षा बैसार में परीक्षा संचालन लेल

0: जीरो टॉलरेंसक नीतिक अंतर्गत कतेको निर्देश जारी कयल गेल अछि। प्रश्न पत्रक सुरक्षा सुनिश्चित करबाक लेल भारतीय वायुसेना आ डाक विभागक समन्वय सँ ओकरा विशेष विमान सँ सुरक्षित पहुँचाओल जायत। राज्य सरकार वैश्विक बिहारी समुदाय के प्रदेशक विकास निवेश आ नवाचार के मुख्य धारा सँ जुड़बाक लेल एकटा विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कयलक अछि। सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा आई पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम में एहि डिजिटल प्लेटफॉर्मक शुभारंभ कयलनि। राज्यक नव डिग्री महाविद्यालय सभ मे अतिथि शिक्षकक बहाली पर तत्काल प्रभाव सँ रोक लगा देल गेल अछि। बिहार लोक भवन सँ निर्गत आदेश मे कहल गेल अछि जे नव दिशा निर्देश निर्धारित हेबा धरि प्रखंड सभ मे स्थापित होबय वला डिग्री कॉलेज सभ मे अतिथि शिक्षकक चयन अथवा नियोजनक प्रक्रिया शुरू नहि कयल जायत। एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफीक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीमक गोलकीपर सावन कुमार के आई पटना पहुंचला पर भव्य स्वागत कयल गेलनि। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह हवाई अड्डा पर हुनक स्वागत कयलनि। प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रहल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटा मे 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग रोहतासक डेहरी राज्यक सभ सँ गर्म स्थान रहल। पटना, गयाजी आ औरंगाबादक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस सँ ऊपर चलि गेल अछि। एम्हर भागलपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया जिला मे आई आयल तेज अन्हर, तूफान आ वर्षा सँ लोक सभ के गर्मी सँ राहत भेट। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे अगला 48 घंटा में तापमान में कोनो विशेष परिवर्तन हेबाक संभावना नहि अछि। ओतहि राज्यक उत्तरी आ दक्षिणी क्षेत्र में किछु स्थान पर वर्षा हेबाक पूर्वानुमान अछि। खगड़िया में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषदक दिस सँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलनक आयोजन कयल गेल। सम्मेलन में मैथिली आ मिथिलाक विकास पर चर्चा भेल। सहरसा में शिक्षा विभाग कार्यालय भवनक 3 मंजिल पर शॉर्ट सर्किट सँ आग लागि गेल। अगिलगीक एहि घटना में लाखों टाका मूल्यक संपत्ति जरिकऽ नष्ट भऽ गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: गाम घर सुननिहार सुधीर श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर हमरा संग गोपी भाई बैसल। गोपी भाई, अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार विजय भाई, संगे संग गाम घर के श्रोता लोकन छथि, नव ऊर्जा के युवा लोकन, उनका एक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। देखियो विजय भाई, कोनो देशक जे अहाँक पहचान बनैत अछि, कोनो समाजक जे पहचान बनैए, कोनो राष्ट्रक जे पहचान बनैए, ओहि देशमे रहैवला, ओहि समाजमे रहैवला, ओहि राष्ट्रमे रहैवला नागरिकके चरित्रसँ बनैत अछि। तऽ चरित्र जे अछि ओ मानव जीवनक आधार थिक, बुनियाद थिक। अब चरित्र बड्ड व्यापक शब्द अछि, एहि शब्दमे सब गप चलि आबैए। सत्यनिष्ठा, माता पिता के प्रति भक्ति, ईश्वर भक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रक प्रति भक्ति, तो युवा लोकन में चरित्र निर्माण बड़ आवश्यक है, क्या तो देशक भविष्य छथि। आ एक मजबूत सशक्त राष्ट्रक नींव हुनक नैतिक मूल्य और आदर्श पर टिकल होते हुनका जीवन में उचित निर्णय लेना, चुनौती का समस्या का डट का सामना केनाय और एक जिम्मेदार नागरिक बनाबे

0: मदद करैत अछि चरित्र। कहलो गेल अछि कि धन चलि गेल तऽ किछु नहि गेल, अर्थ चलि गेल तऽ किछु गेल, आ चरित्र जँ चलि गेल तऽ सभ किछु चलि गेल अछि। तऽ मानव जीवनमे चरित्र जे अछि ओ अहाँके मानव जीवनक सर्वांगीण विकासक आधार थिक, बुनियाद थिक।
1: गोपी भाई बड़ नीक गप कहलियै। देखियौ गोपी भाई, जे मनुखक जीवनमे चरित्र निर्माण बड़ बेसी आवश्यक अछि, किएक तऽ ई केवल नीक आदत विकसित केनाइ नहि अछि, अपितु ओ नीव अछि जे व्यक्तिके व्यक्तित्व, समाजमे आ प्रतिष्ठा आ ओकर भविष्यके तय करैत अछि। चरित्रवान व्यक्ति हर परिस्थितिमे सही निर्णय लेबामे जे अछि ओ सक्षम होइत अछि। गोपी भाई, चरित्र निर्माण जीवनमे सफलता, शांति आ समाजके सम्मान पयबाक लेल चरित्र निर्माण बड़ बेसी आवश्यक अछि। नीक चरित्र जीवनमे सही निर्णय लेबाक क्षमता ई दैत अछि आ विपरीत परिस्थितिमे भी मनुखके डिगो नहि दैत अछि।
0: विपरीत परिस्थितिमे मनुष्यके चरित्रक छै से परीक्षा होइत अछि, बुझलहुँ। किएक तऽ विपरीत परिस्थितिमे ज्यादातर जे लोक छथि ओ अहाँके छै से अपन निर्णय उचित नहि लऽ पाबैत छथि, क्रोध ककर नियंत्रित नहि कऽ पाबैत छथि आ अपन व्यवहारके संतुलित नहि कऽ पाबैत छथि। तऽ संकटके समयमे विपरीत परिस्थितिमे जे व्यक्ति अहाँके धीर अछि, जे व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ अछि, वएह छै से अहाँके आगू बढ़त। तऽ संकटके समयमे विपरीत परिस्थितिमे व्यक्तिके चरित्रक छै से जाँच होइत अछि।
1: गोपी भाई, देखियौ जे ई चरित्रक निर्माणक लेल किछु बातके जीवनमे जे छै उतरनाइ बड़ जरूरी अछि, जेनाकि पहिला भेल सत्य आ ईमानदारी। तऽ चरित्र निर्माण हमेशा सत्यके साथ दैत अछि आ ओ अपन हर काजमे ईमानदारी रखैत अछि। तहिना भेल अनुशासन, एहिमे समयके पाबन्द भेनाइ आ अपन दिनचर्या आ नियमके पालन केनाइ।
0: देखियौ, चरित्र निर्माणके जे मुख्य महत्व एहि प्रकारे अछि कि सकारात्मक नेतृत्व क्षमता आबैत अछि, जे विकासक लेल बड़ अहाँके आवश्यक अछि। युवा लोकनिमे साहस, करुणा, न्याय जेहन मानवीय गुण ओ विकसित करैत अछि, जाहिसँ भविष्यमे कुशल आओर दूरदर्शी नेता बनि सकैत छथि। आत्मानुशासन मने अपना ऊपर अनुशासन, नियन्त्रण, लचीलापन, जँ कोनो नीक गप भेटा जीवनमे उतारैके सुनै लेल, हँ, तऽ ककरोसँ हम सीख सकैत छी। एकटा राजा छलथि हँ, ओ हारि अहाँके राज्य हारि गेलथि तऽ गाछके तरमे बैसल छलथि, तऽ देखलथि कि एगो चुट्टी जे यऽ, चिट्टी अहाँके, ओ चुट्टी छै से अहाँके एक बेर गाछपर चढ़ल गिर गेल, दोसर बेर चढ़ल गिर गेल, तेसर बेर चढ़ल गिर, लेकिन ओ पाँचम प्रयासमे गाछपर चढ़ि गेल। तऽ कहलथि कि एकटा चुट्टी छै से हारने मानलक आओर हम एके दुए प्रयासमे हार मानि लेलहुँ, ई उचित गप नहि थिक। फेर ओ अपन छै से हिम्मत जुटेलथि, फेर सेनाके छै से गठन केलथि आ तेसर बेर हमला केलथि आ अपन राज्यके वापस पा गेलथि। तऽ देखियौ, ककरोसँ सीख सकै छी, बशर्ते कि अहाँके सीखैके लिप्सा हुए, सीखैके जिज्ञासा हुए। आर मजबूत चरित्रवला युवा जे अछि ओ जीवनके असफलतासँ जल्दी उबरैत अछि, लचीलापन आओर विपरीत परिस्थितिमे अहाँके उचित मार्गपर चलैत अछि। राष्ट्र निर्माणमे चरित्रवान युवा शक्ति जे अछि देशक सामाजिक, आर्थिक आओर नैतिक उत्थानमे सबसँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। अच्छा, ई युवा जे अछि अहाँके सामाजिक सौहार्दके सेहो बढ़ावा दैत छै, जे चरित्रवान छथि, एक दोसरके सम्मान केनाइ, एक दोसरक सङ्ग मिलजुलि कऽ रहनाइ, एक दोसरके छै से अहाँके भावनाके ध्यान रखनाइ आओर समाजक प्रति अपन जे हुनक जिम्मेदारी छनि ओ छै से अहाँके ओ उचित ढङ्गसँ निभाबैत छै।
1: गोपी भाई, अपने जे बात कहलियै सकारात्मक समाजक निर्माण, तऽ ओ एक मजबूत चरित्रवला लोक समाजमे सहानुभूति, करुणा आ सहयोगके भावनाके बढ़ावा दैत अछि, जाहिसँ सङ्घर्ष कम होइत अछि। आओर भेल अहाँके सङ्कटके लेल मानसिक मजबूती, तऽ गोपी भाई, चरित्र निर्माण विपरीत परिस्थितिमे चुनौतीके सामना करबाक लेल धैर्य आ सहनशीलता जेना चारित्रिक गुण हमरा सबके विचलित नहि होमय दैत अछि। मनुखके चरित्र निर्माणमे ओकर परिवारके संस्कार, शिक्षकक भूमिका आ आसपासके वातावरणके बड़ गहीर प्रभाव पड़ैत अछि। मानव जीवनमे चरित्र निर्माणक महत्व सर्वोपरि अछि, ई व्यक्तिके सबसँ पैघ पूँजी, नैतिक शक्ति आ पहचान अछि।
0: तऽ आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने छोट छीन विराम लऽ ली।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक

0: सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: छुटचिन विरामक उपरांत उपस्थित शिवम गोपी भाई संग में छिट विजय भाई, तो विजय भाई हम सब चर्चा करे छो कि युवा लोकन के व्यक्तित्व विकास में चरित्र निर्माण के बड़ महत्व है आ हुनका लेल सकारात्मक जे युवा छथि ओ सकारात्मक युवा विकास जेहन कार्यक्रम के द्वारा हुनक नेतृत्व कौशल और सामाजिक काज में शामिल करे पर अहाँ के जोर देल जात है। तो जे युवा छे से अहाँ के चरित्रवान छथि, जे युवा छे से अहाँ के अपन व्यक्तित्व के मजबूत करय चाहे छथि, तो उनका लेल आवश्यक है कि अपनो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करित आ अपन चरित्र के सर्वांगीण विकास करित।
3: आ गोबी भाई देखियो, जे में सफल नेतृत्व जो होइत अछि, एकटा चरित्रवान व्यक्ति कठिन परिस्थिति में सेहो सही निर्णय लेबा में सक्षम होइत अछि। तकरा बाद सद्गुणक विकास, तो चरित्र निर्माण में प्रेम, सहयोग, क्षमा आ आत्म अनुशासन जना मानवीय गुणक सेहो विकास होइत
2: अछि। आ ई जे मानवीय गुण अछि अहाँके, ओ आजुक दिन मंगल अछि और हम सब वहाँ का महावीर जी में देख सके छी कि कतेक पैघ हुनक चरित्र छल कि कतबो संकट का समय होइत छल ओ घबरायत नहीं छलथि। देखियो जैसे लक्ष्मण जी का अहाँ का अमोद अस्त्र लग गेल आ ओय के बाद जैसे लक्ष्मण जी का घायल भेला के बाद देखियो जाकर जैसे उनका लेल बुटी आने छे आ हुनक जैसे अहाँ का प्राण फिर वापस आने छे। तो कहबा का अभिप्राय ई अछि कि कहे छथि कि राम काजो किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जे अपन काज या ओ काज पर इतने फोकस्ड रही, ओ काज पर इतने छे से गहन एकाग्रता राखी, समर्पण राखी कि जाबत तक ओ काज पूर्ण नहीं भऽ जाए ताबत तक हमरा कोनो प्रकार का आराम, कोनो प्रकार के विश्राम नहीं ले के।
3: यह
2: भेल छे से अहाँ के चरित्रक यह प्रमुख विशेषता भेल।
3: बजरंग बली सब पर कृपा करे छे।
2: हाँ,
3: तो सुनी हमरा लोकन एकटा बजरंग बली के गीत।
2: हाँ, सुनल जाए।
3: स्वर चंद श्याम बिहारी राय के, तो सुनी इनका स्वर में गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एखन हमसब अहाँके गीत सुने छलहुँ हँ श्याम बिहारी रायके स्वरमे। आ देखियौ विजय भाई, ई गर्मीके मास जे अछि, हँ, दिन कते नम्हर होइए। अच्छा, तापमान अहाँके दिनोदिन छै से अहाँके बढ़ैत चलि गेल। तऽ गर्मीके मौसम जे अछि ओ हमर अपना सबके स्वास्थ्य आओर जे फिटनेस अछि एकरा लेल एकटा नव अवसर आओर चुनौती दुनू लऽ कऽ आबैत अछि। तऽ एहि लेल अहाँके आवश्यक अछि कि सम्पूर्ण गर्मी मासमे फिट केना रही, स्वस्थ केना रही, एहि लेल किछु व्यवहारिक आओर कारगर जे सुझाव अछि ओ एहि प्रकार अछि कि पहिले तक आउटडोर वर्कके अपनाबी। गर्मीके मौसम जे अछि एहिमे अहाँके तैराकी भेल, साइकिल चलेनाइ भेल, हाइकिंग भेल, हॉट आउटडोर गतिविधि अहाँके फिटनेस रूटीनमे एकटा आनन्ददायक मोड़ आनि सकैत अछि। आ सङ्गे सङ्ग विटामिन डी के नीक मात्रा प्रदान करैत अछि, किएक तऽ रौदमे रहबै तऽ विटामिन डी अहाँके भेटत। अच्छा, हाइड्रेटेड रही, गर्मीमे पसीना खूब निकलैए, ताहि लेल जल बेसीसँ बेसी पीबाक चाही। तऽ अपना लोग हमेशा जलके बोतल राखी आ शरीरमे जलके कमीके पूरा करबाक हेतु प्रतिदिन कमसँ कम 8 गिलास जल पीबैके लक्ष्य रखबाक चाही। अच्छा, मिठगर मीठा करना जना ठंडा पी लै छी अपने सब कोल्ड ड्रिंक छै से, तऽ ई अहाँके फिटनेसके बिगाड़ैत अछि, बुझलहुँ। आइसक्रीम खेनाइ आसान अछि, नीक लागैए, लेकिन फिटनेस लक्ष्यके बिगाड़ैए। एहिके बजाय फलके सलाद ली या छै से अहाँके जे लस्सी होइए लस्सी पी सकै छी कोल्ड ड्रिंकके बजाय, छै से ताजा मौसमी फल, गर्मीमे ताजा टटगर अहाँके जे टटका फल यऽ आ तीमन तरकारी भरपूर मात्रामे उपलब्ध होइए। तऽ एहि पोषक तत्वसँ भरपूर खाद्य पदार्थके अपन आहारमे शामिल करी आओर स्वस्थ रहबाक हेतु एकर छै से अहाँ उपयोग करी।
3: हँ, तऽ ई कहब गर्मीमे लू सँ बचनाइ सेहो।

0: आवश्यक है
1: एकदम आवश्यक है। जहाँ बड़
0: महत्वपूर्ण
1: गप कहल
0: गर्मी के मौसम में लू से बचनाय नहि केवल जरूरी अछि अपितु जानलेवा स्थिति से बचबाक लेल अत्यंत आवश्यक।
1: हाँ एकदम सही गप कहल
0: तेज धूप आ गर्मी के कारण शरीरक तापमान सबसे बेसी बढ़ जाते अछि। कहबे के लिए अपने तापमान बढ़ जाते अछि तो लू से बचबाक लेल किस तरीका से अछि जेना कि हल्लुक कपड़ा
1: सूती कपड़ा पहिरू पहिरी
0: ढीला कपड़ा पहिरी सूती कपड़ा पहिरी जाहिसँ त्वचा जे से सांस लऽ सके। तहिना भेल धूप सँ बचाउ।

0: जतऽ जा रहल छी गाममे कतौ छाहरि भेट गेल गाछके छाहरिमे बैस कऽ कनि सुस्ता ली कनि आराम कर ली।
1: आ आमक जे चटनी छै ओ निश्चित रूपसँ खेबाक चाही, किया तऽ आमके जे चटनी यऽ ओ अहाँके लू सँ बचाबै।
0: ओ तऽ बहुत बड़का गप कहलियै।
1: दोसर बात की छै जे अहाँ प्याजोके सेवन जे करब तहूसँ लू सँ बचाव होइत अछि।
0: हमेशा हाइड्रेटेड रही, प्यास नहि लगला पर पानि पिबैत रही, नींबू पानि छाँछ नारियल पानि आमक पन्ना जे होइए तकरो सेवन अवश्य करी। आ खान पान आ पेटके ठंडा रखबाक लेल खीरा ककड़ी दही आ तरबुज्जा जेना पानि सँ भरपूर चीज खेनाइ सेहो आवश्यक अछि।
1: आ टमाटर जे कैलोरीमे कम होइए आ जलके मात्रामे बेसी होइए तऽ टमाटर अहाँके वजन घटाबैवला आहारमे ई बड़ नीक विकल्प अछि गर्मीके समयमे। खीरामे अछि अहाँके जलक मात्रा बेसी आ कैलोरीके मात्रा कम होइए, एहि लेल खीरा ओहि लोक लेल अहाँके बेहतरीन विकल्प यए जे वजन कम करऽ चाहैत। अच्छा शिमला मिर्च जे अछि ओहो गर्मीके मौसममे उपयोगी अछि, किएक तऽ ओहिमे कैलोरी कम आ फाइबर बेसी अछि, तऽ ई वजन घटाबैवला कोनो भोजनमे एकटा बेहतरीन विकल्प अछि। आम धारणाके विपरीत आममे पैक्टिन आओर आन पोषक तत्व उच्च मात्रामे पाओल जाइत अछि जे अहाँके गर्मीके मासमे अहाँ लू लागैसँ बचाबैत अछि। तरबूज 92% एहिमे जल होइए, तऽ अहाँके टटका फल जे यऽ शरीरके भरपूर मात्रामे जल प्रदान करैए आओर वजन घटाबैमे ई बहुत कारगर अछि। बुझलियै, ओनाहिए अंगूर यऽ कैलोरीमे कम आ विटामिन सी सँ भरपूर अंगूर अहाँके अतिरिक्त वजन कम करैमे सहायता करैत अछि। सेब विशेष रूपसँ हरियर सेब एहिमे मौजूद उच्च फाइबर जे यऽ आ जलक मात्राके कारण ई आहार अहाँके छै से एकटा नीक स्वास्थ्यक छै से अहाँके अथी अछि, उपयोगी अछि ओकरा लेल। ओनाहि पपीता अनानास यऽ, एहि उष्ण कटिबंधीय फलमे अहाँके ब्रोमोलाइन नामक एंजाइम होइ छै जाहिमे सूजन रोधी गुण होइत अछि, एहि पेटके चर्बी कम करैमे सेहो मदद करैए पपीता अनानास। हँ, आ कहबे केलिए अहाँ कि रौदसँ बची, बाहरी गतिविधिके आनंद लैत समय अपन त्वचाके सुरक्षा करनाइ नहि बिसरी, हानिकारक धूप किरणसँ बचावके लेल सनस्क्रीन टोपी आ धूपक चश्मा पहनी, हवादार कपड़ा चुनी जे प्राकृतिक रेशासँ बनल ढीला हलुक रङ्गके कपड़ा हुए। हँ, संतुलित आहार, पर्याप्त आराम, सुरक्षित कमसँ कम 7-9 घंटाके नींद सेहो ली। बुझलिए, किया तऽ ई ऊर्जा स्तरके बनाके राखैए। तऽ ईसब जे गपके ध्यानमे राखब विजय भाइ, तऽ निश्चित रूपसँ स्वास्थ्य नीक रहत, आ जँ स्वास्थ्य नीक रहत तऽ मन एकदम छै से गदगद रहत आ गीतनाद सुनैके मन करत,
0: काबू सेहो रहत,
1: शरीर पर काबू सेहो रहत आ गीतनादसँ छै से मन पर नियंत्रण हैत, काबू हैत।
0: तऽ सुनी हमरा लोकनि एकटा भगवती गीत ममता ठाकुरके सुनी।

0: आदिशक्ति तू माया। वास्तव में माँ भगवती जे छथि हुनके माया से हुनके आशीर्वाद से ई चराचर जगत चलत है आ हुनक आशीर्वाद जे ये ओ मानव जीवनक समग्र विकासक आधार बनत है। ओना ही अहाँ का योग जे है क्या तो 21 जून का अहाँ का विश्व योग दिवस है ते पर किछ चर्चा हम सब कहली कि योग जे है अहाँ का शारीरिक मानसिक विकासक लेल बड़ आवश्यक है। ई अहाँ का मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है परंच एक समग्र जीवन शैली है जे शरीर मन और चेतना के जोड़ित है। नियमित योगाभ्यास से मात्र मांसपेशी और जोर मजबूत नहीं होते परंच मानसिक शांति अस्पष्टता और एकाग्रता में सुधार से होते लचीलापन और मजबूती आबित शरीर में। योगासन के नियमित अभ्यास से शरीर के लचीलापन बढ़ते और मांसपेशी मजबूत होते ऊर्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली श्वास नियंत्रण प्राणायामक माध्यम से शरीर में ऑक्सीजनक प्रवाह बेहतर होते जिससे ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़त स्वास्थ्य लाभ ई रक्तचाप के नियंत्रित करत और हृदय स्वास्थ्य के सुधार से करत आ मानसिक विकास योग कला से तनाव और चिंता से मुक्ति भेट ध्यान और श्वास क्रिया जे ओ मस्तिष्क में शांति आनत जैसे अहाँ के कोर्टिसोल जो है तनाव हार्मोन का स्तर कम हो एकाग्रता और स्मरण शक्ति में से विकास हो। नियमित योगाभ्यास से मस्तिष्क का कार्य प्रणाली में सुधार होते है जे ध्यान केंद्रित करे में और याददाश्त बढ़ावे में सहायता करत भावना पर नियंत्रण योग अहाँ का अपन शरीर और विचार के प्रति बेसी जागरूक बनाबत जैसे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होते तो देखियो जैसे अही गप के संगे आजुक जे गाम घर के जे समय है वो सम्पन्न भ रहल अछि और हम सब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकन का हार्दिक स्वागत है। तो विजय भाई केना की खेती बाड़ी भ रहल छै से कहियो।
1: गप्पी भाई हमरा लोकन जे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रवेश क गेल छी तो सबसे पहले हमरा लोकन किसान भाई लोकन के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में स्वागत करै छियन। आ गप्पी भाई हमरा लोकन खेती गृहस्थी कार्यक्रम में मिट्टी जांचक महत्व अइ विषय पर हम सब गप करब।
0: अच्छा
1: त देखू गोपी भाई जे मिट्टी के जांच कृषि के एक अनिवार्य हिस्सा है जकर माध्यम से मिट्टी के भौतिक रासायनिक आ जैविक गुण के आकलन कैल जाते है। ई किसान सभक ओकर जीवन जमीन के उर्वरता समझबाक लागत कम करबा आ फसिल के पैदावार बढ़ेबा में मदद करत है।
0: देखियो माटि जांच जिया जेना छै से अहाँ के डॉक्टर रोगी के जे इलाज करैया तो सबसे पहले ओकर जांच केलक छै से शरीर के तापमान से लऽ कऽ ओकर खूनक जांच होइया हाँ ओकर छै से अहाँ के मूत्र के जांच होइया बहुत तरह के जांच तखन पता चलै छै कोन बीमारी छै कोन छै। ओनाही माटिक खेती बाड़ी करै लेल सबसे पहिने आवश्यक माटि के जांच करा ली आ माटि में कोन पोषक तत्व अछि आ कोन पोषक तत्व नहि यऽ कोन प्रकार के कीड़ा मकोड़ा कोन बैक्टीरिया हानिकारक अछि तो ई अहाँ के माटिक जांच से पता चलत। खेत में लागत कम करै लेल और उचित पैदावार पाबे के लेल माटिक जांच बड़ आवश्यक है। ऐसे खेत में जो मौजूद मुख्य है तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म जिंक लोहा बोरॉन पोषक तत्व के उचित मात्रा के पता चलत जैसे अहाँ के हम जो जरूरी जो खाद हो हम सब डाले
1: गोपी भाई देखियो जैमे उर्वरक सही उपयोग से हो होते हैं।
0: हाँ हाँ
1: गोपी भाई जांच से ये पता चलत है कि माटि में कौन पोषक तत्वक कमी या अधिकता है। हाँ ऐसे किसान केवल जरूरत के अनुसार खाद आ उर्वरक डाले एक दोसर बेला के लागत में कमी ते बेहिसाब खाद आ रासायनिक उर्वरक प्रयोग रुकबा में खेती के लागत कम भ जात और मुनाफा में वृद्धि होत है।
0: क्या तो अहाँ के पता चल जाइए ना कि कौन प्रकार का छे से हमरा कमी है या कौन प्रकार का खाद है में देखी है अनावश्यक खाद उर्वरक हम सब नहीं दे छी जैसे खेती के लागत कम भ जाइए। अच्छा माटिक सेहत में से सुधार भ जाइए खेतक जो अम्लीय क्षारीय प्रकृति के पता चलत जैसे उचित सुधारक जना चूना या जिप्सम दऽ कऽ माटि के उपजाऊ बना सकै छी। अच्छा माटि जांच के रिपोर्ट के आधार पर इहो हम सब तय करै छी कि कौन फसल उगायब अइ माटि में कौन फसल सबसे बेसी अहाँ के मुनाफा देत कौन फसल बेसी उपजा देत आ जानै छियै भारत सरकार के द्वारा माटि के स्वास्थ्य कार्ड

0: सेहो भेटैए। माटिक जाँचके बाद सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड देल जाइत अछि, जे खेतके रिकॉर्ड आओर भविष्यके खेतीके लेल मार्गदर्शक काज करैत अछि।
1: बड़ नीक गप कहलिए देखियो गोपी भाई, जे भारत सरकार द्वारा कहलिए अपने, भारत सरकार द्वारा चलाओल जा रहल अछि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई योजनाके माध्यमसँ किसान भाई लोकनि अपन जमीनक जेना प्रमुख मानक सब जे जेना कि जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, ई सबक मुफ्त आ बड़ कम समय पर जांच करा सकैत छथि। गोपी भाई, माटिक जांच सरकार जे मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक भेल अंचल स्तर पर नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम सँ होइत अछि।
0: आ देखो, माटि के जांच कोना करी, एहि लेल कहै अछि अहाँके खेत सँ उचित तरीका सँ नमूना लेना जरूरी अछि। आ जेना नमूना लेकर उचित समय फसिल काटे के बाद या बाउ करे सँ पहिने, कम से कम एक महीने पहले ओकर सैंपल नमूना लेबाक चाही। उचित विधि की अछि, खेत के अलग अलग जगह सँ 8-10 स्थान सँ भी अंग्रेजी अक्षर आकार का गहा खाद खोदि दियो आ ओहिसँ माटि इकट्ठा करू, भी आकार के गड्ढा, आ सब जगह के माटि के मिला के लगभग आधा किलो नमूना छाया में सुखा ली आ ओकर बाद ओकरा जांच के लेल भेज दी। जांच केंद्र अहाँ अपन माटिक जांच नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार के जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अछि ओहिमे करवा सकै छी। तो ई सब जे गप के ध्यान में रखब तो अहाँ के छै से माटिक जांच भ जायत आ ओहिके हिसाबसँ अहाँ अपन फसिलके बौ करू आ ओहिके हिसाबसँ खाद बीया सब देब। लेकिन आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने छोट छीन विराम लो ली।
1: सुनल जाए,
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: छोटचिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छथि विजय भाई। तो विजय भाई, एखन हमसब चर्चा करै छलहुँ कि माटि जांच जे अछि ओ खेती बाड़ी के काज लेल बड़ आवश्यक अछि, किया तऽ एहिसँ अहाँके ई गप हमसब बुझि जाइ छी कि माटिमे कोन तत्वके, कोन पोषक तत्वके कमी अछि आ कोन फसिलके एहिमे बौ करब जाहिसँ बेसी से बेसी उपजा होयत। आ अहाँके जतेक आवश्यक होइए ओतबे खाद एहिमे दै छी, अनावश्यक खाद उर्वरक दैसँ बचै छी, तऽ एहिसँ अहाँके उपजा नीक होयत। आ जँ उपजा नीक होयत तऽ गीतनाद सुनैके मोन निश्चित रूपसँ करत, हँ, तखन मोन गदगद रहत,
1: गदगद रहत,
0: हँ। तऽ किया नहि हमसब अहाँके अरविन्द कुमार झाके स्वरमे एक गोटी गीत सुनी।
1: सुनल जाए।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हाँ विजय भाई, एखन अपने सब चाहक गीत सुने चलो हाँ, अरविंद कुमार झा के स्वर में, बटो ही रह जा अपने गम। आ देखियो, खेती के काज में कृषि वानिकी के बड़ बेसी महत्व है। ये कृषि भूमि पर फसिलक संग संग अहाँक पेड़ पौधा आ झाड़ी उगाबे के एक आधुनिक आ पारंपरिक प्रणाली है।
3: आवश्यक है ना,
2: ऐसे माटि के स्वास्थ्य सेहो सुधरै, प्राकृतिक आपदा से बचाव सेहो होइए, और किसान का अतिरिक्त आय सेहो प्राप्त।

0: होइया। तो अही विषय पर हम सब एक गोट भेंटवार्ता सुनी। विषय एच खेती में कृषि वानिकी का महत्व। भेंटवार्ताकार छथि डॉक्टर हेमंत कुमार आ भेंट कऽ रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तो दुनू गोटा के बीच में जे गप सप भ रहल या वो हम सब ध्यान से सुनी।
1: सुनल जाए।
2: किसान भाई लोकन आज खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के बहुत बहुत स्वागत आ संगे नमस्कार। आज हम सब लो चले छी अपने के राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित समस्तीपुर में जत किसान मेला के आयोजन भ रहल छै। हमरा संगे उपस्थित छथि किसान मेला में पेपरा कोठी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार। डॉक्टर हेमंत कुमार जी अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक छी एग्रोफॉरेस्ट्री में। अपने के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करे छी। संगे अपने के नमस्कार।
3: धन्यवाद अनिल जी और धन्यवाद सभी किसान भाई बंधुओं को।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहब जे सामान्य आम भाषा में जे एग्रो फॉरेस्ट्री की है किसान भाई लोकन ऐसा कोना लाभ उठा सके छी की कह चाहबेन किसान भाई लोकन के।
3: जैसा कि किसान भाई बंधु आप सबको पता है कि हम वर्षों से पारंपरिक कृषि को अपनाते आ रहे हैं, जिसमें कि हम एकल कृषि का जो हमारा कंसेप्ट है, जो हम शुरू से केवल धान केवल गेहूं जो चना मसूर लगाते आ रहे हैं, और आज के बदलते जलवायु में हमको एक ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि हम कैसे अपने आय को सुनिश्चित करें और लंबे समय तक अधिक से अधिक आय को बरकरार रख सकें। तो उसी संदर्भ में आज का एक नया जो कंसेप्ट आया है, एक नया एक विचार है, वो है कृषि वानिकी का, जो कि किसानों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और किसान भाई बंधु कृषि वानिकी के अंतर्गत जो पारंपरिक खेती जो होती थी, जो जो केवल केवल कृषि से संबंधित फसलों का हम जो समायोजन करते थे, उसके साथ साथ अगर हम उच्च जो इमारती लकड़ी वाले जो वृक्ष प्रजातियां हैं या फलदार वृक्ष प्रजातियां हैं, उनका किस तरह से समायोजन करें, किस तरह से हम उसका कृषि फसलों के साथ उसका समायोजन करके अधिक से अधिक लाभ कमा सके, जिससे कि इस बदलते पर जलवायु के दौर में हम अपनी आय तो सुनिश्चित करें ही, साथ ही साथ जो हमारी पर्यावरण से संबंधित जितनी सारी समस्याएं हैं उसको किस तरह से हम उसका अनुदान या उसका किस तरह से हम उसका हम उपाय ला सके, उसके बारे में हम ये आज के समय में हम जिक्र करेंगे। तो जैसा किसान भाई बंधु सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि कृषि वानिकी के अंतर्गत हम उसका समायोजन कर सकते हैं, जैसे कि तेजी से बढ़ने वाले जो हमारी इमारती जो वृक्ष प्रजातियां हैं, जैसे कि आप महोगनी एक हमारे बिहार में जिसका कि सबसे ज़्यादा उपज दर्ज किया गया है, साथ ही साथ और भी तेज गति से बढ़ने वाले जो वृक्ष प्रजातियां हैं, जैसे कि पॉपुलर है आपका सेमल है जो हरा सेमल ग्रीन सेमल के नाम से जाना जा रहा है, इसके साथ सागौन का भी हम समायोजन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे फलदार वृक्ष प्रजातियां जैसे हमारा लीची है, आम है या अमरूद है, इन फसलों इन वृक्ष प्रजातियों के साथ साथ हम किस तरह से हम विभिन्न इंटरक्रॉपिंग फसलें, जैसे कि हम मूंग चना उड़द या साग भाजी वाले जो फसलें हैं हमारे, जैसे कि हम कद्दू का है या हमारे फल फल वाले जो खरबूजा है तरबूजा है लौकी है, इसका कैसा हम समायोजन कर सके और विभिन्न मौसम में सालों भर हम किस तरह से हम अपनी आय को सुनिश्चित कर सके, उस क्षेत्र में कृषि वानिकी एक अहम योगदान दे रहा है,
4: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
3: तो इसलिए हम किसान भाई बंधुओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बदलते जलवायु के दौर में कृषि वानिकी को अपना करके हम एक निश्चित भूभाग पर मल्टीपल जिसको कहते हैं कि बहुउद्देशीय हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जोखिम है मौसम का जो जोखिम उसको भी हम कम कर सकते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बीमारी होने के कारण कभी कभी ऐसी बीमारियां आती हैं जैसे कि हमारे एक फसल में आने के उस सारा का सारा फसल चौपट हो जाता है। तो अगर हम ये कृषि वानिकी का कंसेप्ट अगर अपनाते हैं तो वैसे में अगर एक हमारा कंपोनेंट्स अगर कोई फेल भी हो जाता है तो हमारे दूसरे कंपोनेंट से हमारी आय वो सुनिश्चित रहेगी, और इस तरह से किसान भाई बंधु अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आय को सालों भर सुनिश्चित कर सकते हैं और पूरे साल उनका एक आय का जो चेन बना रहेगा वो बरकरार रहेगा।
4: कहवाक मूल गप ई भेल, मूल तात्पर्य ई जे खेत एक फसल अनेक, एक खेत सँ एक समय में हम

0: रास फसिल लौ सकै छी। किसान भाई लोकनि अपने जानै छी जे हमरा अहाँक संग में अखन आर्थिक संकट बेसी रही है। किसान भाई लोकनि वातावरण के प्रभाव से वा फसिल खराब हेबा के कारण आर्थिक नुकसान हुनका होइ छन्हि। तो आइ सब बचेबा के लेल कृषि वानिकी अपना के अपन परिवार के समृद्धि के कथा लिख सकै छी। तो डॉक्टर हेमंत कुमार जी, अहाँ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में एग्रो फॉरेस्ट्री के संबंध में किसान भाई लोकनि के नीक जानकारी देलियन, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, आपको भी और किसान भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः किसान भाई बंधुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि वैसी जमीन जो कि पारंपरिक खेती के उपयुक्त न हो, जो हमारी बेकार जमीन पड़ी हुई थी, उन तमाम बेकार पड़ी हुई जमीनों पर कृषि वानिकी का समायोजन करें, और साथ ही साथ जो सालों भर हमारे घर के अपने घरों में लकड़ी की आपूर्ति हो, या इमारती लकड़ी की आपूर्ति हो, या जलावन की लकड़ी की आपूर्ति हो, उसको सुनिश्चित कर सके, और साथ ही साथ अधिक से अधिक मुनाफा को सुनिश्चित करें कृषि वानिकी को अपनाते हुए।
2: हाँ, एखन हम सब अहाँ एक गोट भेंटवार्ता पढ़े छलहुँ, सुने छलहुँ हँ, खेती में कृषि वानिकी का महत्व। भेंटवार्ताकार छले तो डॉक्टर हेमंत कुमार, आ भेंट कह रहल छले तो अनिल कुमार कर्ण, बड़ा फरछा फरछा के जानकारी देलन कि कृषि वानिकी जे है वो आधुनिक खेती बाड़ी में बड़ आवश्यक है। एहि के द्वारा किसान अपन अतिरिक्त आय प्राप्त कऽ सकै छथि, अपन आर्थिक दशा और दिशा में सुधार कऽ सकै छथि। आ देखियो, ओनाही आवश्यक अछि खेती बाड़ी के काज में मौसम पूर्वानुमान। जब मौसम के पूर्वानुमान भेट जाइए तो अहाँ के खेती बाड़ी के काज करे में आसानी होइए, सुविधा होइए। तो विजय भाई, मौसम पूर्वानुमान जे अहाँ लग अछि ओ छै से किसान भाई के जानकारी दऽ दियौ।
3: गोपी भाई, हमरा लोकनिक जे हमरा पास जे मौसम के जानकारी अछि ओ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 6 जून से 10 जून 2026 धरिक मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहार में उमस भरल गर्मी बनल रहबाक संभावना अछि। 9 जून के किस स्थान पर गरज चमक तेज हवा तथा हल्लुक बरखा होबाक संभावना अछि। एहि दौरान आसमान में आंशिक रूप से मेघ लागल रहि सकैत अछि, एकर रहबाक सेहो संभावना अछि। एहि अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि, जे सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बेसी अछि। न्यूनतम तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बनल रहबाक संभावना अछि। अधिकांश क्षेत्र में 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलबाक संभावना अछि। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 65 से 70% तथा शाम में 20 से 25% रहबाक संभावना अछि। तो ई छल मौसम पूर्वानुमान।
2: हाँ, आ किसान भाई के लिए खेती बाड़ी में जो अपना सबके समसामयिक सुझाव अछि, ओ एहि प्रकार अछि कि खेत में उपयुक्त नमी आ पूर्वानुमान अवधि में शुष्क मौसम के देखैत खरीफ मकई के बौ हेतु खेत के तैयारी बौ कऽ ली। अंतिम जोताई के समय 100 से 150 क्विंटल सरल गोबरक खाद के संग संग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करी। शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6, राजेंद्र शंकर, मक्का 3 किस्म के बौ करी। आ जे किसान भाई के पास अहाँ के पटौनी के सुविधा पर्याप्त मात्रा में अछि, ओ लंबा अवधि वाला अहाँ के धान लगाबा चाहे छे, तो राज श्री राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा, स्वर्णा सबिक, PPT 5204 आ आदि किस्म का 10 जून तक बिया स्थली में गिराबे के प्रयास करें। जतेक क्षेत्र में वो धान के रोपा चाहे छे तो वही के दशांश हिसाब में बिया गिराबे, आ बिया के गिराबे से पहिने 1.5 ग्राम बेबेस्टिन प्रति किलोग्राम बिया के दर से उपचारित कर लो। आ खरीफ प्याजक खेती के लिए नर्सरी बिया स्थली का तैयारी करें। स्वस्थ पौधा के लिए नर्सरी में गोबरक खाद निश्चित रूप से दें। आ खरीफ प्याज के लिए अहाँ का एना 53 एग्री फाउंड डॉक रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर किस्म अनुशंसित है। प्याज के बिया का व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी। आ बिया गिराबे से पहले बीजोपचार निश्चित रूप से कर ली, बुझलिए विजय भाई। आ बिया का दर जे राखी वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर राखी।
3: 8 से 10 किलोग्राम प्रति
2: हेक्टेयर। और हरेद का बाव निश्चित रूप से

0: करी। किया तो हरित का जे अहाँ के राजेंद्र सोनिया है, राजेंद्र सोनाली है, किस्म उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। आ भाव से अहाँ के 25 से 30 ग्राम 30 दिन पूर्व प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबरक सरल खाद खेत में देवाक चाहिए। आ अंतिम जोताइ में नेत्रजन 60 से 75 किलोग्राम, स्फुर 50 से 60 किलोग्राम आ पोटास 100 से 120 किलोग्राम ध्यान में राखी। तो अई प्रकारे जे ध्यान आ खेतीबाड़ी करब तो उपजा निक हैत। तो देखियो खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय जे ओ सम्पन्न हेबाक अछि, हमसब खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई से हमसब आज्ञा ली।
1: नमस्कार गोपी भाई।
0: नमस्कार विजय भाई।

यथ खेती गृहस्थी प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 सालों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 सालों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को पिछले 12 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि कल 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह श्री मोदी में देश की जनता के विश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में अब नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां मात्र 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के लिए

0: राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अनुमोदन प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। राज्य सरकार ने वैश्विक बिहारी समुदाय को प्रदेश के विकास, निवेश और नवाचार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज पटना स्थित टेक्नोलॉजी भवन में आयोजित कार्यक्रम से इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म देश विदेश में बसे बिहार मूल के लोगों को राज्य की विकास यात्रा, निवेश अवसरों और ज्ञान साझाकरण की पहलों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।
1: डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहां भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए, कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करें। रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है, और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे।
0: राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्री चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज शिक्षा पूरी कर ली हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिहार राज्य कोचिंग नियमावली तैयार कर रही है। इस नियमावली को अगले 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा।
2: कोचिंग संस्थाओं को कानून के दायरे में लाने के हम एक बिहार राज्य कोचिंग नियमावली भी बना रहे हैं, जो अगले 3 महीने के अंदर उसे लागू करेंगे और सबको उसके दायरे के अंदर लाएंगे। उनके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाएंगे कि उनको क्या करना क्या नहीं करना।
0: श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। श्री प्रधान ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त और सुरक्षित वातावरण में आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त समीक्षा बैठक में परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कई निर्देश जारी किए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के पटना, दरभंगा, मोतिहारी समेत 34 जिलों के 35 शहरों में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,56,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और डाक विभाग के समन्वय से उन्हें विशेष विमानों द्वारा सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। पुलिस को सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाने या फर्जी प्रश्न पत्र प्रसारित करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का एक कार्यक्रम था, जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 10 साल की यात्रा में हमने एक तो सुरक्षित गर्भावस्था में मातृत्व की सुरक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ किया है, स्ट्रेंथन किया है और स्वस्थ भारत की नींव को और मजबूत किया है।
0: इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इस अवसर पर गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आज पटना से थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पटना से वेल्लोर रवाना किया। उन्होंने बताया कि अब तक 43 बच्चों का मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य का दक्षिणी हिस्सा जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं उत्तरी और पूर्वी हिस्से में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आज खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। इधर राज्य का दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना, गया जी और औरंगाबाद का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने भारत और मंगोलिया के बीच शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उलानबटार में दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। गंदन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ हुए इन समझौतों से बौद्ध विरासत और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: नालंदा विश्वविद्यालय का पहला ऐतिहासिक समझौता उलानबटार के प्रसिद्ध गंदन मठ के साथ हुआ है। ये साझेदारी दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है, जिसके तहत दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण, संयुक्त अनुसंधान और प्राचीन नालंदा की ज्ञान परंपरा को सहेजने पर काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दूसरा समझौता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के साथ संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत बौद्ध दर्शन, धर्म अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, पारिस्थितिकी, संस्कृत और तिब्बती भाषा जैसे विविध क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और छात्र संकाय आदान प्रदान कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। समाचार कक्ष से निखिल आनंद गिरी।
0: एशिया कप अंडर 18 हॉकी ट्रॉफी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के गोलकीपर सावन कुमार का आज पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार का नाम रोशन किया है।
3: बिहार के गौरव सावन ने अंडर 18 एशियन कप में गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा बनके हर एक बिहारी को गौरवान्वित करने का एक अवसर दिया। निश्चित रूप से खेल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बिहार के बच्चे अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते और भारत की जूनियर सीनियर टीम्स में खेले। अब बिहार किसी भी तरीके से अन्य राज्यों में खेल के मामले में पीछे नहीं रहे।
0: पत्रकारों से बातचीत में सावन कुमार ने कहा कि विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है।
4: एज अ गोलकीपर अभी अंडर 18 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ था और एशिया कप में हमारा गोल्ड मेडल, काफी अच्छा फील हो रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर बिहार में काफी डेवलप किया गया, तो उस चीज को लेकर मैं काफी थैंकफुल करना चाहता हूँ।
0: पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र के कस्टम चौक के पास पुलिस ने दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक स्विट्जरलैंड की महिला और एक म्यांमार का युवक शामिल है। दोनों पर बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सभी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने को लेकर विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भौड़ बालूखाट स्थित चालान सेंटर से अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दो कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सहरसा के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय भवन के तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। सुपौल के भपटियाई थाना क्षेत्र के बनेनिया कोसी घाट पर एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी नौ सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति 30 दिनों के भीतर प्रदान करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया। और प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में आगामी खरीफ मौसम की तैयारी तेज हो गई है। इन दिनों किसान धान के बिचड़ा डालने और बीज खाद की व्यवस्था में जुट गए हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग किसानों की मदद के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नहरों और वितरणियों में अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुँचाने और जल जमाव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से किसान रजिस्ट्री कराने की अपील की है। इससे पीएम किसान, फसल बीमा, कृषि ऋण, उर्वरक वितरण एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सुविधा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। आपात स्थिति में 101, 112 और जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उद्योग के क्षेत्र में रोहतास जिले ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, महिला उद्यमी योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन में बेहतर क्रियान्वयन के कारण राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

ये वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक इंजीनियर आशीष रंजन को पटना में सम्मानित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने 15 जून तक 100% CMR आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड के लिए लक्ष्य निर्धारित कर निगरानी करने को कहा है। महिला और बाल विकास निगम ने आलमपुर पंचायत में सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 की जानकारी दी गई। सहयोग शिविर अभियान के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन

0: में महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं, बाल विवाह रोकथाम तथा हेल्पलाइन नंबर 181 और 112 की जानकारी दी गई। सहयोग शिविर अभियान के तहत प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। गत दिनों शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी भी आवेदन को 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत चेनारी, नौहट्टा, रोहतास और तिलौथू प्रखंड के 19 गांवों में स्वास्थ्य शिविर और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कम ओपीडी वाले चिकित्सकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए चेनारी प्रखंड के जवान दिलीप कुमार पासवान के परिजनों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की है। जिला प्रशासन ने इसे शहीद परिवार के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रतीक बताया। सासाराम में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव में रील प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा, विचार गोष्ठी और सूफी संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से युवाओं को इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जिले के सभी 281 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माँ, सशक्त भारत थीम के तहत गर्भवती महिलाओं की जाँच, फोलिक एसिड वितरण तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान पर विशेष जोर दिया गया, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास वन प्रमंडल, मनरेगा और जिला प्रशासन ने जिले में पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों और उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्लास्टिक उन्मूलन का संदेश दिया गया। सासाराम नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है। मेयर काजल कुमारी के अनुसार सड़क, नाली, पेयजल और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी 1598 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें से सैकड़ों योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेल के अधिकारियों ने सासाराम जंक्शन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिले के डेहरी में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व बकरीद जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर लोगों ने अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल प्रशासन ने सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों को तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया गया, साथ ही तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सासाराम के अंचलाधिकारी, उनके सहयोगी तथा सदर अस्पताल के कर्मी को अलग अलग मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में गिरफ्तार अधिकारी और कर्मचारियों को पटना लेकर चली गयी।
1: अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का।

0: अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का यह गीत अलका याग्निक एवं विनोद राठौर की आवाज़ में, संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्यार तो होना ही था का यह गीत सुनिए आशा भोसले एवं उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत है।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे कभी खुशी कभी गम का यह गीत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में है।

0: रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: मीडियम वेव 231.5 meters अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए, फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

नमस्कार, कार्यक्रम सिंगरहारक संग हम छी माला झा। साहित्यिक एहि कार्यक्रम में हमरा लोकनि मैथिली साहित्यक गद्य आ पद्यक विभिन्न विषय पर चर्चा करे छी। लेखन क्षेत्र में प्राचीन कालहिं सँ महिला लोकनि अपन उत्कृष्ट लेखनी सँ समाज में नव दिशा देने छथि आ सतत नव नव शोध करबाक प्रयास में लागल छथि। आइ मैथिली शोध प्रबंध आ महिला लेखन पर विशेष रूप सँ चर्चा करब, तें अपने लोकन जुड़ल रही हमर संग। शोध शब्दक प्रयोग सर्वत्र गवेषणा व अनुसंधान शब्दक पर्यायवाची रूप में होइत अछि। शोधक माने कोनो प्रकारक नवीन सत्य व तथ्यक अन्वेषण करब, ऐतिहासिक सांस्कृतिक व कोनो विधा आ ज्ञानक संबंध में। साहित्यिक क्षेत्र में कोनो ज्ञात व सुप्रसिद्ध धारणा व सिद्धांतक नवीन मत स्थापना रूप में सेहो शोध होइत अछि। माने ओ सब रचना जाहि में सर्वविदित सत्य व सुपरिचित साहित्य के नव रूप में देखल जाइत अछि, ओकर नव अर्थ लगाओल जाइत अछि, शोधपूर्ण रचना थिक। एतो प्रबंध माने गद्यमय गंभीर विचारपूर्ण साहित्य रचना, आन विधाक सृजनात्मक साहित्य नहि। शोध काज में नवीन तथ्य प्रस्तुत कयल जाइत अछि, अपन विचार प्रस्तुत कयल जाइत अछि, संगहि अपन मतक पुष्टि हेतु विविध विद्वानक मत प्रस्तुत कयल जाइत अछि। शोध में नव नव तथ्यक प्रतिपादनक संगहि जे अतीतक कुहेस में अछन्न सत्य अछि तकर अन्वेषण कऽ एक एक तह के उद्धेशवाक आयास प्रयास कयल जाइत अछि। नव सत्यक अन्वेषण आ नवीन अनुसंधान करब शोधकर्ताक प्रमुख कर्तव्य मानल गेल अछि। मैथिली साहित्य में महिला लेखिका लोकनि किछु महत्वपूर्ण शोध काज केने छथि, जाहिसँ हुनक अप्रतिम वैदुष्य आ पांडित्य प्रकर्षक परिदर्शन होइत अछि। एहि पर विशेष चर्चा आगा करब। एहि मध्य सुनबी गीत।

सुनि रहल छलहुँ ई देवी गीत। गीतक बाद चर्चा के आगा बढ़ाबी। शोध क्षेत्र के आई गप कर रहल छी जाहिमे सर्वप्रथम डॉक्टर अनिमा सिंह सन

0: 1966 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मैथिली लोकगीत नामक शोध प्रबंध पर डी फिलक उपाधि सँ विभूषित कयल गेली। एहि ग्रंथ में लोकगीत संग्रहित अछि जे मैथिली क्षेत्र में व्याप्त विविध संस्कार सँ सम्बद्ध अछि। जन्म से लो प्रत्येक संस्कारक अवसर पर गाब वाला प्राय अधिकाधिक गीत एहि ग्रंथ में अछि। एकर एकटा वैशिष्ट्य इहो थिक जे नैना भुटका में प्रचलित खेल सभक अवसर पर गे आ नैना भुटका के बहटरबाक हेतु गाओल जाय वाला गीत सब एमे संकलित अछि। पोथीक आरंभक भूमिका अपन पृथक महत्व रखैत अछि। ग्रंथ में मैथिली लोकगीतक प्रमुख विशेषता सभक विवेचना भेल अछि, जेना भाषाक सरलता, सुबोधता आ वेग सम्पन्नता, भावक उदारता आ उदार भावना सभक प्रशंसा अनुशंसा, भौतिक उत्कर्ष में धन धान्य लुटायब, मंगल लेशनाक प्राधान्य शक्ति आ अभ्युदयक कामना, धर्मोन्मुख जीवनक कामना, पारिवारिक आ सामाजिक संबंधक आदर्शीकरणक प्रयास, आदर्श भाय बहिन, आदर्श माता पिता अछि। यथा देवी देवता, व्रत आ सामयिक संस्कार संबंधी, ऋतु संबंधी, रस संबंधी, झिझिर कोना, कबड्डी, करिया झूमर, तंत्र मंत्र, शिशु गीत, साँझ, बटगबनी संबंधी गीत। एक ग्रंथक पश्चात इला रानी सिंह के कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मैथिली लोकगीत में समाज चित्रण नामक शोध प्रबंध पर सन 1972 में डीलिटक उपाधि सँ विभूषित कयल गेलन, जाहि में 14 अध्याय विभाजित अछि आ प्रत्येक अध्याय में विभिन्न पक्ष पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कयल गेल अछि। लोकगीतक इतिहास पासा, लोकगीत में धर्म आधार्मिक चेतना, सामाजिक संगठन, पारिवारिक गठन, नर आ नारीक मनोवैज्ञानिक विकास परम्पराक विश्लेषण अछि। संस्कार वर्णनक अंतर्गत मिथिलाक सामाजिक स्थिति अवबोध होइत अछि। धार्मिक जीवन, पाबनि तिहार, वस्त्राभूषण, श्रृंगार, प्रसाधनक समीक्षा सेहो भेल अछि। खाद्य सामग्री, आचार विचार, व्यवसाय आ व्यवसायी, आर्थिक आ राजनीतिक जीवन, नीति आ दर्शन, मनोरंजक साधन जेहन प्रत्येक वस्तुक विवेचन विश्लेषण विभिन्न अध्याय में कयल गेल अछि। आगा नीता झा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा 1981 में आधुनिक मैथिली साहित्य पर सामाजिक असंतोषक प्रभाव विषयक शोध प्रबंध पर डॉक्टरेट के उपाधि सँ विभूषित कयल गेल छल। डॉक्टर नीता झा कथा सेहो खूब रचित छली। सुने हुनके सँ ई कथा पाठ।
1: हमर सोचब अछि जे स्त्री के घर परिवार सँ कहियो कनियो पलखित नहि होइ छै। 12 मास 36 दिन ओकर पहिने सँ बान्हल रहै छै, पूर्व निर्धारित, कतौ कोनो गुंजाइश नहि। एना सोचब अछि ठीक अछि कि सही हैत कि ओकरो लेल सब रहै छै और केओ, नहि तऽ घर वाला तऽ अपन होइते छै, लड़ैत झगड़ैत रूसैत बौसैत एक दोसरक लेल अवश्य सोचै छै। घरक सब लोकक जरूरत के मुताबिक सब चीज समय पर पूरा दै छियनि आ सब अपना अपनी में लागि जाइ छथि। एकटा हम रहि जाइ छी घर आंगनक देखभाल, साफ सफैया करू अथवा करबाओ, भानस भात करैत आ सैतैत उसारैत। बुढ़ा बुढ़ी के हम नहि देखबनि तऽ दोसर के। फेर दुनू बच्चा के पढ़ लेल बैसाबऽ पड़त, नहि तऽ दुनू भाई बहिन खेलाइत रहत आ नहि तऽ आपस में टोना मनी करत। तो छा सची न हम की छी, तो छा लड़की, लूडो खेल, कैरम खेलो, एह बड काबिल, तो या पढ़े छ टी वी पर देखे छ, लड़कियों खेलाय छे क्रिकेट, हम छी डायना, डायना इडुल जी। सचिन आ डायना के बीच में नहीं पढ़े तो कखन बैट बॉल चल जेते आ माथ कपाड़ फोड़ लेत से बुझबो नहीं करबे। एही गुंधुन में रही कि हमर एकमात्र संगी दीपाक बाजब सुनबा में आयल। कतौ छी सनिहाले गृहस्थिन, कने देशो दुनिया देखियो, लोग कतौ से कतौ चल गेल आ अहाँ भनसे घर में, बाहर बहुत किछ छै। एम्हरे चला दीपा, हम भनसा में छी, तो आ तोहर भनसा घर, तो आइयो नहीं एला पार्लर, पछिलो मास नहीं आयल रह, देख अपन बगाय बहन आ दोसरो के देखी, सब आबै छै मासे मास, एकटा तोरा छोड़ कर।

आब के एहन छै जे ब्यूटी पार्लर नहि आबै छै, शहर सँ सटल जे गाम छै ओतुको छोड़ी सब कनिया मनिया सब आबै छै, नव नव हेयर स्टाइल आ बनल बनाएल भौं लऽ कऽ पेटे सँ नहि जन्मै छै केओ। अपन छाती पर औंठा रोपि कऽ बाजल रहा दीपा, हम बना दै छियै आ हमरे सन सन कलाकार बनबै छै, मासे मास केशमे मेहदी लगबै छै कि तऽ रंगै लेल अथवा केशमे चमक आनै लेल, हाथ पैरक मैनीक्योर पेडीक्योर। अच्छा तो ई सब छोड़, तोरा एहिसँ कोन मतलब, तू तो घर से बाहर निकालबे नहि आ सब दिन खाली प्लानिंग कर। अच्छा भेलो भेलो, बहुत भेलो, चुप रह, दुनू जीव अपने छै तैं एते भाषण झाड़ै छै, पहिने ई बता जे तोहर नकपिचिया के की भेलो, छौ कि चल गेलो। बड़का समस्या हमरा भऽ जात गल फुलिया के चल गेला सँ, फेर सब नव लोक के सिखाओ आ काज करो, जोग होइ छै तऽ चलि जाइत अछि, ककरो ब्याह भऽ जाइ छै केओ अपन खोलि लैए, की करबिही, ताक दोसर छौड़ी आ दही ट्रेनिंग तुरते सीख जेतौ। चाह पीबैत काल दीपा कहने रहे, नकपिचिया के माय एक दिन कहने रहे जो ओकर घर वाला रोगाह छै, से परिवार चलेबाक भार आ दुनू बेटी के ब्याहक चिंता जिम्मेदारी ओकरे छै। नकपिचिया के की हाल, काज तो ओ सम्हारि लै छौ ने? हाँ, ओकरे पर तऽ छोड़ कऽ चल अबै छी तोरा लग कनी काल लए, आब जाइ छियौ, तू काल्हि अयबे ने? दीपाक गेलाक बाद नकपिचिया पर हमर ध्यान गेल। वयस संधि पार करैत एकटा श्याम वर्णी किशोरी समर्थाय दिस बढ़ैत, जकर थोपल थापल मुँह छै आ दीपली सन कपार, बिज्जी सन आँखि आ तीन धूरमे पसरल नाक, फूलल फूलल दुनू गाल, पीचल नाक, सौंसे मुँहमे एकेटा आकृति जगजियार छै, ओकर भौंह आ कारी कुछ कुछ केश। पार्लरमे काज करैत अछि मुदा भौंह ओकर अपन छै असली, पेटे सँ लऽ कऽ आयल अछि। नकपिचिया दू बहिन मोनी आ सोनी, मोनीक नाम मोनी रहलै आ एकर नाम सोनी छै, से एकर माय आ एकरा अलावा ककरो मोन नहि छै, बहुत लोक तऽ जानितो नहि छै। दीपा आ हमहूँ तऽ सोनी नहिए कहै छियै, जकरा जे मोन होइ छै ताहि नामे एकरा शोर करै छै, नकपिचिया, गलफुल्ली, नकफकड़ी, दीपली वाली। नेने सँ सुनैत सुनैत ओकरा पर कोनो असर नहि होइ छै, कोनो राग रोष बिना सभक संबोधन के गर्दन घुमा कऽ अथवा नजर उठा कऽ सकारि लै छै आ आदेशक अनुरूप काज कऽ दै छै। दीपा कहियो कहने रहए जे एकर जेठकी बहिन मोनी देखऽ सुनऽमे नीक छै, रंगो गोर छै, कोनो तेहन डेरामे काज करै छै जे ओसब लड़को ताकि देने छै, लड़का कोलकातामे काज करै छै, परिवारक लोक देख सुन लेने छै फागुनमे लड़का एतै आ बियाह कऽ नेने चल जेतै। दीपली बालीके माय कहब छै जब बड़की के विवाहक बाद एकरा ओहि डेरा में काज करा देते जतय एकर बहिन छै, एही करार पर विवाह में ओ सब कर्ज देते, सुदि नहीं लेते। हम कहने रहिए दीपा के जे इहो तो काज करते छै, तखन जगह बदलवा के कोन बात, ओ ओतय कमाई छै, ई तोरा लग काज करे छौ, बेर पर ओकर ब्याह भ रहल छै, एकरो भ जेतै, विवाहक चिंता हेतै ने? दीपा कहने रह नहि, गलफुल्लीक माईक कहनाम छै जे घर गृहस्थी के काज सीखत तखन न बियाह भेला पर घर डिबत, केश कटनाय, रंगनाय आ हाथ पैर ठोर रंगनाय सँ फैशन केनाय सीखला सँ आश्रमक काज नहि चलतै, तैं घर आश्रमक काज सिखबै लए ओतय देतै। भात दालि रान्हब सीखत, रोटी सोहारी पकायत, तीमन तरकारी बनेबाक लुरि चाही न? अपन फिकिर मे डूबल कहलक दीपा, भीड़ नहि रहै तैं हम टुघरल टुघरल चल एलियौ, जँ आर कस्टमर एतै तऽ घुरि जायत, जानक पिचिया छै ता तोरा कोन चिंता छौ, आराम कऽ लेना, फेर तऽ तोहर फिरिसानी बढ़बे करतौ, जा धरि ओ छौ धरि ओ बड़ होशियार, काजो बड़ जल्दी सीख लेलको, उहिगर छौ, ककरो घूरऽ नहि देतौ, सबके बिलमा कऽ रखतौ। एक रत्ती लोशन आ क्रीम लऽ कऽ कस्टमरक हाथमे औसऽ लगतै आ कस्टमर खुश। हाँ से बात तऽ छै, ओकरासँ सब प्रसन्न रहै छै, एक तऽ ओकर मुँह कान बड़ एंटरटेनिंग छै आ दोसर ओकर सहमिल्लू स्वभाव आ सबसे बढ़ि कऽ ओकर हंसी सबके मोहि लै छै। ओकरामे कनियो सुनरताइ नहि मुदा ओकर स्वभाव व्यवहार पर सब लोभा जाइ छै, ओकरा अलग सँ 5-10% दै वाली के कमी नहि छै। राति ओछान पर पड़लहुँ तऽ नकपिचिया मोन पड़ल, आन लोक का कोन कथा जे अपन माइये बहिन ओकर तिरस्कार करै छै, चामक रंग आ मुखाकृति के गोबरक चोत कहै छै, गोइठा कहै छै। हम नकपिचिया के कनैत देखने छी एक दिन ब्यूटी पार्लर में, दीपा हमर मुँह ठोर पाइब ओकर अंतरक पीड़ा बहा लागल रहे, हम देखै में अधलाह छी, झरकल सन छी, तऽ एहिमे हमर कोन दोख, जँ ककरो दोख छै तऽ भगवानक, ककरो गलती छै तऽ हमर माय बापक, रूप रंग भगवानक देन आ जन्म देलक माय बाप, हम कतऽ छियै एहि सबमे जँ हम काली भेलहुँ। हमर

0: बहिन सुंदर छै, ओकर देह हाथ नीक छै, तो ओहो जरतै आ जेतै माटि तर। हम कारी खोरी छी, नाक पीछल अछि, गाल फूलल अछि, हम मरब तऽ हमहूँ जायब ओही विधि। ओ डेरा सँ काज कऽ कऽ आबै छै तऽ माय ओकरा कते दुलार करै छै जे भरि दिनक थाकल अछि हमर बेटी, ओकर देह जाँति पीच दै छै आ हमरा एकटा नीक बोलो न कहैया, कहैया जे भरि दिन तऽ ऐसन फैशन मे लागल रहै छै, एहिमे कोन थाकनि। ओहो कमा कऽ रुपया आनै छै, हमहूँ कमा कऽ दै छी, तब केना एना कहै छै हमर माय। हमर आत्मा दुखा जाइए। नकपिचियाके दुखनामा मे डूबल नींद पड़ि गेल कखन, आ एहि संकल्पक संग जे काल्हि ब्यूटी पार्लर अवश्य जायब, से हम ओही दिन भिनसरेसँ समय बचबैत रहलहुँ आ पहुँच गेलहुँ पार्लर। दीपा पार्लरमे झाड़ू लगबैत रहए, काटल केश जे धरती पर खसल छलै तकरा बाहरि कऽ समेटैत रहए। एकटा कस्टमरक मुँह पर पैक लगा देने रहे आ फेसियलक बाद ओकर दुनू आँखि पर तूरक फाहा रहे। आ हा हा, केहन शीतल लगै हेतै, एनामे तऽ हमरा नींद पड़ि जाइत अछि, दीपा संकेतसँ बैसक कहलक। ओ फ्री भेल तऽ पुछलियै, नकपिचिया कतऽ गेलौ। ओ गेलै। गेलै कतऽ? विवाह करऽ आर कतऽ? विवाह? ओकर बहिनक विवाह हुअ वला छलै ने, आ सेहो साउनमे। एकरे विवाह भऽ रहल छै मंदिरमे, आइये। आइ मधुश्रावणीक पहिल दिनक पाबनि छै ने, लड़का वला कहलकै देवस्थानमे दिनक कोन काज। गै, लड़का कतऽ से तुबि खसलै? देखा सुनी मोनीके भेलै आ परिवारक लोककेँ मोनी पसिन पड़लै। ओ सब कहि गेलै जे लड़का से राय विचार कऽ कऽ खबरि कऽ देतै। लड़का सो सब बात विचार केने हेतै, सबटा जानकारी लड़का नेने हेतै, आ आब जाकऽ अपन बापके कहलकै जे ओकरा छुटकी पसिन छै। तू कोना बुझलही ई सब बात? के कहलकौ तोरा? काल्हि साँझ खन जखन घर पहुँचलहुँ तऽ गलफुल्लीके माय रहए बैसल। कहलियै जे ओ तऽ घर गेलह, तऽ बाजल जे अहीँसँ काज अछि, अहीँसँ भेंट करऽ अयलहुँ अछि। काज की रहतै, भेंट की करत? वज्र खसा कऽ चलि गेल। ओहो बड़ दुखी रहए। कहाँ तऽ बड़कीके बियाह ठीक भेल रहै आ की सँ की भऽ गेलै। कनैत कनैत कहलक जे लड़काके कहनाम भेलै जे ओकरा इलिम वाली लड़की चाही, परदेशमे हुनर काज देतै, सुनरताइ नहि, से ओकरा काम वाली चाही, चाम वाली नहि।
1: काम चाम सुनि रहल छलहुँ डॉक्टर नीता झासँ कथा पाठ। नीता झा अपन कयल गेल शोधसँ सेहो खूब चर्चित भेली। शोधमे महिला लेखनके जँ आओर गप करी तऽ प्रभावती झाक मैथिली महाकाव्यमे नारी चित्रण शोध प्रबन्ध PhD हेतु डॉक्टरेटक उपाधिसँ अलंकृत कयल गेल। ई शोध ग्रन्थ मैथिली अकादमी द्वारा 1980 पुस्तकाकार प्रकाशित भेल छल। 6 अध्यायमे विभाजित एक ग्रन्थक पहिल अध्यायमे विभिन्न कालक प्रेम तत्व आ नारी पात्रक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कयल गेल अछि। दोसर अध्यायमे राम कथा विषयक मैथिली महाकाव्यक प्रमुख नारी मुख्यतः चंदा झाक रामायण, लालदासक रामेश्वर चरित रामायण, सीताराम झाक अम्बचरित, जीवनाथ झाक रावणवध, रमाकांत झाक व्यथा, विधुजीक सीतायन महाकाव्य, वैदिक साहित्य और सीता, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण में सीता, रामचरितमानस में सीता आ आन नारी। तृतीय अध्याय में महाभारत, पुराण आ इतिहास पर आधारित मैथिली महाकाव्य में प्रमुख नारी पात्रक विवेचन विश्लेषण कयल गेल अछि। ऐतिहासिक महाकाव्यक अंतर्गत दीनानाथ पाठक बंधुक चाणक्य, मतिनाथ मिश्रक जय राजा सलहेस में हेलेन आ अनंग कुसुमा नारी पात्रक चरित्रक उत्कर्षक विवेचन भेल अछि। चतुर्थ अध्याय में मैथिलीक अनुदित महाकाव्यक अंतर्गत अच्युतानंद दत्तक रघुवंश, रामचंद्र झा चंद्रक कुमार संभव, आचार्य रामलोचन शरणक मैथिली रामचरित मानस, गौरीशंकर झाक मेघनाद वध आ चित्रित नारी पात्रक चरित्रक उत्कर्षक मूल्यांकन कयल गेल अछि। पंचम अध्याय में मैथिली महाकाव्य आ नारी शैलीगत विवेचनक दृष्टिसँ विवेचित अछि। आ छठम अध्यायमे सौन्दर्य आ मैथिली महाकाव्यक किछु नारी आ अन्तमे उपसंहार प्रस्तुत कयल गेल अछि। प्रोफेसर इंदिरा झाके 1984 PhD हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध आधुनिक मैथिली नाटकक पात्रके विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पटना विश्वविद्यालयसँ डॉक्टरेटक उपाधिसँ अलंकृत कयल

गेल छल आ 1987 में ई प्रकाशित भेल छल जाहिमे 9 अध्याय अछि जे नाटकक उद्गम विकास महत्व पर विस्तृत विवेचन कयल गेल अछि। एकर अतिरिक्त शीला चौधरी, ललिता झा, डॉक्टर शांति पाठक, डॉक्टर कमला चौधरी, वीणा मिश्र, मंजू सिंह, प्रीति झा समेत और कतेको लेखिका लोकनि अपन शोध सँ अभूतपूर्ण योगदान देने छथि। आब चर्चा के किछु विराम दै छी आ सुनै छी एकटा गीत।

सुनि रहल छलहुँ ई गीत आ अन्तमे सुनै छी किछु शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि उधसल। कखनो काल घर ततेक उधसल लागत जे हैत कोनाके सैंति ली जल्दी जल्दी, माने कपड़ा लत्ता वा कोनो चीज वस्तु के अस्त व्यस्त रहनाइ। एकटा शब्द अछि संदूक। ई शब्द नानी दादी के मुँहे बेसी काल अपने लोकनि सुनै छलहुँ। जेना संदूक में चीज वस्तु खूब सैंति के राखल जाइत अछि। संदूक भेल बड़का बक्सा, कोनो धातु वा लकड़ी के होइ छल। गाम में अखनो संदूक देखल जा सकैत अछि। या शब्द विमर्शक संग आब अपने लोकनि से ली आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंहराहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित

0: होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री

और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निर्भया स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी

0: समाचार। मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को

0: cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इकतसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकतसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्जान सेहत की खिदमत से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्जान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत سماجی و اقتصادی طور

0: और से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: फायदा होगा क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
0: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नज़दीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नज़रियात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल ज़ाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी इतवार के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैन अलाक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नज़रिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
2: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निज़ाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वज़ीर दाखला ने

यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आकाशवाणी दरभंगा में मैं डॉक्टर मोहम्मद आदम आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सामईन इकराम, बशीर बद्र जदीद गजल का वो आफ्ताब जो दिलों में हमेशा रोशन रहेगा के उनवान से रेडियो टॉक लेकर हाजिर हूँ। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम उर्दू गजल के एक ऐसे शायर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिसने निस सदी से ज्यादा अरसे तक लाखों दिलों को अपनी शायरी की रोशनी से मुनव्वर किया। एक ऐसा शायर जिसके अशार किताबों से निकलकर आम लोगों की गुफ्तगू का हिस्सा बन गए, जिसकी गजलें मुशायरों की जान बनी और जिसके मिसरे जिंदगी के मुख्तलिफ मौकों पर जबान जद आम होते रहे। आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र को, जिन्हें जदीद उर्दू गजल की सबसे मकबूल, दिलावेज और मुनफरिद आवाज में शुमार किया जाता है। बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। वो 15 फरवरी 1935 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनका आबाई ताल्लुक फैजाबाद, मौजूदा अयोध्या के एक गांव से था। उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया। घर की जिम्मेदारियां कम उम्री में उनके कंधों पर आ गईं। तालीम का सिलसिला रुक गया, पुलिस की मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी, लेकिन इल्म अदब से ताल्लुक कभी मुनक़ता न हुआ। शायरी का शौक बचपन ही से था। 7वीं जमात में उनकी गजल मारूफ अदबी जरीदे निगार में शाया हुई तो अदबी हलकों में हैरत की लहर दौड़ गई। बाद के बरसों में उन्होंने अज़सरेनौ तालीम का सिलसिला शुरू किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। उनकी तहकीक का मौजू था आज़ादी के बाद उर्दू गजल का तनकीदी मुतालिया। शायद उस वक्त किसी ने तसव्वुर भी न किया हो कि ये नौजवान आगे चलकर खुद आज़ादी के बाद उर्दू गजल की तारीख का एक अहम बाब बन जाएगा। शायरी के साथ साथ उनकी अदबी शनाख्त मुसलसल मजबूत होती गई। 20 बरस की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी गजलें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुमताज़ अदबी रसायल में शाया होने लगीं और अदबी हलकों में उनका नाम एहतराम से लिया जाने लगा। उनकी शायरी में एक ताजगी, एक नया लहजा और एक ऐसा एहसास था जो नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जा करता था। पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कुछ अर्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दरस तदरीस की खिदमात अंजाम दी और बाद अज़ाम मेरठ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए। यूं वो बैक वक्त एक मुहक्किक, उस्ताद और शायर की हैसियत से उर्दू दुनिया में अपनी शनाख्त कायम करने में कामयाब रहे। सामईन इकराम, बशीर बद्र का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने गजल को आम आदमी के करीब कर दिया। उनके अशार में फलसफे की पेचीदगी नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। वो मुश्किल अल्फाज के बजाय रोजमर्रा जबान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस सादगी में ऐसी गहराई होती थी जो दिलों को छू लेती थी। उनका ये शेर देखिए, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये सिर्फ एक शेर नहीं,

0: किया जाता है। बाज़नाक़ीद्दीन ने उन्हें नई उर्दू गज़ल का इमाम करार दिया। खुद बशीर बद्र भी अपने फ़न के बारे में गैर मामूली एतमाद रखते थे। उन्होंने एक मौके पर कहा था, मीर ग़ालिब मेरे हरीफ हैं। इस बयान पर अदबी दुनिया में बहस भी हुई, इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन इससे यह हकीकत वाज़ेह होती है कि वो अपनी फ़नी सलाहियत और अपने अदबी मकाम से पूरी तरह आगाह थे। इस सिलसिले में मुशफ़िक़ ख्वाजा का मजमून ख़ान बगोश के कलम से में आमद आवर्द पढ़ना दिलचस्प होगा। समईन, बशीर बद्र सिर्फ मकबूल शायर नहीं थे, वो एक हसास इंसान भी थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तान की मुश्तरक तहजीब की खुशबू मिलती है, गंगा जमनी सकाफत की झलक मिलती है, गांव की मिट्टी की महक भी है और शहर की बेचैनी भी। उनकी ज़बान में उर्दू के साथ साथ इस धरती की मुख्तलिफ बोलियों की बाजगश्त सुनाई देती है, इसीलिए उनके अशार जबान और इलाके की सरहदें अबूर कर गए। उनका कलाम हिंदी, अंग्रेज़ी और दिगर जबानों में तर्जमा हुआ और दुनिया भर में सराहा गया। बशीर बद्र की शायरी की एक और बड़ी खसूसियत यह है कि वो बैक वक्त ख़ास और आवाम दोनों के शायर थे। अदबी नक्काद उनकी फ़न्नी बारीकियों पर गुफ्तगू करते थे और आम लोग उनके अशआर में अपनी ज़िंदगी की झलक देखते थे। यही वजह है कि उनके मुतअद्दिद अशआर ज़र्बुल मसल की हैसियत इख्तियार कर गए और नस्ल दर नस्ल नक़ल होते रहेंगे। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में बशीर बद्र एक तवील बीमारी का शिकार रहे। याददाश्त की कमज़ोरी बढ़ती गई, वह आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी मामलात से बेखबर होते गए। ये एक अजीब अलमिया था कि जिस शायर के अशार लाखों लोगों को याद थे, वो खुद अपनी बहुत सी यादों से महरूम होता चला गया। लेकिन शायरों की असल ज़िंदगी उनकी याददाश्त में नहीं, उनके अल्फाज में होती है, और बशीर बद्र के अल्फाज आज भी ज़िंदा हैं। सामईन इकराम, बशीर बद्र को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री अता किया। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड समेत मुख्तलिफ रियासती उर्दू अकादमियों के एजाज़ात भी हासिल हुए। उनके मशहूर शेरी मजमुओं इकाई, एमएज, आमद, आस, आसमान और आहट ने उर्दू शायरी के ज़खीरे में अहम इजाफा किया। उनका कुल्लियात भी शाया हो चुका है और आज भी नई नस्ल शौक से उनकी शायरी पढ़ती है। तवील अलालत के बाद 8 मई को 91 बरस की उम्र में बशीर बद्र ने भोपाल में आखिरी सांसें ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी रहलत की खबर ने उर्दू दुनिया को गमजदा कर दिया, लेकिन बाज़ शख्सियात जिस्मानी तौर पर रुखसत होकर भी अपने फ़न के ज़रिए ज़िंदा रहती हैं। बशीर बद्र भी उन्हीं खुशनसीब लोगों में शामिल हैं। सामईन इकराम, उनकी रहलत से उर्दू गज़ल का एक दरख्शां अहद इख्ताम पज़ीर हुआ, लेकिन उनकी शायरी का सफ़र जारी है। आखिर में उन्हीं के चंद अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर बशीर बद्र को हमारी जानिब से खराज अकीदत, दुआए मगफरत और सलाम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद आदम, इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
1: अभी आप विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता सुन रहे थे। बशीर बद्र श्रद्धांजलि, वार्ताकार थे मोहम्मद आदम। प्रस्तुति सहयोग असद दाऊद की थी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इंग्लिश टॉक।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं आरडी बर्मन, जो एक महान संगीतकार थे। तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म झूठा सच का यह गीत लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज़ में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का यह गीत सुनिए अमिताभ बच्चन आशा भोसले एवं शरद कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म किनारा का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर एवं भूपेंद्र की आवाज में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का है।

अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से एक फनकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज के हमारे फनकार हैं आर डी बर्मन। अब सुनिए फिल्म लाजवंती का यह गीत लता आशा भोसले एवं साथी की आवाज में। बोल है मजरूल सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का है।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले का यह गीत किशोर कुमार एवं मन्ना डे की आवाज़ में। बोल हैं जा

अभी आप सुन रहे थे फिल्म शोले का यह गीत, किशोर कुमार एवं मन्ना डे की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का था। इसी गीत के साथ आज का फनकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना देश का यह गीत, लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज़ में।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म कल की आवाज़ फिल्म का यह गीत सुनिए कुमार सानू एवं आशा भोसले की आवाज़ में।

अब सुनिए खानदान फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत निर्देशन रवि का है।

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म
1: हिमालय की गोद का यह गीत सुनिए मुकेश की आवाज में।
0: संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे डेविड फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार थे लकी अली। बोल थे तुराज का और संगीत निर्देशन प्रशांत का था। इसी गीत के साथ आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र

0: में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।